शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीता जयरमन मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कुछ अपने विषय में, अपनी जिंदगी के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, इस दुनिया में भला कौन है हम, क्यों हैं हम यहाँ। सीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम?
1: थैंक यू। अभी फिलहाल तो मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड गॉट मैरिड इन बॉम्बे, देन नाउ सेटल्ड इन बेंगलोर। एक्चुअली मेरी लाइफ में ये सेकंड लाइफ है। द फर्स्ट लाइफ आई मैरिड टू अ पर्सन एंड हु आई लॉस्ट माय स्पाउस एक्चुअली, एंड दिस प्रेजेंट हस्बैंड माय जयरमन was my schoolmate, and we got married at the age of 60.
0: Okay, that's very nice.
1: And

0: should follow your own religion.
1: Okay, okay, okay. Let me understand this, ma'am. Following one religion means, if at all I am a Christian, let's say. So going to the church every Sunday and praying to God, praying to Jesus, is the method of following religion?
0: See, one has to follow. At the meantime, see, one should be a good human, first of all.
1: Right.
0: All the religion teaches only one thing, be a good human. See, doing good things to the society, whatever the good things you are following, that will be followed by your next generations, you know. So we are the pillars, the parents are the pillars to start our new next generation. So when you don't do anything properly, obviously your children will not be following. So it all depends upon the parents who are the pillars of the family.
1: Okay, that's very nice. So, दोस्तों, जिस तरीके से सीता मैम ने यहाँ पर हमें बताया रिलीजन किस तरीके से फॉलो किया जाता है और किया जा सकता है एक बहुत ही पवित्र तरीके से, पायस तरीके से, और हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो भी सीता मैम ने बताया. चलिए यहाँ पर एक हल्का सा, यस मैम प्लीज.
0: स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेम्पल पूजा करना. मैं ये नहीं कर रही हूँ, दिस विल नॉट हेल्प. स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट द रियल मतलब है कि हमें अपना अपने आप के अंदर की शांति को ढूंढना चाहिए और कि विच विल टेक यू टुवर्ड्स द गॉड, भगवान को ढूंढना है. दिस इज फ्रॉम जर्नी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. When you get disturbed and not able to handle the situation, मन को एकदम शांत और स्टेबल रखना चाहिए. It is very difficult, but nothing is impossible in this world. ठीक है, पैनिक होने से बात और बिगड़ जाती है. अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागने से यू yourself can find the difference in you and that will reflect on your. कभी कोई साधु संत को देखते हैं who are too much into spirituality, you can really see the bliss on their face. Why this is coming? Because they've already understood, they have gone inside and they have understood the reason of their coming into this world. That is why Ramakrishna Paramahamsa, Satya Sai Baba, and all those people, Vivekananda, everybody, because they understood what is really is there inside them, what for they have come to this world. So they fulfilled all the things, what the reason for what they came into this world.
1: Right, ma'am, right. That is so beautiful. दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. भला क्यों स्पिरिचुअलिटी को हम क्यों प्रैक्टिस करें, रिलीजन को हम क्यों फॉलो करें? विचार कीजिए, सोचिए. सीता मैम ने अभी जो कहा उसके बारे में जरा सोचिए. हम वापस आते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के बाद. मैम, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस.

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सीता मैम, आपने बहुत कन्वीनियंटली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया कि किस तरीके से हम लोग आज के वक्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब हम लोग अपनी कंपनीज में देखते हैं, बट हमारे पास बहुत इजीली टूल्स अवेलेबल हैं जो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपने पुरानी बात भी बताई कि जब आपकी फैमिली में आप खेल के आते थे तो क्या क्या होता था। ओके, नाउ हुआ क्या मैम, आपने कहा कि उस जमाने में जब हम लोग थे तो टीवी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कंपैरेटिवली इट वाज इजी कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं। लेकिन आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है मैम, अब उसको हम डिनाय तो कर नहीं सकते, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया को ही यूज करते हुए कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया को हम अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने के लिए कैसे यूज करें मैम, इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए ना।
1: सोशल मीडिया इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, इट ऑल डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल हाउ ही और शी टेक्स। एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज, ऑल दोज मीडियाज आर देयर, इन दैट यू कैन रियली हियर, सी इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो और व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड ऑफ यू कैन हियर टू नाइस सूदिंग भजन्स and soothing instruments which will release your stress, because that is what is happening in all those this thing, you know, like stress management companies. What they do is they make you sit silent, calm, and they play some music, and they say that you do meditation. See, meditation is not that easy what you all think, but it will make you perfect by doing practice. To me, when I started my meditation, hardly I was able to sit for 5 minutes. So you cannot expect, aaj maine baith gayi, so tomorrow I should get the result. Nothing you can get immediately. It is not Swiggy or Maggie, within 2 to 10 minutes you get everything, right? Sitting at home you get everything. It's not that way, but the practice makes you perfect. You should have, I mean they have to put little, for anything you have to put little effort. Without effort nothing is available, nothing you gain, right? So here spirituality is also like that only. You social media to use kijiye, magar not too much. See, whichever is good, there are so many good things also in social media, right? So you'll have to get some nice quotes which sometimes enters our heart and changes the whole situation. See, you do know, aapko pata nahi chalti hai ki kab bhagwan ka call aapke aur aati hai. See, you won't know. So you will be listening to something, in that you may get some answer. So keep listening to such nice quotes, read some nice books. See, if you don't know to read in the book, you go in the e-book. You can go through e-book and you can read some good books and can gain some nice, you know, knowledge.
0: जाहिर सी बात है सोशल मीडिया को सीता मैम भी रिजेक्ट नहीं कर रही हैं, बहुत कंफर्टेबली, ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसको देखते हुए उनको पता है क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, और क्या चीज़ हमारे लिए ख़राब है। मैं मानता हूँ इस दुनिया में किसी को समझाना कि ये चीज़ आपके लिए ख़राब है, समथिंग लाइक इफ इट ऑल समबडी इज स्मोकिंग और मे बी समबडी इज हैविंग वाइन अल्कोहल, अगर हम उसको सिखाने जाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर उसको भी मालूम होता है कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है मेरी गलती है, लेकिन उस वक्त तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है। सेम वे आज के सोशल मीडिया को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों एक मानवीय संरचना है, एक साइकोलॉजी है, टुवर्ड्स नेगेटिविटी वी गो वेरी फास्ट, बट हमें मालूम है व्हाट इज पॉजिटिविटी, व्हाट इज नेगेटिविटी। सीता मैम वही समझा रही हैं।

अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सीता मैम, कई सारी बातें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज आपकी बातें सुनकर। बहुत सारे यंग जनरेशन भी आपकी बात सुनकर महसूस कर रही होगी कि आप जो कह रहे हैं वो सेंसिबल है। मोर ओवर, अपनी जिंदगी को खुश

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यह है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
0: कहिए कहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजी तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा होगा, स्पेशली जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं। जब भी गणेश चतुर्थी पर स्थापना करते हैं, जब भी किसी मंदिर में उनके दर्शन करते हैं, एक बात जरूर हम सबको नजर आती है, गणेश जी का एक दांत। गणेश जी का एक दांत पूरा है और दूसरा दांत टूटा हुआ है। और फिर बचपन से हम सुनते आए हैं, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, या एक दंताय नमः, यानी एक दंत वाले गणेश जी। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर गणेश जी का दूसरा दांत गया कहां? क्या हुआ था, किसने तोड़ा था, या फिर खुद गणेश जी ने तोड़ दिया था? अगर तोड़ा था तो क्यों? आज की कहानी इसी राज की कहानी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक दांत टूटने की कहानी नहीं है, ये एक त्याग की कहानी है, एक समर्पण की कहानी है। और ये बताती है कि कभी कभी अपनी सबसे प्यारी चीज तोड़ देना सबसे बड़ा योगदान हो जाता है। दोस्तों, महाभारत का नाम आप सब ने सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जीवन के लगभग हर सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि इस महान ज्ञान को लिखा जाना चाहिए। ये कहानियां, ये युद्ध, ये नीति, सब कुछ। लेकिन एक समस्या थी, कोई ऐसा लेखक नहीं था जो उनकी गति के साथ लिख सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना बड़ा ग्रंथ बिना रुके लिख पाए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को याद किया। गणेश जी प्रकट हुए और व्यास जी ने कहा, प्रभु मैं महाभारत सुनाना चाहता हूँ, क्या आप इसे लिखेंगे? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेद व्यास जी ने पूछा, कैसी शर्त? गणेश जी बोले, मैं लिखते वक्त रुकूंगा नहीं, अगर आप एक पल के लिए भी रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब ये बहुत मुश्किल शर्त थी, लेकिन वेद व्यास जी भी कम चतुर नहीं थे, उन्होंने भी एक शर्त रख दी, प्रभु आप भी हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखेंगे। और गणेश जी मान गए। फिर शुरू हुई महाभारत की रचना। कल्पना कीजिए, एक तरफ वेद व्यास जी जो निरंतर बोल रहे थे और दूसरी तरफ गणेश जी जो बिना रुके लिखे जा रहे थे। दिन रात सुबह शाम, समय जैसे रुक गया हो, बस ज्ञान का प्रवाह बह रहा हो। लेकिन फिर एक समस्या आ गई। गणेश जी जिस कलम से लिख रहे थे वो टूट गई। अब सोचिए, महाभारत जैसे ग्रंथ के बीच में ना मार्केट, ना स्टेशनरी शॉप, ना ऑनलाइन डिलीवरी, ना ब्लिंकिट और ना रिप्लेसमेंट पेन। और सबसे बड़ी बात कि शर्त थी, लिखना रुकना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। और तब गणेश जी ने कुछ ऐसा किया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया। जी हाँ, और फिर उसे कलम बनाकर लिखना शुरू किया। ना शिकायत, ना दर्द की बात, ना रुकना, ना बहाना, बस कर्तव्य, बस समर्पण और बस संकल्प। सोचिए दोस्तों,
हम में से कितने लोग हैं जो एक छोटी सी परेशानी आते ही काम रोक देते हैं। इंटरनेट स्लो हो गया, आज मूड नहीं है, पेन नहीं मिल रहा, ट्रैफिक बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। और इधर गणेश जी ने पूरा दांत तोड़ दिया लेकिन काम नहीं रोका, इसीलिए उनका नाम पड़ा एक दंत, एक दांत वाले। लेकिन मेरे हिसाब से एक दंत का मतलब सिर्फ एक दांत नहीं, एक दंत का मतलब है एक लक्ष्य, एक संकल्प, एकाग्रता। जहां ध्यान सिर्फ काम पर हो, बहानों पर नहीं। लेकिन दोस्तों एक और कहानी भी मिलती है और ये कहानी थोड़ी रोमांचक है। कहते हैं एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर शिव जी से मिलने पहुंचे, लेकिन उस समय शिव जी और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे और उन्होंने परशुराम जी को रोक दिया। परशुराम जी को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने अपना परशु यानी फारसा गणेश जी की तरफ फेंका। गणेश जी चाहते तो उसे रोक देते थे, लेकिन वो अस्त्र शिव जी का दिया हुआ था, उसका अपमान ना हो इसलिए गणेश जी ने वार को स्वीकार किया और उससे उनका एक दांत टूट गया। अब चाहे आप पहली कहानी माने या दूसरे, दोनों में एक बात तो कॉमन है, त्याग, विनम्रता और कर्तव्य की तरफ अपनी पूरी चेतना। मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दांत होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, अपना कंफर्ट, अपना ईगो, अपनी जिद, अपनी आदतें। और कभी कभी जिंदगी हमसे कहती है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ तोड़ना पड़ेगा और कुछ त्याग करने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट को नींद का त्याग करना पड़ता है, एक कलाकार को आराम का, एक खिलाड़ी को बहुत सारी पसंदीदा चीजों का, एक माँ को अपने लिए वक्त का, और तब जाकर कुछ बड़ा बनता है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत भी हमें यही याद दिलाता है, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है पर्पस, पूरा होना जरूरी नहीं, समर्पित होना जरूरी है। और शायद इसीलिए दुनिया भर में करोड़ों लोग गणेश जी को याद करते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो टूटा हुआ दांत भी कलम बन सकता है और एक छोटा सा त्याग सदियों तक याद रह सकता है। तो दोस्तों अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें और उनका एक टूटा हुआ दांत नजर आए तो उसे कमी मत समझिएगा, उसे यादगार समझिए, एक ऐसी याद जो हमें बताती है कि बड़े काम करने वाले लोग कभी कभी अपनी सबसे प्यारी चीज को दान कर देते हैं। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा और मिलूंगी फिर एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पिंटू बोला, भाई बीवी के फोन का नेट पैक खत्म होने से पहले ही रिचार्ज कर दिया करो। सोहन बोला, क्यों भाई? पिंटू बोला, देखो क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है, इसलिए न वो खाली होगी न तेरा दिमाग खाएगी।

तब अर्जुन ने भगवान से कुश्ती लड़ ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। हम सब ने बचपन से एक कहानी सुनी है, भगवान को भक्ति करो, प्रार्थना करो और ध्यान करो। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसमें एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना भी की और उनसे कुश्ती भी लड़ ली। जी हाँ, आज की कहानी महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की है जहां दुनिया का सबसे महान धुरंधर अर्जुन भगवान शिव को पहचान ही नहीं पाए। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो अहंकार और विनम्रता का संघर्ष था, वो शक्ति और समर्पण का एक पाठ था, और सबसे बढ़कर वो याद दिलाता है कि कभी कभी भगवान हमें वरदान देने से पहले

हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। कल्पना कीजिए घने जंगल का एक दृश्य, दूर दूर तक पेड़ ही पेड़, हवा में गीली मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और बीच जंगल में एक योद्धा। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन एकदम केंद्रित, वो थे अर्जुन, पांडवों के वीर, महाभारत का महान धुरंधर। लेकिन उस दिन वो योद्धा नहीं थे, वो एक तपस्वी थे। महाभारत का युद्ध अभी हुआ नहीं था, लेकिन उसके बादल आसमान में दिख रहे थे। सबको पता था कि ये संघर्ष होगा, और जब होगा तो धरती का इतिहास बदल जाएगा। अर्जुन जानते थे कि सामने जो चुनौती है उसके लिए सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है, उसके लिए दिव्य शक्ति चाहिए। और इसीलिए वो जंगल में आए और भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे, उनसे पशुपत अस्त्र पाने के लिए जिसकी शक्ति का वर्णन करना भी मुश्किल है, ऐसा शस्त्र जो सृष्टि को हिला सकता था। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, बारिश आई, धूप आई, लेकिन अर्जुन अपनी तपस्या में लगे रहे। ना आराम, ना शिकायत, ना विचलित मन, बस एक लक्ष्य। और दोस्तों, ये बात जिंदगी में भी सच है, जब लक्ष्य सच में बड़ा हो तो रास्ता आसान नहीं होता। अब जरा कैलाश चलते हैं। भगवान शिव सब देख रहे थे, उन्होंने अर्जुन की तपस्या देखी, उसका समर्पण देखा, उसकी इच्छा देखी, लेकिन शिव तो शिव हैं, भोले हैं, पर साथ ही लीलाओं के स्वामी भी हैं। उन्होंने सोचा वरदान तो दे देंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये योद्धा कितना तैयार है। और फिर शुरू हुई एक अनोखी लीला। भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया, ना जटा, ना गले में सांप, ना भस्म, ना दिव्य तेज, बस एक साधारण जंगल का शिकारी, एक कीरत, दो मजबूत हाथ, एक धनुष, एक त्रिशूल, एक ढाल, और उनके साथ माता पार्वती भी। राजसी वस्त्र छोड़कर एक वनवासी शिकारी के रूप में, कंधे पर तीर, हाथ में धनुष और चेहरे पर मुस्कान, जैसे दोनों किसी नाटक के लिए तैयार हुए हों। उधर अर्जुन ध्यान में था, तभी जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी, एक जंगली सुअर। लेकिन वो आम सुअर नहीं था, वो मुक्का नाम का एक राक्षस था। वो अर्जुन की तपस्या को तोड़ने वहां आया था। वो तेजी से अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन ने आंखें खोली, एक पल, सिर्फ एक पल, और तीर छूट गया। लेकिन उसी क्षण जंगल के दूसरे कोने से भी एक और तीर निकला, और दोनों तीर एक साथ सुअर को लगे। राक्षस तो गिर गया और मर भी गया। अब जो हुआ वही तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। अर्जुन बोला, शिकार मेरा है। शिकारी बोला, नहीं, मेरा है, मैंने पहले मारा। शिकारी ने कहा, मैंने भी मारा। अब दोस्तों, कभी दो लोग एक ही पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ लेते हैं, देखा है ना आपने, या एक ही ऑटो के लिए, बस वैसा ही कुछ माहौल था। लेकिन यहां दोनों के हाथ में धनुष भी थे और ईगो भी। बहस बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई और फिर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने सोचा, कोई आम शिकारी है, अभी हरा देता हूं। लेकिन अजीब बात हुई कि हर वार बेकार गया।
हर प्रहार असफल हुआ। जितनी ताकत अर्जुन लगाता उतना ही वो शिकारी उसे आसानी से रोक लेता। अर्जुन हैरान था, ये कौन आदमी है, जंगल का एक आम शिकारी और इतना शक्तिशाली, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जिंदगी में भी तो यही होता है, कभी कभी हम सामने वाले को देखकर उसकी औकात तय कर लेते हैं। उसके कपड़े देखकर, उसकी बोली देखकर, उसकी हैसियत देखकर, और फिर एक दिन पता चलता है कि हम गलत थे, बहुत गलत। लड़ाई और तेज हुई और फिर एक पल आया जब अर्जुन जमीन पर था और शिकारी उसके ऊपर खड़ा था। अर्जुन हार चुका था, महान अर्जुन, अपराजित अर्जुन, धनु विद्या के राजा, एक अनजान शिकारी से हार गए थे। उस पल उनका अहंकार टूट गया, घमंड बिखर गया। उन्होंने आंखें बंद की और बस प्रार्थना की, हे महादेव मुझे शक्ति दीजिए। और दोस्तों, कभी कभी जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं तभी असली समझ पैदा होती है। अर्जुन ने आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर वो निशब्द रह गए। वो शिकारी अब शिकारी नहीं थे, उनके सामने स्वयं महादेव खड़े थे, नीलकंठ, त्रिनेत्र, महाकाल, जगत के संहारक, और उनके पास माता पार्वती मुस्कुराती हुई। उस पल अर्जुन को समझ आया कि वो हारे नहीं थे, उसकी परीक्षा हुई थी। वो गिरे भी नहीं थे, उन्हें झुकना सिखाया गया था। वो युद्ध नहीं था, एक पाठ था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अर्जुन तुमने सिर्फ तपस्या ही नहीं करी, तुमने संघर्ष भी किया, तुमने हार को स्वीकार भी किया और तुमने अहंकार को छोड़ना भी सीखा। और फिर उन्होंने अर्जुन को पशुपात अस्त्र प्रदान किया, वो दिव्य अस्त्र जिसके लिए ये पूरी लीला रची गई थी। दोस्तों, मुझे इस कहानी में सबसे सुंदर बात क्या लगती है आप जानते हैं? भगवान ने अर्जुन को उस वक्त वरदान नहीं दिया जब वो आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उन्हें उस समय वरदान दिया जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हर शक्ति से बड़ी भी कोई शक्ति होती है। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी एक कीरत आता है, कोई आदमी, कोई परिस्थिति, कोई चुनौती जो हमें हरा देती है, जो हमें नीचे गिरा देती है, और हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन शायद वो हमारी हार नहीं होती, वो हमारी तैयारी होती है। शायद जिंदगी भी हमें कुछ बड़ा देने से पहले हमें विनम्र बनाना चाहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको अनजान शिकारी से हरा दे तो तुरंत दुखी मत हो जाएगा। क्या पता वो कोई हार हो ही नहीं, क्या पता वो महादेव की एक और लीला हो। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर एक कहानी के साथ जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: गोलू बोला, ओएलएक्स वाले साले बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बिकता है। मोलू बोला, हाँ बिकता तो है। गोलू बोला, तो 10 दिन से एक कैलेंडर इस पर बेचने के लिए डाल रखा है, अभी तक बिका ही नहीं। मोलू बोला, कितने में बेच रहे हो? गोलू ने बोला, यार मैंने 50 रुपये में खरीदा था, 20 में दे रहा हूँ, बिल्कुल टिप टॉप हालत में है, बस 1 साल पुराना है।

एक दृश्य इमेजिन कीजिए। सुबह का समय है, हल्का सूरज उग रहा है, एक शांत सरोवर है जिसके पानी पर हजारों कमल के फूल खिल रहे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है और उन कमलों को एक एक करके कोई बड़ी श्रद्धा के साथ चुन रहा है, क्योंकि आज कोई आम पूजा नहीं होने वाली। आज एक भक्त अपने आराध्य को हजार कमल के फूल अर्पित करने वाला है। लेकिन उसे क्या पता कि आज उसकी भक्ति की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में उसे फूल नहीं, खुद का एक हिस्सा देना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे धर्म में सबसे सुंदर बातों में से एक बात ये है कि यहाँ देवता भी एक दूसरे के भक्त हैं। भगवान विष्णु शिव जी का सम्मान करते हैं, शिव जी विष्णु जी का सम्मान करते हैं, और दोनों के बीच जो प्रेम और जो आदर है उसकी अनेक कहानियां हमें मिलती हैं। आज की कहानी भी उनमें से ही एक है। बहुत समय पहले जब असुरों का बल बढ़ने लगा था, जब अधर्म धीरे धीरे धरती पर अपने पैर जमा रहा था, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प ये था कि 1000 कमल के फूल शिव जी को अर्पित करेंगे। अब सुनने में ये बात बहुत आसान लगती होगी, लेकिन सोचिए, 1000 फूल, एक या दो नहीं, 10 या 20 भी नहीं, पूरे 1000। और 1000 फूल के साथ श्रद्धा भी उतनी ही गहरी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम सब संकल्प लेते हैं, रोज सुबह वॉक करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, डायरी लिखेंगे, मेडिटेशन करेंगे। शुरू में सब आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब लगातार निभाना पड़ता है। विष्णु जी भी वही कर रहे थे, एक एक कमल इकट्ठा करना, एक एक फूल को संभालना और फिर शिव जी के चरणों में अर्पित करना। पूजा शुरू हुई, महादेव का स्मरण हुआ, मंत्र गूंजने लगे, वातावरण पवित्र हो गया। एक फूल चढ़ा, दो फूल चढ़े, 100 फूल चढ़े, 200 फूल चढ़े, 500 फूल चढ़े, 800 फूल, 900 फूल, 999 फूल। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव को भी तो अपने भक्तों से प्यार भरी शरारत करना पसंद है। और सबसे बड़ी बात, वो भक्ति की गहराई देखते हैं, सिर्फ क्रिया नहीं, सिर्फ रस्म नहीं, दिल देखते हैं, नियत देखते हैं, समर्पण देखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शिवजी ने चुपके से एक कमल का फूल हटा दिया, बस एक, सिर्फ एक, 999 को 1000 से अलग करने वाला एक फूल। अब पूजा समाप्त होने वाली थी, विष्णु जी ने फूल गिने, 999, एक बार फिर गिने, 999, तीसरी बार गिने और फिर भी 999, एक फूल कम। अब जरा सोचिए, इतनी मेहनत के बाद, इतनी तैयारी के बाद एक पल में पता चले कि कुछ कम रह गया, कैसा लगता है? जैसे एग्जाम के दिन पेन भूल जाओ, जैसे ट्रेन पकड़ने निकलो और टिकट घर रह जाए, जैसे पूरी रेसिपी बना लो और पता चले नमक ही नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते, कह देते चलिए भगवान समझ जाएंगे, भूल चूक माफ, कोई बात नहीं, एक फूल ही तो है। लेकिन विष्णु ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक फूल नहीं था,
ये उनका संकल्प था और संकल्प में कमी नहीं।

ही होनी चाहिए। तब उन्होंने एक गहरी बात याद की। लोग उन्हें कमल नयन कहते थे। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और कोमल मानी जाती हैं। और तब उनके मन में एक विचार आया, अगर एक कमल कम है तो मैं अपना एक कमल दे देता हूं। दोस्तों, ये सोचना आसान है लेकिन करना नहीं, करना बहुत मुश्किल है। हम तो कभी कभी एक घंटा मोबाइल साइड रखने में परेशान हो जाते हैं। एक दिन फेवरेट चीज ना मिले तो मूड खराब हो जाता है। और यहाँ भगवान विष्णु अपनी आंख अर्पित करने को तैयार हो गए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी से तारीफ पाने के लिए, ना किसी अवार्ड के लिए, बस सिर्फ भक्ति के लिए, सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए। कहते हैं उन्होंने अपनी उंगली आंख की तरफ बढ़ाई और जैसे ही वो अपनी आंख निकालने वाले थे, पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। हवा रुक गई, समय रुक गया और उसी पल भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा कर बोले, विष्णु बस मैं तुम्हारी भक्ति देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। मैं देखना चाहता था कि तुम फूल चढ़ा रहे हो या अपना दिल। दोस्तों, क्या खूबसूरत बात है ना। भगवान को फूल नहीं चाहिए थे, भगवान को भक्ति चाहिए थी। उन्हें संख्या नहीं चाहिए थी, उन्हें समर्पण चाहिए था। और फिर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वही सुदर्शन चक्र जो धर्म की रक्षा का प्रतीक बना, जो विष्णु जी की पहचान बना और जिसका नाम हम आज भी श्रद्धा के साथ लेते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये कहानी असल में फूलों की कहानी है ही नहीं, ये उस एक एक्स्ट्रा कदम की कहानी है जो ज्यादातर लोग नहीं उठाते। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी वो एक फूल कम पड़ जाता है, एक मौका छूट जाता है, एक रिसोर्स कम पड़ जाता है, एक सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है, एक दोस्त साथ छोड़ देता है, एक प्लान फेल हो जाता है और हम सोचते हैं अब क्या करें। लेकिन शायद जिंदगी वही देखना चाह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे या समर्पण दिखाएंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी का सुदर्शन चक्र भी उसी मोड़ के बाद छुपा हो, उस एक एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद, उस एक सैक्रिफाइस के बाद, उस एक एक्स्ट्रा कोशिश के बाद। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी में कोई फूल कम पड़ जाए तो हिम्मत मत हारिएगा। हो सकता है वही आपकी परीक्षा हो और हो सकता है उस परीक्षा के बाद आपको अपना सुदर्शन चक्र मिल जाए। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार हिस्ट्री की क्लास में गप्पू ने पूछा, सर एक बात आपको पता है? टीचर ने कहा, क्या? गप्पू बोला, इतिहास गवाह है सर, जब भी कोई नया साल आया है, एक साल से ज्यादा टिक नहीं पाया है। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। लीजिए दोस्तों, सुनिए कहानी मृणालिनी साराभाई जी की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध डांसर हैं। बेटियों के लिए पिता इस संसार सागर में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। किसी भी दिशा में चली जाएं बेटियां, पिता को बार बार खोजती और निहारती रहती हैं कि न जाने कब पिता अपनी आंखों से कुछ बात बता दे, उनके मुखड़े पर कोई उम्मीद तैरने लगे। चुपचाप बहुत थोड़ा बोलेंगे पिता और बहुत कुछ मन में रख लेंगे। बेटियों के लिए न जाने क्या क्या अच्छा सोचते रहेंगे पिता, और बेटियां भी कोशिश में लगातार लगी रहेंगी कि पिता को पूरा जान पाएं। पिता अगर अपने कर्म में कोई मिसाल कायम करें तो बेटियां भी उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए पिता वही हैं जो अपनी बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें, और ऐसी बेटियां भी खुशनसीब होती हैं जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है। वो बेटी भी खुशनसीब थी। बैरिस्टर पिता सुब्बाराम स्वामीनाथन अपनी बेटी के अस्तित्व की धुरी थे। उनकी मुस्कुराहट, स्नेह से सराब और चमकती आंखें। पिता ने एक दिन गर्व से कहा कि ये बच्ची बड़ी होकर कुछ बनेगी, और ये बात बस गहरे असर कर गई। पिता किसी से डरते नहीं थे, बेटी पर भी असर पड़ा उसका। पिता कभी हिम्मत नहीं हारते थे तो बेटी ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिता ने बार बार कहा तो बेटी भी बार बार

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ज्योतिष बोला, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? गीता बोली, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथों में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए, क्या क्या हो चुका है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

अहंकार और संस्कार में देखिए फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है।

कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति ये है कि जब थोड़ा सा भी कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। ये सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है दोस्तों। वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है। ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ, मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है, आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ
1: कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। हजारों साल पहले से दुनिया में चारों तरफ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेयर करना, पूजा करना, इबादत करना प्रचलित है। सामूहिक जागरण होते हैं, पाठ होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कीर्तन चलते हैं, और इन सब में लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और ज्यादातर एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना, पाठ या प्रेयर को पढ़ा जाता है, गाया

जाता है। इस तरह की सामूहिक व्यवस्था और तरीका कहां से आया? हर धर्म के ग्रंथ इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के नियम बताते हैं और उनमें भी इन सामूहिक प्रेयर्स को करने के लिए बताया गया है। अब ये ग्रंथ या तो परम महान शक्तियों से आए हैं या उनसे सीखकर परम गुरुओं ने यह व्यवस्था इन ग्रंथों में बताई है। पर सवाल यह है कि इस सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है और क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा है जो इन परम गुरुओं ने समझा और हमें यह सामूहिक आयोजन करने का रास्ता दिखाया। क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में बने स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले सामूहिक तौर पर प्रेयर करते हैं? स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थनाओं का यह विचार कहां से आया, कौन लाया और क्यों? इन सवालों के आसान और साधारण से जवाब हो सकते हैं। सामूहिक प्रेयर से सद्भावना बढ़ती है, सामूहिक प्रेयर से मन एकाग्र होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का भाव खत्म होता है। और भी इस तरीके के जवाब हो सकते हैं। सामूहिक स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी यह प्रक्रिया की जाती है, जैसे कोई चुना हुआ मंत्र, प्रार्थना या शब्द को 108 बार या उससे ज्यादा बार जपना। इतनी बार जपने के पीछे भला क्या उद्देश्य है? प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट एजर मिशेल ने पॉल टेंपल के सहयोग से 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेस की स्थापना की। यह इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला और शायद अकेला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में बना हुआ है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन, चेतना, अचेतना, विचारों की शक्ति, अध्यात्म, हेल्थ केयर के दूसरे तरीके, मृत्यु के बाद चेतना जैसे कई विषयों पर रिसर्च हो रही है। इनमें से एक रोमांचक रिसर्च विचारों के वजन के बारे में है। जी हां, विचारों का वजन। इंस्टीट्यूट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी एक विचार में कुछ वजन हो सकता है और कितना, क्योंकि यह बात तो साइंटिफिक तौर पर तय है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सभी कुछ। अगर एनर्जी का एक समूह एक आकार लेता है, जैसे हमारा शरीर, और शरीर का कुछ वजन होता है, तो इस समूह की एक अकेली इकाई का भी कुछ वजन होगा। क्या उस एक इकाई का वजन नापा जा सकता है? कोशिशें जारी हैं। अब परिकल्पना यह है कि विचार भी एनर्जी है। अगर किसी एक विचार का वजन बढ़ाया जा सके तो शायद वह विचार आकार ले ले। तो किसी विचार का वजन कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह मिट्टी के एक एक कण को मिलाएं तो एक ईंट बन सकती है, उसी तरह अगर एक ही तरीके के विचार को इकट्ठा करें तो शायद उसका एक ऐसा वजन बने जो वह आकार ले ले। बात कुछ कुछ तो संभावित लगती है, क्योंकि मिट्टी के कणों को देखा जा सकता है और इकट्ठा करके उसका वजन बढ़ाया जा सकता है, पर विचार तो किसी ने देखे ही नहीं। पर ऐसा लगता है कि उस विचार में कुछ तो वजन होगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस एक विचार को करें तो शायद वह विचार कुछ वजन ले ले और आकार में आ जाए। बात समझने में थोड़ी कठिन है, पर यह बात हमारे पौराणिक ज्ञानियों, साधुओं और गुरुओं ने समझ ली थी। आधुनिक रिसर्च तो अब शुरू हुई है। विचारों के वजन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे गुरुओं ने सामूहिक चेतना के नियम बनाए। आराम से समझें, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर एक विचार को दोहराएं तो उस विचार का वजन बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही वो आकार लेने के नजदीक आएगा, यानी कि कैसे ना कैसे हमें प्रभावित करेगा। अब गौर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने में होने वाली इस सामूहिक चेतना की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विचार क्या हैं, जिनका वजन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, सबसे आसान विचार जो स्कूलों में प्रेयर्स में दोहराया जाता है, हमें शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, यह एक उदाहरण है। और भी प्रेयर्स हैं, पर उद्देश्य एक ही है।
इस विचार का वजन बढ़ाकर मन के विश्वास को मजबूत करना। इसी तरह जब किसी मंत्र का 108 बार या और अधिक बार मनन किया जाता है, कोशिश उसके वजन को बढ़ाने की ही है, जिससे कि उस मंत्र का प्रभाव हम पर पड़े। अब यह सिद्धांत सिर्फ प्रेयर्स या मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी भी विषय के विचारों के बारे में हो सकती है। सामूहिक चेतना के कुछ विचार किसी व्यक्ति को राजा बना देते हैं और किसी को रंक, किसी योजना को सफल कर देते हैं और किसी को असफल, किसी देश को प्रसिद्ध कर देते हैं और किसी को नाकारा बना देते हैं। जब कोई एक परिवार या समूह एक तरह के विचार का मनन करता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव उस परिवार पर या उस समूह पर दिखाई देता है। अब विचार यह करना है कि हम किस विचार के वजन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, अब अब खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
5: लुई पास्चर। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
6: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
5: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो,
6: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
7: चलो चलो चलो चलो चलो
3: चलो चलो चलो।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
2: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
10: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
9: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
11: सर सर ये टेलीग्राम।
9: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
11: क्या हुआ सर?
9: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
11: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
9: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
11: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
9: हाँ चार्ल्स।
2: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
9: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
9: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
9: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
4: मेरा बेटा।
9: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ। जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
12: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज़ द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज़ अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज,
1: विज्ञान गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटी

एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे
इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

विकास और प्रकाश दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है।

आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहां की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहां के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
4: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
3: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
4: हाँ, अब बन गई रेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
4: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
5: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
4: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
5: चलो रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
3: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
5: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
3: अच्छा
5: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
4: दादाजी मैंने देखी है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
5: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
3: अरे वाह,
5: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
3: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
5: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
6: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
5: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
6: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
5: बैठो
6: आओ,
5: जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
4: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
5: हाँ हाँ उतरो बेटी।
1: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
7: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
5: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
7: अच्छा, तो ये बात है।
5: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
4: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
5: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
7: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
5: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
7: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
5: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
7: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે, આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
5: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सशक्त बनाना है, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे नए बदलावों को जानना, समझना और उसमें परिवर्तन के साथ कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं और कैसे हम आय वर्धक खेती कर सकते हैं आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानते हैं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। किसान साथियों, खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खी पालन को लेकर। किसान साथियों, हमारा जो किसान है, हम सभी फूल, हमारी फसलों में फूल आते हैं और हम जानते हैं हमारे खेतों की मेड़ों पर और हमारे पेड़ों पर मधु काफी होता है। तो किसान साथियों, क्या हम मधुमक्खी पालन हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये हमारे लिए आय का स्रोत बन सकता है, क्या ये हमारी आय में वृद्धि कर सकता है, इन सब बातों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। कहां से हम और कैसे इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और कैसे एक किसान, अब अगर कोई इसके इच्छुक हो तो वो कैसे इस मधुमक्खी पालन को कर सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: जी हाँ, मधुमक्खी पालन की बात करें तो आज के समय में कृषि संबंधी ये बहुत ही तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है। हमारे किसान इसे काफी लाभ भी ले रहे हैं और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम भी उठा रही है। आपको बता दें कि गांव में रहने वाले बेरोजगार और युवा इससे जुड़कर अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है और परंपरागत खेती में कैसे इससे लाभ हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने से पहले जरूरी ये भी है कि इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग जरूर लें और इससे संबंधित विशेष जो बिंदु हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से जान लिया जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरे मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह, आप परियोजना समन्वयक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। और इस परियोजना के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, मधुमक्खी पालन से जुड़ी किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक निदेशक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय से हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज जी। और हमारे साथ जगपाल सिंह फोगाट जी भी मौजूद हैं जो कि जिला झज्जर से हैं, गांव मलिकपुर है इनका, ये एक प्रगतिशील मधुमक्खी पालक हैं, इन्होंने बहुत ही छोटी से शुरुआत की और आज बहुत आगे पहुंच गए हैं। इनसे भी इनकी जर्नी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा की, तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
8: मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा ही एक व्यवसाय है। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना काफी आसान है, क्योंकि पहले तो इसके करने का तौर तरीका आसान है और दूसरा ये भारी बोझ वाला काम नहीं है, यानी इसे महिलाएं भी काफी आसानी से कर सकती हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लें। मधुमक्खी पालन के लिए वही उपकरण लें जो भारतीय मानक संस्थान के मापदंडों के आधार पर बने हों। मधुमक्खी पालन करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अच्छी आमदनी। इसके अलावा फसलों में परागण के लिए भी मधुमक्खी पालन काफी फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस व्यवसाय के लिए चार तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही ज्यादा शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं। इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन गृह के सबसे निचले हिस्से को तलपट कहते हैं। तलपट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्षों में करती है। पोषण प्रबंधन की बात करें तो मधुमक्खियों का पोषण पराग और मरकंद होता है जो इन्हें फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छतों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। शहद लेने के लिए इन्हें तोड़ा नहीं जाता बल्कि एक ही छत्ता बार बार उपयोग में लाया जाता है, जिससे मधुमक्खियों को बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती। ऐसे में आप मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऑर्गेनिक फार्म्स में मधुमक्खी पालन करके ऑर्गेनिक शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है।
7: रिपोर्ट देखिए जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और साल भर कैसे वो हनी बी से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है इसे बनाए रख सकते हैं। इन तमाम बातों को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। बलराज जी, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा विषय यही है कि कैसे मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा हमारे जो किसान हैं या फिर मधुमक्खी पालक हैं वो अर्जित कर सकते हैं, क्या स्थिति अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन की और किस तरह से इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है?
9: बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मधुमक्खी पालकों के और कृषि के हित में पूछा है। तो मैं बताऊं, अगर आज वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग देश में जो दो पालतू प्रजातियां हैं एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका, वो पालतू रूप में अपनाई जा रही हैं और लगभग 32 से 35 लाख जो है बी बॉक्सेस पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालन के रूप में अपनाए जा रहे हैं और वर्तमान में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक देश में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और हमारे देश में शहद का उत्पादन अगर मैं 2000 के मुकाबले 2021 की बात करूं तो गत वर्ष हमारे देश में शहद का उत्पादन 2.25 लाख मेट्रिक टन हुआ है, जो कि 2000 वर्ष में मात्र 10,000 मेट्रिक टन या उससे नीचे था। तो बहुत प्रगति हुई है और देश से लगभग 60% जो शहद है हमारा हनी है उसका एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिससे देश को एक बहुत अच्छी खासी जो है ना विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है लगभग 760 करोड़ रुपए से अधिक की। और वर्तमान में इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसमें काफी प्रगति हो रही है। और इसका यही नहीं, अगर हमारा शहद का उत्पादन बढ़ रहा है या दूसरे उत्पाद जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कृषि की उत्पादकता और कृषि की गुणवत्ता दोनों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे देश में मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कृषि के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और उसमें उसकी उपज, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता, यही नहीं सिर्फ धान्य फसलों या तिलहन फसलों में, इसका योगदान जो बागवानी फसलें हैं, जैसे सेब की बात करें, अनार की बात करें, आप अमरूद की बात करें, आप लीची की बात करें, और या मसालों की बात करें जिसमें जीरा है, धनिया है, तो ये सब जो ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण के तौर पर ऐसे जो हमारे कीट है, मधुमक्खी पालक जैसे कीट, वो सक्षम परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, और इसी के कारण आज हमारी उत्पादकता निरंतर जो है ना वो बढ़ने के उस पे है, और भविष्य में भी अगर इसी प्रगति से हम आगे बढ़ते रहे तो मीठी क्रांति तो आएगी जिसकी आप बात कर रही हैं कि शहद का उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ कृषि की जब उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता बढ़ेगी तो उससे भी किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ ये प्रगति जो है ना आगे और बढ़ेगी।
7: जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, उसे भी बेचकर हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो लाभ ले सकते हैं, और साथ ही अगर किसान हैं आप तो आपको कृषि में भी इसके कई तरह के लाभ होते हैं जिसके बारे में अभी हमें बलराज जी ने बताया। आइए बात करते हैं डॉक्टर मनोज जी से। मनोज जी, जैसे कि हमने कहा कि ये एक मिशन है, अब क्योंकि देख लीजिए आप मिशन जब किसी चीज को कह देते हैं तो इससे समझ आता है कि हमारी सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है और इसे कितना रुझान इसको लेकर हम देख रहे हैं किसानों में या मधुमक्खी पालकों में, तो अभी हाल के दिनों में किस तरह के प्रयास या नए कदम इस दिशा में इस मिशन को लेकर उठाए गए?
10: भारत सरकार द्वारा अभी मधुमक्खी पालन के ऊपर पिछले 3-4 साल से काफी इस पे जोर दिया गया है कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। तो इसके लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक नई स्कीम जिसको कि हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से जानते हैं वो लॉन्च की गई, और उसको जो इम्प्लीमेंटेड कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन का जो उसका काम है वो नेशनल बी बोर्ड जो एक भारत सरकार की सोसाइटी है उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस जो नए मिशन का उद्देश्य है कि जो हमारी साइंटिफिक बी कीपिंग है इसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि शहद के उत्पादन के साथ साथ उसके साथ जो दूसरे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि रॉयल जेली है, बी पोलन है, और हमारे जो इससे दूसरे जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उनको किस प्रकार से उनको भी शहद के उत्पादन के साथ साथ उसमें वृद्धि की जाए।
7: जी जी।
10: तो इसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की, और इस स्कीम के द्वारा हमने पिछले 3 साल में इसको किया, लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से इस स्कीम में ज्यादा भी वो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी इसमें प्रगति हुई है वो काफी प्रगतिशील जो किसान है हमारे उन्होंने इसका काफी लाभ उठाया।
7: जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक मिशन है और इससे बहुत तरह के फायदे भी हैं। देखिए, जहां किसानों की आय में वृद्धि होती है, वहीं जैसा कि बलराज जी ने बताया कि क्योंकि हम इसको विदेशों में भी बेच रहे हैं तो जो विदेशी मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है, तो कई तरह के लाभ इसके हैं। और मैं बात करना चाहूंगी, अब हमारे साथ जगपाल जी हैं जो कि एक प्रगतिशील किसान है, मधुमक्खी पालक है, और आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 20-22 साल पहले सिर्फ 30 डब्बों से शुरुआत की थी और आज कहां पहुंचे हैं, किस तरह के बदलाव अपने जीवन में आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। जगपाल जी, सबसे पहले मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आपने शुरुआत की, और मुझे तो ये भी पता चला कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद नौकरी करने का ना सोचकर, क्योंकि आप शहर के पास ही हैं, आपने मधुमक्खी पालन को अपनाया, कहां से इसकी प्रेरणा मिली, थोड़ा उसके बारे में बताएं।
11: देखिए जी, प्रेरणा तो पहले तो मन में ये था कि भाई पढ़ाई के बाद अपना खुद का व्यवसाय करना है, नौकरी की तरफ ना जाके। अमूमन हमारे देहात में ये क्या होता है कि भाई पढ़ लिख ले नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे फादर साहब की ये सोच थी भी नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का व्यवसाय करना है।
7: जी जी।
11: तो उस व्यवसाय की कड़ी में एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने उस समय मधुमक्खी पालन का करियर शुरू कर रखा था
7: जी।
11: तो मैंने उनका देखा भाई ये क्या है, बोला जी मधुमक्खी पालन का कार्य है। तो मैंने उनसे चर्चा की एक दो घंटे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और समझ में आ गया उसी टाइम। तो उसी टाइम में मैंने मन बना लिया कि भाई मधुमक्खी पालन का कार्य ही शुरू करना है, क्योंकि ये कार्य खुद को तो फायदा देता ही है
12: जी, जी।
11: और किसानों को भी पोलिनेशन से फायदा देता है। तो मुझे तो ये है कि भाई पैसा भी आएगा और पुण्य भी कमाएंगे, तो इसलिए मैंने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। और जी 30 बॉक्स शुरू किया था, आज भगवान की दया से मौज है सब चीजों की, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत से और भी किसानों को जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं मैं
12: जी।
11: और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारा यूथ जो नौकरी के पीछे भाग रहा है वो अपना व्यवसाय करे, खेती से
12: स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने।
11: हाँ जी
12: जी जी,
11: आत्मनिर्भर बने और बहुत आसान सा व्यवसाय है जी।
12: अभी कितने डिब्बे आपके पास, कितने बॉक्स हैं?
11: हाँ, मेरे पास अब 500 के करीब बॉक्स है जी,
12: 30 से शुरू किया और 500 तक पहुंच गया।
11: और मैं बता दूं जी, मैं बॉक्स से खादी को सप्लाई भी करता हूं, मेरे पास जब बॉक्स एक्सेस हो जाते हैं या और फार्मर से भी बॉक्स खादी में मैं देता हूं। खादी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी है, खादी से जुड़ा हुआ हूं मैं, तो इस फील्ड में काफी अच्छा काम चल रहा है जी, और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट के बीच में हम हैं, तो इनसे और सीखेंगे, कोई को नया और प्रोडक्ट जोड़ेंगे, जैसे बी पोलन की डॉक्टर बल्लाजी ने बताया, तो हम भी ये शुरू करना चाहते हैं
12: जी। जी देखो, बिल्कुल देखिए, हमारा मकसद भी यही होता है और हमारा मंच भी इसीलिए कि ऐसे किसानों को मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में या इससे जुड़े व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, दूसरे किसानों के लिए वो सीख भी बने और साथ ही हमारे मंच से कुछ नया सीख कर जाए, कुछ आगे बढ़ाए। बलराज जी, जैसे कि अभी जगपाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर से की थी और आज यहां तक पहुंच गए हैं, तो जो हमारे अभी युवा किसान या फिर वो किसान या फिर वो युवा जो कि पढ़ाई करने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं या फिर उनके लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकता है, क्या इसे स्टार्टअप से भी जोड़ा जा रहा है?
9: बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजू जी, इसको स्टार्टअप के रूप में या एफपीओ बनाकर सरकार का उस पर भी जोर है। डॉक्टर मनोज इसकी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में भी, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी अब एफपीओ की बात हो रही है और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कई उसमें। तो जहां तक बात है मधुमक्खी पालन की, जो युवा है शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, निश्चित तौर पर चाहे उनके पास भूमि है या भूमिहीन है, यानी एक जरूरी नहीं है कि उनके पास लैंड है कि नहीं है, लैंडलेस है तो भी वो इस तरीके का धंधा शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम जो पश्चिम के देशों में जो विकसित देश है या खाड़ी क्षेत्र में जो स्थापित देश है, इजराइल, मोरक्को ऐसे देश या अमरीका जैसे देश, वहां पे मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है, सेवा के रूप में कि पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्थिति अब हमारे देश में भी विकसित होने की संभावना है कि हमारे युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खेती की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे परागण का बहुत महत्व है और उसमें ज्यादातर परागण के अंदर मधुमक्खियां योगदान देती हैं 70-75%, और जो स्व परागित फसलें उनमें भी एडिड पॉलिनेशन की सहायता की जरूरत पड़ती है, यहां तक कि जो पर परागित फसलें उनका तो गुजारा ही नहीं हो सकता, चाहे वो तेलन हो, चाहे वो फल के वृक्ष हों, चाहे वो मसाले हों, बीजे मसाले हों, तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें तो आवश्यकता है ही। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत अवसर है, पॉलिनेशन सर्विसेज, साथ में शहद पैदा होगा और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है रॉयल जेली की बात अभी जगपाल जी कर रहे थे, डॉक्टर मनोज कर रहे थे, पोलन की बात है, वेनम की बात है, या जो हमारे जो है ना वैक्स की बात है, या जो दूसरे और बहुत सारे प्रोपोलिस वगैरह है उनका भी उत्पाद हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जगपाल जी से वो प्रेरणा ले सकते हैं कि 30 से उन्होंने शुरू किया
12: जी, जी,
9: तो पूरी
12: जी,
9: लेकिन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है कि जब तक आप हमारे युवा जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा
12: जी, बिल्कुल,
9: जब ही वो जी, आगे सफल होंगे और सरकार की योजनाओं का भी फायदा वो जब ही ले पाएंगे
12: जी, बिल्कुल। देखिए ट्रेनिंग से क्या होता है ना कि दक्षता आपकी बढ़ जाती है, आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अगर उसका प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो और दक्षता उधार दे पाते हैं आप, तो ये एक मकसद भी रहता है कि आप जो आपका इनपुट है या फिर जो आपकी ऊर्जा है, जो संसाधन है उसका वेस्टेज ना हो, उसकी बर्बादी ना हो। मनोज जी, जैसे कि अभी हमें बलराज जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे एक स्टार्टअप का रूप भी दिया जा रहा है। देखिए किसान जो है वो अब खेतों में तो काम करते हैं लेकिन अब वो नई दिशाएं भी तलाश रहा है, और ऐसे में जो युवा किसान है, जो पढ़े लिखे हमारे जो आपके जैसे पोस्ट ग्रेजुएट किसान है लेकिन वो गांव में रहना चाहते हैं, गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरह की संरचना है ये पूरी और कैसे स्टार्टअप से इसे जोड़ा जा रहा है, जैसे कि बलराज जी ने अभी बताया।
10: इसमें भारत सरकार की जो NBHM मिशन है
12: जी,
10: ये 500 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रकार की योजना बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे उसमें सुधार किया जाए, तो इसके लिए हमने इस जो योजना है इसको तीन भागों में इसको बांटा है, जिससे कि इसमें जो किसानों को और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं इनको सभी को लाभ इससे मिल सके। तो इसमें हमारे तीन जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें जैसे कि नंबर एक पर हमने मिनी मिशन वन रखा है।
12: मिनी मिशन वन ये क्या है?
10: मिनी मिशन वन के अंतर्गत हमने जो IBDC जिसको कि हम इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनको विकसित किया जाए। वहां पर जो हमारी योजनाएं हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसमें कि हम
5: किसान साथियों अभी आपने मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने जाना कैसे ये हमारे लिए एक आय का बहुत ही अच्छा स्रोत बन सकता है, यह कैसे हम इसमें हमारी जो आय है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी और हम जानेंगे कैसे हम मधुमक्खी पालन और कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर ली जा सकती है और क्या अनुदान हमें मिल सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी मधुमक्खियां हैं जिनका पालन हम करके हम अधिक से अधिक शहद ले सकते हैं।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। किसान साथियों आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन में अलग अलग वनस्पति का शहद कैसे निकाला जाता है और उसमें कौन कौन सी वैरायटीज है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खी में अलग अलग वैरायटीज होती है और उनके क्या क्या लाभ भी हमें मिल सकते हैं आदि जानकारियों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं।
12: तो क्या ये संभव होता है?
9: बिल्कुल, पहले तो अंजू जी बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन के रूप में दो मुख्य प्रजातियां हम हिंदुस्तान में भारतवर्ष में इस्तेमाल करते हैं। एक तो है एपिस मेलिफेरिया जो इटालियन बी है, और इसका ये खासियत है कि इसका पोलिनेशन एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है फॉरेजिंग के दौरान, खाना इकट्ठा करने के दौरान। और शहद का उत्पादन भी अगर अच्छा फसल चक्र है, जैसे अभी सरसों की फसल चल रही है और अच्छा फसल चक्र साल भर है, तो लगभग 30 से 40 किलो, कई बार 50 किलो तक पर बॉक्स जो है ना इससे शहद उत्पादन होता है और बहुत सक्षम परागण करता है। दूसरी जो मधुमक्खी है हमारी वो है एपिस सेराना इंडिका, इंडिजिनस जो है वो प्रजाति है। इसके द्वारा जो है लगभग 15 से 20 किलो शहद का उत्पादन होता है पर बॉक्स पर ईयर, और ये जो है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी खाना इकट्ठा करने के दौरान तय करती फॉरेजिंग पीरियड के दौरान और बहुत सक्षम परागण करता है। तो उत्तर भारत के मैदानों में बड़े पैमाने पर जहां से जगपाल जी आए हैं, या उत्तर प्रदेश की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें मध्य भारत की, या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बड़े पैमाने पर एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है मधुमक्खी पालन के रूप में। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, या पश्चिमी तटों की बात करें, तो एपिस सेराना इंडिका का इस्तेमाल मधुमक्खी पालन के रूप में होता है। और जो आप बात कर रहे हैं शहद की, तो हमारे देश में जो ज्यादा उत्पादन है शहद का, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर तिलन सरसों फसल का उत्पादन होता है, तो लगभग 60% या इससे ज्यादा उत्पादन शहद का वो सरसों की फसल से होता है, जिसके अंदर रेप सीड है, मस्टर्ड है, तोड़िया है, तारामीरा है, ये सब फसलें आती है। इनमें नेक्टर और पोलन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं ये दोनों जो पालतू रूप में अपनाई जाती हैं वो ज्यादा शहद का उत्पादन करती हैं। और जहां तक बात है कितने से शुरू करें, कब शुरू करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए एक तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण देश भर में हमारे 25 जो केंद्र हैं अखिल भारतीय परियोजना के जो मधुमक्खी पालन के ऊपर है जो अनुसंधान का कार्य करती है, तो वो समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो डॉक्टर मनोज शर्मा इस पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो है जो योजना है जो जो अभी बता रहे थे उसमें योजना मिनी विजन 1 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए इन्होंने सहायता की है। तो केवी के भी आजकल जो है ना प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, तो वो भी एक है। या दूसरे केवीआईसी के सेंटर्स हैं, नेफेड है, ये सब लोग मिलाकर के कुल मिला के और शुरुआत जो है अक्टूबर नवम्बर के महीने में अगर उत्तर भारत की बात करें तो करनी चाहिए। और कम से कम 30-40 बॉक्सेस से कोई युवा अगर इसमें आगे आना चाहता है प्रशिक्षण लेके तो शुरुआत करें जैसे जगपाल जी से ने की थी, और फिर आगे वो अपनी इच्छा के अनुसार जो स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ सकता है। और उसमें दोनों रूप में कि सिर्फ ये नहीं कि भाई शहद का उत्पादन या जो बाय प्रोडक्शन उनका एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है।
12: और पॉलिनेशन सर्विस के बारे में भी आपने बताया, तो
9: सर्विसेज के बारे में
12: मैं इसके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन जैसे कि अभी मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे जिज्ञासा है कि जगपाल जी जो अलग अलग तरह के शहद लेकर आए, ये थोड़ा हमें दिखाएं। और देखिए एक बहुत यहाँ पे देख रही हूँ गाढ़े रंग में है, थोड़ा हल्का है, और एक तो बिल्कुल घी जैसा शहद दिखाई दे रहा
11: है। ये घी जैसा ही दिखाते हैं। सबसे पहले ये मस्टर्ड का हानि है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है,
12: मतलब सरसों का।
11: हाँ। लेकिन एक मिथ की वजह से ये हानि हमारे देश में बहुत कम खाया जाता है। कि एक मिथ क्या है हमारे देश में कि जो जम गया वो नकली है, ये गलत है। हानि सभी जमते हैं, हानि का नेचर है जमना। जैसे मस्टर्ड का आप देख रहे घी की तरह लग रहा है, ये जल्दी जमता है, बाकी भी जमेंगे थोड़े टाइम के बाद। तंजू जी इसमें हमने ये वैल्यू एडिशन किया है। वैसे मार्केट में आम आदमी जाता है तो दुकानदार से कहता है शहद दे दे, वो उठा के शहद दे देता है।
12: बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इतना जमा हुआ शहद मैंने भी नहीं देखा, और अगर मैं भी देखती तो मुझे लगता है कि शहद है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी कहा कि ये शायद जैसे घी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये शहद जो है ये सरसों का है,
11: सरसों का
12: ये जम जाएगा,
11: जम जाएगा और बहुत गुणकारी है। उसका एक मोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, ये हमारे देश में जितना होता है उसका 80% एक्सपोर्ट होता है, और उन देशों का एक्सपोर्ट होता है जो फूड के मामले में हमसे ज्यादा अवेयर।
12: अच्छा, एक दूसरा ये बहुत गाढ़ा सा है, ये मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे जामुन का रस हो।
11: नीम के फूलों का है जी।
12: अच्छा,
11: लोग समझते हैं कि भाई नीम इसमें ऊपर से मिलाया गया, नहीं। मधुमक्खियों को नीम के पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां रखते हैं उन पेटियों को, और नीम के फूल से रस चूस के बनाती है, वो नीम का शहद है।
12: तो नीम में तो बहुत सारे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक
11: है,
12: तो ये सारी चीजें इस शहद में।
11: बिल्कुल जी, आप खाओगे तो सारे उसके जो प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल है, और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा।
12: और ये हल्के रंग में कौन सा है? ये बिल्कुल बहुत हल्के रंग में यहाँ पर,
11: ये मल्टी फ्लोरा है जी।
12: अच्छा, कई तरह की वनस्पति?
11: हाँ,
12: से
11: कई तरह की वनस्पति से।
12: आमतौर पर हम यही वाला?
11: हाँ, आमतौर पर कस्टमर यही लेता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है
12: जी।
11: वो जाके ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूएडेशन करके सबको हमने अलग अलग से कलेक्ट किया है और अलग अलग से पैक करते हैं।
12: और ये थोड़ा सा लाल रंग में है, ललछर सा है, ये किस चीज का है?
11: ये अजवाइन का है जी।
12: अजवाइन?
11: हाँ,
12: अजवाइन का भी शायद होता है।
11: हाँ जी, अजवाइन की खेती होती है राजस्थान में बहुत ज्यादा।
12: अच्छा,
11: और वहाँ पे अपने हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बी कीपर है वो माइग्रेट करते हैं, तो हम भी माइग्रेट करके अपने बॉक्सेस को पूरे साल भर में 5-6 जगह
12: ले जाते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि आमतौर पर जो उपभोक्ता है वो ये सोचते हैं कि अजवाइन का शहद यानी इसमें अजवाइन मिलाया हुआ है।
11: हाँ,
12: नीम का शहद मतलब इसमें नीम मिलाया हुआ, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये ऐसी जगहों पर बक्से रखे जाते हैं जहां पर नीम के ही पेड़ है या फिर अजवाइन की खेती है, तो जो नेक्टर होता है, जो रस जो मधुमक्खी चूसती है, वो उसी वनस्पति का चूसती है।
11: 80-90% उसी वनस्पति का सूझ के वो बढ़ाते, 10% तो हो सकता है कोई और भी आ जाए, लेकिन 90% वो
12: मतलब शुद्ध शहद, इसमें किसी तरह की और चीज मिली,
11: कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध शहद को हम घर पे भी जांच सकते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कैसे जांचे। एक तो अंजू जी देखो, शुद्ध शहद को हम कांच के गिलास में पानी भर के ऊपर से डालेंगे तो उसका तार बनेगा, तार टूटेगा नहीं। और सेकंड क्या है, वो बॉटम में जाके और जम जाएगा, बैठ जाएगा। जब तक हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तब तक वो हिलेगा नहीं।
12: अच्छा, और हैं आपके पास, वो भी दिखा दीजिए।
11: ये हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ये भी बड़ा अच्छा इसका बायो प्रोडक्ट है।
12: बी पोलन क्या होता है?
9: अंजू जी, परागकण जिसको बोलते हैं, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये प्रोटीन रिच है। अगर कोई शाकाहारी है और ऐसे कोरोना काल में काफी
12: तो इसे भी खाया जाता है,
9: बिल्कुल इसको भी खाया जा सकता है, ये सिर्फ प्रोटीन है इसमें, और मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती हैं, तो इसको भी इकट्ठा करने का एकत्र करने का एक तरीका होता है साइंटिफिक, कि हम जो ट्रैप लगाते हैं पोलन ट्रैप बक्सों के ऊपर, और जगपाल जी वही कर रहे हैं। इसकी मार्केट यूरोप के देशों में, अमरीका जैसे देशों में बहुत है,
12: नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन,
9: बिल्कुल नेचुरल सोर्स और बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिसको आप वैसे खा सकते हो, दलिया में डाल सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते जब चाहे, बिल्कुल प्योर है ये, और मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया गया है। ये जैसे सरसों का है, सौंफ का हो सकता है, अजवाइन का हो सकता है, सोआ का हो सकता है,
13: अलग अलग वनस्पति
9: किसी भी चीज का हो सकता है, वनस्पति का जैसे शहद है।
12: जी जी, और भी कुछ अभी आप बाकी कुछ एक और आप दिखाना चाह रहे थे शायद,
13: ये शीशम का है जी,
12: शीशम का भी होता है।
13: हाँ जी, शीशम का बहुत छोटा सा फूल होता है और केवल 15 दिन के लिए फूल खिलता है। लोग ये समझते हैं कि शीशम के फूल आता है, बिल्कुल छोटा सा व्हाइट फूल आता है, और ये शहद बड़ा गजब का है जी।
12: कैसे?
13: इम्यूनिटी बूस्टर है।
12: अच्छा अच्छा,
13: आप रेगुलर इसको खाओ। तो कोरोना काल में मैंने बहुत से लोगों को खिलाया है, उनके फीडबैक आई, रिजल्ट आया है कि इस शहद से हम बचे रहे।
12: जी, शहद मतलब एक ही तरह से सारे शहद को देखते हैं, तो ऐसा नहीं, अगर आप प्रोटीन रिच चाहते हैं तो प्रोटीन का भी प्रोडक्ट है, अगर आप जैसे नीम का शहद है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी शहद है, तो कई तरह की वैरायटी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। मनोज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?
10: सामान्य जो भी आदमी होता है वह पूछता है कि हमको शुद्ध शहद चाहिए
12: जी,
10: तो इसकी कोई साइंटिफिक कोई इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये शुद्ध शहद ये है। इसके लिए भारत सरकार ने एक इस योजना के अंतर्गत, NBHM के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है कि हम टेस्टिंग, इसकी हनी की टेस्टिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए,
12: और ये भी मिनी मिशन के अंतर्गत,
10: ये मिनी मिशन के अंतर्गत है, ये जो हमारे तीनों मिनी मिशन के अंतर्गत, जो ये मिनी मिशन सेकंड और फर्स्ट में ये कवर होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो किया है कि पूरे जो देश को 5 रीजनल सेंटर्स में इसको बांटा है, कि उसमें हम 5 बड़ी लैब जिसमें कि सभी प्रकार के टेस्ट, NMR टेस्ट या दूसरे प्रकार के जो भी हनी से रिलेटेड टेस्ट हैं, उनको आसानी से कराई जा सके। क्योंकि अभी तक जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो विदेशों के ऊपर निर्भर थी, ज्यादातर टेस्ट हमारे जर्मनी या कहीं और दूसरे देशों से आते हैं,
12: और फिर कई बार वहां से माल रिजेक्ट भी हो जाता है।
10: हाँ, रिजेक्ट भी होते हैं,
12: जिससे काफी नुकसान होता है।
10: हाँ, तो मैडम इसमें जो मुख्य उद्देश्य यह है कि 5 रीजनल लैब पूरे देश में, इसमें अभी तक हमने 3 रीजनल लैब, एक हमने गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB जो कि दूध से संबंधित बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमने नॉर्थ इंडिया के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम पूसा बोलते हैं, वहां पर हमने एक लैब इस्टेब्लिश पर काम स्टार्ट कर दिया है, तीसरी हमने एक साउथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो हमारा बेंगलोर में है, वहां पर हमने एक लैब स्थापित की है इसकी।
12: मनोज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं टेस्टिंग लैब्स की जरूरत बहुत महसूस की जाए, तो इसकी मांग भी जहां तक मेरी जानकारी है काफी समय से उठ रही थी। आपने खुद बताया कि विदेशों में टेस्टिंग होती थी और कई बार उनके मानकों के आधार पर खरा नहीं उतरता था मांग, तो काफी नुकसान भी रहता था। ये टेस्टिंग किस किस चीज की जाती, मतलब इसके मानक क्या है, आप बताना चाहेंगे?
9: बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा। देखिए अंजू जी, क्या है जो एडल्ट्रेशन होता है 2 तरीके से होता है, एक तो मान लिया गन्ने की चीनी का एडल्ट्रेशन है, उसकी मिलावट की गई है, तो उसको हम C4 की श्रेणी में लाते हैं। अगर गन्ने की चीनी और अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उनके अनुसार अगर किसी शहद में 5% से ज्यादा सुक्रोज है या चीनी है तो वो मिलावट की श्रेणी में आता है। और एक जो दूसरी बात है मॉइस्चर, नमी की मात्रा, नमी की मात्रा अगर 18% से ज्यादा है तो वो जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है, उसमें 18% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। और जहां तक बात है C4 जो गन्ना है, C4 की श्रेणी में आता है, तो C4 की टेस्टिंग तो हम कर पाते थे हिंदुस्तान में, पता लगा लेते भाई इसमें चीनी का मिलावट की गई है। जैसा जगपाल जी ने बताया, आप पारदर्शी ग्लास में एक बूंद शहद डालेंगे तो तली में बैठ जाएगा, जाकर तार सा बनेगा, उसका मिलेगा नहीं जब तक आप चम्मच से नहीं मिलाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर C3 हमारा जैसे राइस सीरम, इसकी अगर मिलावट की गई है तो राइस सिरप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है मिलावट के रूप में, उसकी जांच हम नहीं कर पाते थे हिंदुस्तान में, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जर्मनी से एनएमआर या दूसरे जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया उनके लिए जो लैब स्थापित किए हैं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो इस योजना के तहत मिशन के तहत किया गया है एनडीडीबी आनंद के अंदर, दूसरा पीबीटीआई चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छी लैब बनी है और ये दोनों और तीसरी अभी आया चार बेंगलोर में लैब स्थापित हुई, आईआरआई में भी पूसा में भी लैब स्थापित की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इसको पता लगाना कि राइस सिरप का और C3 प्लांट्स की जो एक्सट्रैक्ट है उनका इस्तेमाल करके शहद में मिलावट की गई है वो एक मुश्किल कार्य था
12: जी, बिल्कुल।
9: तो उसके लिए ये लैब स्थापित की जा रही है और सारे स्टैंडर्ड तैयार की जा रहे हैं और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 25 केंद्र हैं, हम इन दोनों लैब को जो वर्तमान में इस क्षेत्र में काम कर रही है आनंद और चंडीगढ़ वाली मोहाली वाली, इनको हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल मंगा के शहद के अलग अलग उससे अलग अलग,
12: यानी बलराज जी कुल मिला के बात यह है कि इससे हम और बेहतर जो गुणवत्ता युक्त जो प्रोडक्ट है वो बाजार में उपलब्ध करा सके और उपभोक्ता जो है उसके मन में भी इससे ज्यादा विश्वास भी पैदा होगा। देखिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहद को लेकर कुछ कुछ वीडियो भी वायरल होते रहते हैं कि ये नकली है ये असली है, तो जब पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी तो वो तमाम जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी।
10: इसके साथ साथ मैडम इसमें ये तो बड़ी लैब है, इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश में एक जो लैब्स का एक जाल बिछाया जाए
12: जी,
10: उसमें हमने अपने 3 साल का जो हमारा टारगेट है वो 100 लैब्स का है।
12: अच्छा,
10: इनको मिनी टेस्टिंग लैब बोलते हैं, इसमें बड़े टेस्ट ना होंगे, जितने नॉर्मल टेस्ट हनी से रिलेटेड हैं इनको कवर किया गया है और अब तक लगभग 16 लैब हम स्थापित भी कर चुके हैं और पूरे देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक ईस्ट से वेस्ट तक सभी में ये लैब का जाल बिछाया जा रहा है।
12: टेस्टिंग पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। बलराज जी एक और बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है और उसमें बेचारे जो किसान है या मधुमक्खी पालक है उसका कोई गलती भी नहीं होती है लेकिन तभी उसका माल रिजेक्ट हो जाता है, स्टोरेज किस तरह के बर्तनों में इसकी स्टोरेज की जाए ताकि गुणवत्ता बनी रहे और जो कई बार मिलावट जो नहीं भी करता है और लेकिन वो टेस्टिंग में उसका शहद फेल हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
9: देखिए इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब डॉक्टर मनोज ने बताया जो योजनाएं दी जा रही है तो किस प्रकार के बर्तन उसमें होने चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या ग्लास के कंटेनर्स भी हो सकते हैं तो उनमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहां तक कि जैसा आपने कहा कि किसान अपने स्तर पर मधुमक्खी पालक कई बार, अब जगपाल जी तो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी यूनिट लगाई होगी निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग की प्रसंस्करण की, लेकिन आम किसान नहीं कर पाता, तो ऐसे में अब इनकी योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार की है जैसे KVIC ने अभी एक मोबाइल जो प्रोसेसिंग वो वैन स्थापित की है पिछले महीने जो 300 किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है एक दिन में और उसमें एक मिनी टेस्टिंग लैब भी है जो चलते हुए कहीं भी मान लिया बी कीपर है वहां चली जाएगी वहां प्रोसेसिंग कर देगी। इस तरीके से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती माइग्रेशन में, जब मान लिया सर्दी की फसलें खत्म हुई तो इनको दूर पे लेके जाना है तो एक ऐसी मोबाइल वैन 50 बक्सों के लिए भी KVIC ने तैयार की है। तो जो आपकी योजना है केंद्र सरकार की डॉक्टर जैसा बता रहे उनके अंतर्गत इन सारी चीजों पे जोर दिया जा रहा है कि नॉट ओनली कि सिर्फ हम उसकी टेस्टिंग के ऊपर मिनी टेस्टिंग लैब पर बहुत अच्छा जोर दिया जा रहा है, अगर भाई स्थानीय स्तर पे कैसे उसकी शुद्धता को जांचा जा सके और कैसे उनको आप किस तरीके के हमारे मोबाइल जो है ना वो होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन होने चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए और किस तरीके के कंटेनर होने चाहिए और दूसरे इक्विपमेंट है, अब उनकी भी चर्चा उन पे भी इजाद हो रहा है, अगर भाई जो है ना पोलन ट्रैप कैसा होता है और उसको कैसे लगाया जाए कैसे स्थापित किया जाए और यहां तक कि अनुसंधान के जरिए, क्यों हमारा काम है विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना कैसे पोलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएं, सेब के ऑर्चार्ड हैं वहां पिछले साल का जो पोलन इकट्ठा किया है वहां पोलिनाइजर की कमी है, अब पोलिनेटर तो है मधुमक्खी पोलिनाइजर की कमी है तो पिछले साल के पोलन्स को हम पोलन डिस्पेंसर्स के थ्रू या जेनेटिक स्टॉक भी अच्छा जो उसके पोलन को प्रीफर करता है एप्पल के को या दूसरे लीची के को, इस तरीके के अनुसंधान के जरिए बहुत अच्छा कार्य जो है प्रगति पर है और निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ावा मिलेगा और ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो मधुमक्खी पालन में काफी इजाफा होगा और इनको मधुमक्खी पालकों को भी कृषि को भी लाभ मिलेगा।
12: बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी बातें बताई बलराज जी ने और माइग्रेशन के बारे में बताया कि जो मधुमक्खी पालक सोलली मतलब जो सिर्फ मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, कृषि का कार्य उनका नहीं है, कई बार उनके सामने चुनौती ये आती है कि चलिए एक सीजन में तो आपने जिस क्षेत्र में है वहां पर आपने डब्बे रखे, माइग्रेशन में पहले जब मैंने एक बार प्रोग्राम किया था तो एक किसान ने समस्या बताई कि दूसरे स्टेट में जाना फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना फिर वहां पर ऐसी जगह ढूंढना, ये एक प्रैक्टिकली समस्या आती है, तो क्या इसमें भी कुछ सुगमता हुई है?
13: अपने कृषि मंत्रालय ने पीछे एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई जो भी किसी भी स्टेट में सरकारी लैंड जैसे रोड के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे किसी बीकीपर ने अगर अपनी मधुमक्खियां रख दी तो वहां से उनको उठवाया नहीं जाएगा जब तक कोई बड़ी समस्या या लोगों को ना हो। पहले ये था कि जहां भी हम रखते थे तो उस डिपार्टमेंट के लोग आके कहते थे उठाओ उठाओ, तो ये डिपार्टमेंट की मंत्रालय की पहल से बहुत हद तक लोगों को सुविधा हुई है, न तो पहले रखने में ही बड़ी समस्या होती थी। कुछ मीडिया के माध्यम से, आप जैसे उनके माध्यम से लोग अवेयर भी हुए ना, हमने जब स्टार्ट किया तो लोग जेड़ी लेके आ जाते थे, पूरे रख दी सारे तेल न तो ये सूझ जाएंगी ऐसे बोलते थे, लेकिन आज लोग बुला के रखवाते हैं। मेरे को भी फोन आते हैं कि मेरा इस चीज का बाग है या भाई मस्टर्ड के लिए आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों का नजरिया भी बदला है इसके प्रति, है ये हमारे फायदे के जीव हैं, नुकसान के नहीं है।
12: जी बिल्कुल, हमारे जिसे हम कहते हैं दोस्त,
13: हाँ जी दोस्त,
12: हमारे दोस्त हैं, कृषि
13: मित्र कीट है हमारे।
9: और मैं अंजू जी बताना चाहूंगा, जब ये लोग जगपाल जी जैसे जो मधुमक्खी पालक है प्रगतिशील, जब वो अपने बक्सों को सरसों की फसल के बाद पहले यूकेलिप्टस में लेके जाते हैं, फिर वो जो है ना कहीं एप्पल ऑर्चार्ड्स में लेके जाते हैं, तो आज से 15-20 साल पहले जो सेब के बगीचे वाले जो ओनर होते थे वो कोई पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज वो 800 से 1000 रुपए प्रति बक्सा एक महीना वा रखने का,
12: तो उनको पता लग गया
9: इसका क्या फायदा है, इसकी उपज बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, साइज शेप सब उससे इम्प्रूवमेंट होता है, तो काफी प्रगति है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माइग्रेशन करते हैं तो केंद्र सरकार का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का तो कोई रोक टोक नहीं है।
12: मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
10: हाँ मैडम, इसमें जो मुख्य जो माइग्रेशन का सवाल उठा है, इसमें भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें भी हमने हाल में ही एक मधु क्रांति पोर्टल ऑनलाइन हमने लॉन्च किया है,
12: मधु क्रांति पोर्टल। अच्छा,
10: तो इसमें ऑनलाइन जो भी हमारे बी कीपर्स हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। और उसमें जो बी कीपर्स हैं हमारे, उनके कॉलोनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको कोई भी बी कीपर्स कहीं भी किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अगर वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसको सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे जो मंत्रालय की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी भी राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको चिट्ठी लिखी जाती है कि भाई हमारे जो बी कीपर्स हैं ये आपके स्टेट में जो माइग्रेशन करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए, तो इसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
12: यानी जो पहले जो समस्याएं थी उनमें संशोधन किया गया, उनमें सुधार किया गया है ताकि और बेहतर तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके।
5: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि कैसे पहले जब शुरुआत की गई थी मधुमक्खी पालन की, तो लोग कैसे उन्हें अपनी मधुमक्खियों को हटवाने के लिए बोलते थे, लेकिन अभी जो अवेयरनेस के माध्यम से अभी लोग जागरूक हो चुके हैं और कैसे अभी न केवल वो उनके खेत पे खुद बुलाते हैं वरन वहाँ पर पैसे भी देते हैं, इससे जो फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है और फसलों की पैदावार में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी हमको यहाँ पर मिली है। तो किसान साथियों, आप भी जो भी इस कार्य के इच्छुक हैं, आप भी अपना अपने विचारों को केवीके के माध्यम से और केवीके में पहुंचा सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं और अनुदान के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM में खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं मधुमक्खी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी तक हमने बात की जो पालतू प्रजातियां हैं दो, हमारी एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, जिनसे हम बक्सों में रखते हैं, शायद उत्पादन करते हैं या परागण की सेवाएं भी देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अंजू जी दो महत्वपूर्ण प्रजातियां और हैं, एपिस फ्लोरिया जिसको हम लिटिल बी बोलते हैं, और ये प्रजाति अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है एपिस डॉर्साटा। एपिस डॉर्साटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। देखिए कहां मेलिफेरा 2 से 2.5 किलोमीटर तक जाती है, एपिस डॉर्साटा 4 से 5 किलोमीटर तक फॉरेजिंग रेंज है, अपनी दूरी तय करती है खाना इकट्ठा करने में, बहुत सक्षम परागण करता है, विषम परिस्थितियों में काम करती है। तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या बुंदेलखंड का क्षेत्र ऐसे शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है, ऐसे में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो इन्हीं दो परागणकर्ताओं के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी जनसंख्या कम होती है, पालतू की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनकी जनसंख्या कम होती है तो निश्चित रूप से कृषि का हमारा एक एक, एक, एक, एक चुनौती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि जैसे जहां पेड़ है बड़े बरगद के, उन पर डॉर्साटा का कहीं छत्ता लगा है तो उसके नीचे धुआं कर दिया या उसके नीचे डीजे बजा दिया ब्याह शादियों में, वो ना करें। बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर या पानी की टंकियों के ऊपर वो अपना छत्ता बनाती है। एक फ्लोरिया जो है वो झाड़ी में, बोगनविलिया में, घास में छत्ता बनाती है और ये भी करीब 700 से 800 मीटर की दूरी तय करती है, सक्षम परागण करता है। तो इनकी जनसंख्या भी हमें कम नहीं होने देनी है, तो हैबिटेट लॉस नहीं होने देना है ये बात। और जहां तक बात है अगर इन दोनों की जनसंख्या, हम समय समय पर इनके लिए क्या करें क्या ना करें, जैसे धुआं ना करें, सामूहिक आवाज ना निकालें, भड़कीले कपड़े ना पहने, खास करके गर्मी के महीने, सर्दी में तो काम चलता, खाने की कमी नहीं, पानी के स्रोत भी है, लेकिन गर्मी अप्रैल मई जून जुलाई में जब ये दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में सावधानी रखने की जरूरत है। और इनका जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पालतू के साथ साथ अगर जंगली प्रजाति से आपने डॉर्साटा का छत्ता से शहद लेना है उसकी भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम बताएंगे से प्राप्त कर सकते हो, उसको जलाना नहीं है। तो बी हंटिंग पे काम नहीं करना है और उनको जलाना नहीं है, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो हमारी जैव संपदा है उसका एक पार्ट है।
2: जैव संपदा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जैसे कि आपने बताया कि बी हंटिंग नहीं, बी कीपिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य आप शुरू करने की सोचते हैं तो उसमें पूंजी तो लगती है, तो ऐसे में हमारे छोटे किसान बहुत, जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है या फिर बेरोजगार युवा, उन्हें किस तरह से उनके हैंड होल्डिंग की जाएगी या फिर कैसे उन्हें सहारा दिया जाएगा, किस तरीके से आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई जाएगी बी कीपिंग के लिए?
3: इसमें मैडम जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम जो हमारी स्कीम में असिस्टेंट सपोर्ट है वो जो सामान्य राज्य है उनमें 50% तक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 90% तक, और जो हमारे आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ हैं, कोऑपरेटिव हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हम 75% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका जो प्रोजेक्ट है या उनकी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसको वो अपने जिले में, जो जिले के माध्यम से वो राज्य सरकार में सम्मिलित करेंगे और राज्य सरकार उनको फॉरवर्ड करके वो केंद्र सरकार में भेजती है, तो उसके अंतर्गत हम अनुदान देते हैं। तो इसके लिए जो जिस भी कंपोनेंट पर अनुदान है, हमारी वेबसाइट है नेशनल बी बोर्ड की, उस पर पूरा विस्तार से दिया गया है कि किस कंपोनेंट में कितना सब्सिडी मिलती है।
2: बिल्कुल, नेशनल बी बोर्ड की एक वेबसाइट भी है जो कि तमाम जानकारियां जहां पर उपलब्ध है आप जा सकते हैं। और आजकल तो हमारे किसान बहुत स्मार्ट हैं, ज्यादातर किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
3: एक में और एक छोटा इसमें वो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस मिशन के अंतर्गत किया गया है कि पूरे देश को जो 100 FPO यानी कि क्लस्टर, उसमें जो महत्वपूर्ण जहां पर शहद का उत्पादन होता है उसको वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम में। और जो 3 एजेंसी हमारी हैं जैसे कि नेफेड और एनडीडीबी और एक ट्राइफेड, इनके माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जब ये एफपीओ पूरे बन जाएंगे तो उसके निर्माण के बाद वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जो लोकल स्तर पर इन 100 जिलों के किसान या मधुमक्खी पालक हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो एक बहुत ही
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि हम लगातार मधुमक्खी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी है। अधिकतर अपने गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा मधुमक्खी का छत्ता आ जाता है तो उसको धुआं करके या शोर शराबा करके वहाँ से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसे हमें बचा कर रखनी चाहिए। और जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा, हमें बी हंटिंग नहीं करनी है, बी कीपिंग करना है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइंडाबिल 90.8 FM के साथ।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी होती है। आज हमारे साथ हैं जयपुर की एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। 73 इयर्स की उम्र में भी वो क्लासरूम में उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैशन और उतने ही डेडिकेशन के साथ खड़ी रहने वाली एक एजुकेशनिस्ट हैं। फाउंडर प्रिंसिपल, मेंटर और हजारों बच्चों के फ्यूचर की एक आर्किटेक्ट, मिसेस नमिता गीर जी। तो चलिए जानते हैं नमिता जी को थोड़ा और सुनते हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग नमिता गीर जी के साथ। तो नमिता गीर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तनुषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ होने से।
1: जी मैम, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इतने एक्सपीरियंस से जो आप हेल करते हैं उसके बावजूद आपने हमें आपका समय दिया और आपने ये समय निकाला एसएन रेडियो के साथ इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
1: जी तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 50 इयर्स का, लाइक 5 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, इतनी जनरेशंस आपके अंडर ग्रो हुई हैं, उनको आपने देखा है आपके सामने, लाइक यू नो वो सीड सो हुआ, वो कैसे यू नो ब्रांच आउट हुआ, कैसे वो पहले शर्ब बना फिर वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इट मस्ट हैव बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टू विटनेस इतने सारे बच्चों की जर्नी ओवर द कोर्स ऑफ 50 लॉन्ग ईयर्स। तो जब आप आज जब हम बात कर रहे हैं तो कभी एक मोमेंट आता है, आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप खुद के साथ बैठते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये सफर किस तरह से शुरू हुआ था और कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आज आपको वो मोमेंट्स किस तरह से सुकून देते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं जब आप मुड़ के देखते हैं अपने इस ग्लोरियस सफर को।
2: जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पैशन था शुरू से पढ़ाने का, बच्चे मुझे बहुत पसंद थे, फिर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा लगाव हो गया बच्चों से कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ी। बहुत वो मेरे एक अभिन्न अंग बन गए थे मेरे, मुझे बच्चों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी, रात में सोती थी तभी भी मैं सोचती, अच्छा उनको और किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनके लिए चीज इजी बनाई जाए, कैसे बेटर हुए चीजें जो बच्चे समझे। तो जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत इस बात की खुशी होती है कि आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब इतने अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। अब कभी कहीं बाहर जाती हूँ, कोई बच्चे मिल जाते हैं, पहुंच होते हैं, बोलते मैम आपने पहचाना, आप नमिता मैम है ना, तो इतना अच्छा लगता है। वो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने, वो मुझे भूले नहीं, तो कुछ तो कहीं मैंने कोई छाप छोड़ी होगी उनको, कहीं मैं समझ में आई होंगी। तो जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो और ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते मैम आपको हमारा नाम याद है, कहा अपने बच्चों को भूलती नहीं हो। और जब पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं, बोलते मैम आपकी बेसिक फाउंडेशन की वजह से आज हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मुझे लगता है और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। आज बच्चों के मतलब आज वो माता पिता बन गए और वो जब अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन किए जाते हैं, तो मुझे मैंने इनके बच्चों को भी मतलब इनको भी पढ़ाया है, इनके बच्चों को, फिर वो इतने खुशी से अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारी भी मैम थी, ये हमारी भी मैम है, तो बहुत खुशी मिलती है।
1: वाह,
3: किस तरह से ये चेंज शुरू होता है, कैसे एक टीचर एक कैटलिस्ट होता है इतने बड़े चेंज का। और एक्चुअली जनरेशंस की जनरेशंस आपने पढ़ाई होंगी, जैसे आपने बताया कि अब वो भी पेरेंट्स बन गए और उनके बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं। तो मैम, दिस इज सच एन अचीवमेंट एंड सल्यूट टू योर जर्नी। इतनी खूबसूरत जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड वंस अगेन हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए आप हमारे साथ तत्पर हैं आज के इस एपिसोड में। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम। आगे चलते हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी आगे चलते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे फाउंडेशन क्रिएट किए स्कूल्स के लिए, आपने उन्हें सिर्फ मैनेज नहीं किया, उन्हें शुरुआत से बिल्ड किया, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यू क्रिएटेड देम। तो जब आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, जब आप उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, आप उसकी फाउंडेशनल स्टोन रखते हैं, तो बहुत इमोशनल और बहुत यू नो फिजिकल लेवल पे चैलेंजेस आते होंगे। तो सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या रहा आपके लिए, और सबसे बड़ा एक फिजिकल, एक सर्कमस्टेंशियल जो स्ट्रगल था वो क्या रहा? आई एम श्योर बहुत सारे, अनलेस आप अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं या आपकी फैमिली में देर हैव बीन टीचर्स इन योर पास्ट, दैट ऑल्सो इफ यू कैन एड्रेस दैट, वॉज इट अ लेगेसी जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी, या आप फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं अपनी फैमिली के, तो ये किस तरह से सफर बिल्ड हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे इमोशनली एंड फिजिकली सर्कमस्टेंशियली, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: मैं अपने फैमिली की फर्स्ट टीचर थी, और इनफैक्ट मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इट वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, राजपूत फैमिली, एंड बहुत पर्दा सिस्टम और सब था। और ये सोचा जाता था कि हाँ ठीक है, पढ़ ली, स्कूल कर लिया, उसके बाद में तो शादी करनी है। बट मेरे फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। माई फादर वॉज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ू, मैं कुछ करूँ अपना, उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। वो शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह का भी मैं कुछ करूंगी। और 1988 में जब मैंने अपना पहला स्कूल खोला, तो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, मीन्स सब मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि लाइक जॉब कर रहे हो, फिक्स सैलरी आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू ओपन योर ओन स्कूल, क्या डीए स्कूल चलेगा। मुझे लगता था कि नहीं, जब हम मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैं उनको दूंगी, मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत इजीली सिलेक्ट होंगे। इट वॉज अ प्री स्कूल, तो उस वक्त सबका मन ये होता था कि हमारी डॉटर है तो एमजीडी में जाए, बेटा है सेंट जेवियर्स में जाए, एसएमएस में जाए, ये उन लोग का टारगेट होता था कि ये स्कूल में जाना है। तो मुझे लगता था जो मैं उनको दूंगी बच्चों को, तो डेफिनेटली मैं पीछे नहीं हट सकूंगी। मुझे मालूम था कि हाँ मुझे आगे ही जाऊंगी मैं,
0: राइट।
1: और फिजिकल चैलेंजेस की जैसे आपने बात की, तो मेरे मदर की हवेली में ही मैंने अपना फर्स्ट स्कूल खोला था। पुराने वो गोडाउन होते थे ग्राउंड फ्लोर पे, उनको सारा डन अप कराना, चूने का काम होता था, इजी था चूने वाले मिलना। मतलब ये सब तो बाद में सीमेंट और ये सब चीज चालू हो गई थी
0: बिल्कुल
1: टाइम पर, क्योंकि सब लोग डिस्करेज कर रहे थे, तो दे वांटेड टू सी कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ।
0: करेक्ट।
1: तो मैं मई जून की गर्मी में, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था 1988 में, और मैं दोपहर में जाकर के, सुबह जाके मजदूर ला रही हूँ, चूने वाले के पास जा रही हूँ, सीमेंट वाले के पास जा रही हूँ, इलेक्ट्रिशियंस को बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कार्पेंटर से फर्नीचर की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। जब मन आप कोई चीज बना ले कि हाँ मुझे ये करना है, तो आई थिंक भगवान भी साथ देता है। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको टीथिंग प्रॉब्लम हर उसमें आती है, हर मतलब तो कोई भी आप चीज स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए ही है ये बात, स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल, टीथिंग प्रॉब्लम होती ही है, और इनसे घबरा कर अगर हम बैठ जाएं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्डवर्क एंड डेडिकेशन आर अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि क्यों, क्या गारंटी है। मैंने सबको फिर, क्योंकि जब बहुत अच्छा चला, मेरे हर बच्चे का एडमिशन जहाँ वो चाहते थे वो जाता था, तो दैट वाज लाइक सबको, मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ी कभी।
0: बिल्कुल, आपका काम बोलता था जी।
1: हाँ, पैशन होना चाहिए, जो भी काम करें उसके लिए पैशन होना चाहिए, बेसिकली सबसे बहुत जरूरी चीज है।
0: राइट राइट। और सब लोग सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो ग्लिटर देखते हैं, वो गोल्ड देखते हैं, बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसके पीछे की मेहनत है और जो ग्राउंड वर्क है, जो लिटरली आपको एकदम निचोड़ के रख देता है, जो सिर्फ आपको पता है कि आप उसको कैसे गो थ्रू करते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। बट आई थिंक जैसे आपने कहा, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी,
1: हाँ
0: कि मेरा
1: जी
0: ड्रीम है एंड आई हैव टू फुलफिल
1: बिल्कुल
0: इट, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल मैम आपकी जर्नी में। अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, 50 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर डेडिकेशन। सो आगे चलते हैं मैम, आपने फाउंडेशनल लिटरेसी पे बहुत फोकस रखा है आपकी टीचिंग में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके लिए बहुत कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो किस हिसाब से आप, जब एक 4 से 5 साल का बच्चा या उससे भी छोटा बच्चा जब आता है, तो उसकी पर्सनालिटी और उसके कॉन्फिडेंस को किस तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी शेप कर सकती है, क्या फायदे होते हैं उसके, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहें तो?
1: तनुषा जी, वो 4-5 साल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों की जिंदगी में. उनके जो माइंड्स होते हैं, दे आर लाइक स्पॉन्ज. उसमें हम जितना उनको दे सकते हैं, हम लोग शायद दे ही नहीं पाते हैं उस उम्र में. दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग 4 to 5 languages एट अ टाइम. इतना उनकी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है. आज हर जगह स्कूल खुल गए हैं, है ना, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, अगर जैसे पेरेंट्स का मन होता है कि हम हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर,
0: करेक्ट।
1: इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. बाकी हर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है. तो हिंदी पे भी मैंने बहुत फोकस किया कि हिंदी की मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए. तो मेरा कोई ठीक है, जो स्कूल में सिलेबस एक प्रिस्क्राइब होता है, बट मैं खेलने के माध्यम से, थ्रू प्ले वे मेथड ओनली, मैं उनको पढ़ाया करती थी, है ना. बिकॉज जब बच्चे को अगर आप बुक लेकर के आप पढ़ाना चाह रहे हो, सपोज प्रेपोजिशन करा रहे हैं, तो कोई सोचता प्री स्कूल के बच्चे को प्रेपोजिशन कौन कर पाता है. वो वहीं पे हम नींव उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम वहीं पे उनको फाउंडेशन ले कर रहे हैं. तो खेलने खेलने में ट्रायल्स रख देते थे, द जंप अक्रॉस, सो दे यू नो विथ योर एक्शन आप बता रहे हो कि अक्रॉस, सो दे नो कि हाँ इधर से उस तरफ चले जाएंगे, तो दैट इज अक्रॉस,
0: हाउ अमेजिंग।
1: यू नो. टायर लिया, टायर में से अच्छा गो थ्रू दिस, टनल में से कम ऑन गो थ्रू दिस, तो उनको थ्रू, फिर ये वाली जो प्लेसमेंट है, पोजिशन है, ये पता होनी बहुत जरूरी है.
0: करेक्ट।
1: सो इस तरह से खेल खेल में उन्होंने बहुत सुने. और फिर जब सीखते हैं खुद करके, तो वो कभी भूलते नहीं है, बिकॉज उन्होंने, हाँ, रोट लर्निंग नहीं हुई है उनकी, उनको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है.
0: बिल्कुल
1: एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स करवाना इज नॉट द क्राइटेरिया. बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें सिखाना पड़ता है. हर बच्चा डिफरेंट है. हाँ, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिफरेंट वेज, वेरिड वेज, कि उनका
0: करेक्ट।
1: कॉन्सेप्ट क्लियर हो.
0: और
1: सबसे
0: उसके लिए
1: इम्पोर्टेंट वही है.
0: जी, और उसके लिए खुद को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद के पास इतने सारे मेथड्स होने पड़ेंगे डिवाइस करने के लिए, कितना दिमाग खुलना पड़ेगा और कितनी मेहनत बिहाइंड द सीन्स करनी पड़ेगी टू एक्चुअली कम अप विद दीज नोवस मेथड्स, जैसे कि आपने बताया कि अक्रॉस समझाने के लिए, प्रेपोजिशन समझाने के लिए, वो बच्चा शायद कभी नहीं भूलेगा अगर वो टायर से अक्रॉस और थ्रू का कॉन्सेप्ट समझ जाए, जो बहुत बहुत सारे लोग गलती करते हैं आज भी, जिनकी इंग्लिश अदरवाइज शायद बहुत अच्छी हो बट देन प्रेपोजिशन रॉन्ग होते हैं हमारे। तो ये जो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द एक्सपीरियंस जो आपके पास है मैम। और अगर कोई मेथड, अगर आप कुछ नोवस मेथड हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कॉन्वर्जेशन, सो इफ वी कैन जस्ट एक्सटेंड दिस आंसर थोड़ा सा।
1: श्योर, हम लोग फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, तब जैसे पार्क लेके जाते हैं. पेरेंट्स को जनरली लगता है कि नहीं, पिकनिक पे लेके जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट अ पिकनिक. हम उनको लेके जाते हैं तो उनको वहां पे एक्सप्लोर करने देते हैं कि अच्छा, पिकअप डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, तो देखते हैं शेप सबका अलग है, साइज सबका अलग है ना. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन. तो ये जब साइंस में आगे क्लास 3 में 2 में पढ़ते हैं, उससे पहले इनको सब आ गया प्री स्कूल में कि लीव्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, है ना. कौन गार्डन को लुक आफ्टर करता है, कौन पार्क को लुक आफ्टर कर रहा है, क्या इंसेक्ट्स है वहां पर. ट्री, हम बोलते हैं गो एंड हग द ट्री, यू नो मेक अ लाइक सर्कल अराउंड द ट्री, अराउंड आ गया उनको है ना, अगधा ट्री ट्रंक. तो उनको ट्री ट्रंक मतलब यू नो वोकैबुलरी बिल्ड करना होता है बच्चों की. तो हम कहीं भी जाते हैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब ये बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक हम जिंदा हैं, हम कोई समय नहीं है सीखने का, हम पूरे समय सीखते हैं
0: बिल्कुल.
1: तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो जैसे हम कार में जा रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं ओके देखो दिस इज अ बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के प्रॉप रूट्स होते हैं. तो जब तक जब उनको देखते हैं तो अब बुक्स में पढ़ने से ये सब चीजें नहीं आती हैं,
0: नहीं आ सकती जी,
1: इतना अच्छे क्लियर मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इतना.
0: बिल्कुल.
1: तो इस तरह से मेरे फील्ड ट्रिप्स भी मेरा बहुत एक यू नो बड़ा वो रहा है. ले जाने से उनको बहुत सीखने को मिलता है. तो जब उनके कोर्स में जब ये सब चीजें आती हैं तब तक उनको ऑलरेडी पता होती है वो चीजें.
0: तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको फील कर चुके
1: हैं. राइट. एंड आई थिंक टू फोनिक्स. तो फोनिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. ABCD करके वो हर स्पेलिंग बच्चा नहीं लर्न कर सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. जितना साउंड से हम करा सकते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड से नहीं रिलेशन है, तो वो हम बच्चे को खाली उतना सा ही लर्न करने का यू नो तो हम उनका बर्डन कम कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हाँ जी. तो उससे क्या रीडिंग बहुत अच्छे से आती है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन लिसन टू एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई और भाषा हो, जब वो सुनते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगती है. जब समझ आएगी तो फिर वो बोलने की कोशिश करेंगे.
0: बिल्कुल.
1: व्हाट दे लैक इज वोकैबुलरी. तो हम वोकैबुलरी उनकी बिल्ड करते हैं. बच्चे को पानी पीना है, जनरली मदर्स बोलते हैं मम्मम. तो आप ये ऐसे वाले बेबी वर्ड्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आप बच्चों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो.
0: बिल्कुल
1: है ना. उनको बोलना चाहिए वॉटर, वॉन्ट वॉटर. हिंदी तो वो सीख ही रहे हैं, अपने माहौल से सीख ही रहे हैं, अपने
0: एनवायरमेंट
1: में. आप कोई भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसके वर्ड्स आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों को.
0: करेक्ट. तो लेट देम ग्रो ऑन देम इजीली एक एफर्टलेसली. जी
1: जी हाँ. और आई थिंक रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. रीडिंग आ गई, समझ आ गया, तो लिखने में तो बच्चा कभी भी लिख लेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सोच ही डेवलप होगी रीडिंग से.
1: जी हाँ. वोकैबुलरी बिल्ड होएगी, सोच डेवलप होएगी. कितना आप जानोगे, वर्ल्ड को जानोगे, पूरी दुनिया जानोगे आप. एंड जब छोटे छोटे वर्ड्स इनको केजी में, लोअर केजी में सब सिखा लेते हैं. आई टेल द पेरेंट्स होर्डिंग्स वगैरह इनको पढ़ने दीजिए. जब जाते हैं लेट देम रीड. यू नो दे शुड बी एबल टू एसोसिएट जो पढ़ रहे हैं उसका क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट.
0: करेक्ट. और वो क्या वहाँ क्यों है, वो बिलबोर्ड क्यों है. करेक्ट.
1: राइट राइट
0: करेक्ट.
1: मैथ्स हम जब सिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं आप बाजार जाते हैं बच्चे को. तो ये ना टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि अगर वो मनी उनको हैंडल करने दें दे विल नो. अगर आप प्लस माइनस, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जानोगे आपको तो कोई भी चीट कर लेगा.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: इस तरह से
0: जी मैं कई बार ये सोचती हूँ. और बहुत हाल ही में मेरा कोई डिस्कशन भी हुआ था कि हम जब छोटे थे, लाइक आवर जनरेशन आई थिंक वाज द लास्ट जनरेशन जिनको घर से बाहर भेजा जाता था कि जाओ 1 किलो टमाटर लेके आओ. भाग के हम साइकिल पे जाते थे और अपनी शायद 1 रुपए की टॉफी के लालच में वो टमाटर लेके आते थे भरी दोपहरी में. आई मुझे याद है. और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था, बस जाओ ये कहा जाता था. तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सचेंज होता था, चाहे वो सब्जी वाले से, चाहे वो वहां चार खड़े लोगों से, चाहे उनसे जो व्यवहार डेवलप होता है, एंड ऑफकोर्स जो मैथमेटिक्स आप लर्न, जिसकी आपने भी बात की. तो दीज आर सच स्मॉल थिंग्स जो हम अनोइंगली अनकॉन्शियसली जस्ट सेटल्स आपके अंदर और आप सीख जाते हैं. वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब बिल्कुल यू नो एलियन होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के स्कूल्स और आपके स्कूल्स जैसे आपके प्री स्कूल्स जैसी जो लर्निंग है, मॉड्यूल्स हैं, उनसे बच्चे सच में वापस प्रैक्टिकल लेवल्स पे आ सकते हैं, वापस उन रूट लेवल प्रैक्टिसेस पे आ सकते हैं जो एक टाइम पे आम होती थी. वो दे वर अ वे ऑफ लिविंग. तो वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैम. इसी एहसास के साथ हम सुनते हैं हमारा अगला गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. फिल्म

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम
1: जी।
0: मैम, आज भी आई डोंट वांट टू टेक योर एज, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स आपकी एज जाने और इंस्पायर हों कि इस एज में भी कोई इतना पैशनेट हो सकता है, कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है टुवर्ड्स देयर कॉज। तो एट दिस एज ऑल्सो व्हेन यू आर 73, आप क्लासरूम टीचिंग उतने ही पैशन से करती हैं और खुद क्लास में जाती हैं, पढ़ाती हैं, तो आपको ये एनर्जी और ये लव फॉर टीचिंग आता कहाँ से? व्हाट इज योर फ्यूल? आई जस्ट वांट टू नो, क्या आपको ट्रिगर करता है, क्या आपको फ्यूल करता है, क्या आपको लुक फॉरवर्ड एवरी डे करने के लिए इंस्पायर करता है, वो अगर आप साझा करना चाहें। क्योंकि हम बहुत सारे इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद 10 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर 10 इयर्स दे गिव अप बिकॉज दे आर लाइक ब्रेन रॉट हो रहा है, या हम डाई आउट हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज डाई आउट हो जाती हैं और वी फील बर्न आउट। सो दिस पैशन, द काइंड ऑफ पैशन दैट यू गेट फॉर टीचिंग, आज भी वो कहाँ से आता है? व्हाट इज योर, यू नो, व्हाट इज योर सोर्स? If we can tap into that source.
1: My students give me that energy. I love that age group, you know, the preschoolers. मुझे इतने, मैं उनको देख के मेरा चेहरा खिल जाता है. सब थकान, सब टेंशन अगर कोई होती है, हर चीज दूर हो जाती है. उस वक्त आपको सिर्फ बच्चे दिखते हैं और उनसे जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं कर पा सकती हूँ. और किसी और चीज में मिल ही नहीं सकती है. When they come, they hug me, you know. ऐसा दूर दूर नहीं रखती हूँ मैं बच्चों को. आई यू नो दे कम दे हग मी, दे टेल मी मैम आई लव यू. चिल्ड्रन हु पास आउट लाइक यू नो हु ग्रेजुएट फ्रॉम माय क्लास एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास इन ग्रेड वन एंड ऑल, व्हेन दे कम मैम आई एम मिसिंग यू, आई सेड आई एम ऑलवेज हियर. सो लाइक यू नो जब उनको टाइम मिलता है बीच बीच में आकर के, मैम यू नो दे लाइक टू पीप इन माई क्लास, कैन वी कम एंड हग यू मैम आई लव यू. संडे सैटरडे या कोई छुट्टियां आती हैं, कोई कोई बच्चे आके मुझे बोलते मैम वी मिस्ड यू, मैम आई मिस्ड यू. ये मेरे लिए एक बहुत टॉनिक का काम करता है. और इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू नो इतने प्यारी एज होती है ये, इतनी अच्छी एज होती है बहुत. हाँ, सो दिस लॉट ऑफ मोटिवेशन एनर्जी. जैसे पेरेंट्स जब आके बोलते हैं कि नहीं मैम हमें घर में कुछ नहीं कराना पड़ता, वो उसको ऑलरेडी आता है. जब स्कूल से आता है हम पूछते हैं तो उसको आता है. लगता है कि हाँ यू रियली नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, और बच्चे के लिए और कितना हम और कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. तो ये जो प्योरिटी है ये आपको भी यंग रखती है, आपको भी हमेशा फूल की तरह खिले रहने की एक इंस्पिरेशन देती है, बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन आर अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स. तो मैम, कोई ऐसा इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा वाक्या किसी एक बच्चे के साथ, या कोई एक स्पेशल मोमेंट अगर अभी हमसे बात करते करते आपके जहन में आ रहा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल चाइल्ड था, या कोई एक मोमेंट जो आपके साथ रह गया जो आज भी आप सोचते हैं तो यू नो इट जस्ट आपको मूव कर देता है, अगर कुछ आप साझा करना चाहें.
1: हाँ, एक बच्चा था, मैंने अपनी कैथोलिक का ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी.
0: हाँ जी.
1: तो मैं उन दिनों क्लास नहीं थी, बट वहां पर एक अपने रूम में थी मैं. एंड उन्होंने मेरे सन से पूछा, डॉटर से पूछा कि व्हाई इज मैम नॉट कमिंग, व्हाई इज मैम, वेयर इज मैम. मैंने कहा मैम इज जस्ट, उनकी सर्जरी हुई है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है. वो बच्चा घर जाकर के उसने अपने मम्मी को बोला मेरी मैम का ऑपरेशन हुआ है, वो तो ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं. हाँ, उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा और नेक्स्ट डे वो पैसे उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि मैम ही कॉल्ड मी अप और बोला कि मेरे लिए ना फ्लावर्स लेके आना, मैम को फ्लावर्स देने हैं मुझे.
0: नेक्स्ट डे
1: वो अपना पिगी बैंक का जितना भी पैसा था वो ही ब्रॉट इट टू मी मैम.
0: इमेजिन.
1: तो वो चीजें मैं भूल ही नहीं सकती हूँ.
0: सच स्पेशल फीलिंग.
1: कितने
0: बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत. आगे चलते हैं. आप खुद एक एक्स एमजीडियन हैं, बहुत अच्छी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है मैम, तो आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग और टीचर्स का जो अंदर इफेक्ट होता है हमारे हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारी वैल्यू पे, हमारी फाउंडेशन पे, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? और इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं आज, कि स्कूलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे वो उस स्कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने बच्चों के लिए? अगर कुछ मैसेज आप बताना चाहें और अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें बीइंग एन एक्स एमजीडियन.
1: हर स्कूल में कोई ना कोई जरूर ऐसी टीचर्स होती हैं जो आप इंस्पायर करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि हम उनके जैसे बने. वो कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. एंड पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर टीचर उनके लिए कुछ बोल रही हैं, बच्चे को अगर कभी जरूरत होती है डांटने की भी, जब यू नो डिसिप्लिन जहां आता है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन एंड यू नो लव, दे शुड गो हैंड इन हैंड.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. खाली प्यार प्यार करने से बच्चा, आप अगर सोचें कि बहुत अच्छा एक ह्यूमन बींग आप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं.
0: बिल्कुल,
1: डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है. टाइम से आना, टाइम से पढ़ना, हर चीज का एक समय होना चाहिए. तो अगर पेरेंट कुछ टीचर कुछ बोल रही है तो उनको समझना चाहिए कि हाँ, जो ये बता रही है वो एक्सपीरियंस से बता रही है.
0: करेक्ट.
1: इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट ऑल द टीचर्स. आई मीन टीचर बता रही है उनको, आप घर में रह रहे हैं, आप इतना अच्छा शायद नहीं कर, क्योंकि उनका प्रोफेशन है. क्योंकि वो ज्यादा जानती हैं कि हाँ क्या चीज आपके बच्चे के लिए हित कर है, क्या चीज बेटर है आपके बच्चे के लिए.
0: राइट.
1: मतलब छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोलूं, बिना दरवाजा, कभी पेरेंट्स दिखते हैं दरवाजा बच्चे के लिए खोल देते हैं, नहीं, हम हिंडर कर रहे हैं उनका ग्रोथ.
0: करेक्ट.
1: बच्चे को अपने आप खोलना, हमें सिखाना चाहिए क्या करना चाहिए. और एक जो आजकल रोकते हैं पेरेंट्स के, नहीं नहीं धूप में मत खिलाइए बच्चों को. हम धूप से विटामिन डी मिलता है. जितने डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन डी की कमी है, धूप में बिठाओ, विटामिन डी कैप्सूल्स दो, तो इट इज बेटर कि बच्चा धूप में खेले. हम लोग सब खेले हैं, आप भी खेले हैं, हम भी खेले हैं.
0: करेक्ट.
1: धूप तो उतनी थी, गर्मी तो उतनी थी.
0: करेक्ट.
1: जब मई जून में हम लोग नानी के घर जाते थे, कहीं जाते हैं, तो क्या हम घर में बैठे रहते थे एसी में, कूलर्स में? नहीं,
0: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल.
1: जहाँ खेत खलियान थे, लोग खेत खलियानों में भी जाते थे, सब करते हैं. तो बच्चे को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमें बच्चों को वीक नहीं बनाना है.
0: यस,
1: ये हम पे ही डिपेंड करता है.
0: वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम, वेरी इम्पोर्टेंट.
1: तो बच्चे को बहुत इतना ज्यादा पैम्पर ना करा जाए कि बच्चा आगे जाके तकलीफ बच्चे को ही मिलेगी.
0: करेक्ट. आप थोड़ी उसके सर्कमस्टेंस में उसके साथ खड़े रहेंगे. जब वो एक्चुअल धूप में जाएगा तो उसको धूप सहनी पड़ेगी, जैसे हर इंसान को सहनी पड़ती है.
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल.
1: तो खाली धूप का मतलब कई चीजें होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो हमें तो स्ट्रांग बनाना है. पेरेंट्स को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, वीक नहीं बनाइए कि हाँ ये नहीं करना चाहिए. ये खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, उस वजह से करने दीजिए. कभी कोई चीज गिर जाती है, दूध फैल गया बच्चे से, डांटने की जगह उस वक्त हो गया, वो चीज हो गई.
0: करेक्ट.
1: है ना, उसको खराब वो मत करिए, उसके मेमोरीज में के लिए खराब उसको वो मत करिए. उसको ठीक है, हो गया, चलो हम मिलकर के उसको साफ कर देते हैं.
0: करेक्ट.
1: तो एक वो आएगा कि हाँ कोई चीज ऐसे हो गई हम उसको. और हर इंसान गलती करता है.
0: करेक्ट.
1: हम भी करते हैं एज टीचर्स, पेरेंट्स भी करते हैं. तो बच्चे को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि गलतियां होती हैं, बट दैट इज लाइफ, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स.
0: बिल्कुल.
1: पर वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए.
0: करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया कि दूध गिर गया कोई बात नहीं, बट अब उसे ये सिखाएं कि अब इसको साफ हम मिलके करें. और कैसे अगर फ्यूचर में भी आपसे गलतियां होती हैं, चाहे लाइफ में चाहे ये छोटी मोटी गलतियां, तो गलती हो गई, अब हो गई, और उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे वापस खड़ा कैसे हुआ जाए,
1: तो exactly.
0: वो सिखाना. और सिर्फ मॉली कॉडलिंग नहीं करना, जो आजकल बहुत ही अपेरेंट है, बहुत रैम्पेंट है पेरेंटिंग में. आई होप पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो इस बात की इम्पोर्टेंस समझें कि आपके चाइल्ड को रेजिलिएंट बनाने की कितनी जरूरत है, और ये कितना एक फाउंडेशनल एक यू नो एक शख्सियत है एक बच्चे की बिल्डिंग अप में, जो आपको इंस्टिल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, या तो टीचर कर सकती है या पेरेंट्स कर सकते हैं. नोबडी एल्स विल टीच यू दिस. तो बहुत जरूरी है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक्स हम आपसे कर रहे हैं और जान रहे हैं. आगे चलते हैं आपके अचीवमेंट्स की तरफ. आपने वुमन आचार्य अवार्ड और दुबई में बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आपको मिले हैं मैम. वो मोमेंट्स आपके लिए कैसे थे, इमोशनली किस तरह से उन्होंने आपको मूव किया, एंड हाउ प्राउड यू फील अबाउट दोज मोमेंट्स, बिकॉज इट्स श्योर हार्डवर्क जिसने आपको वहां पे पहुंचाया है. तो ये किस तरह से आपको ये अवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगते हैं, अचीवमेंट्स लगते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ?
1: बोथ
0: जी.
1: आपको बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को की वैल्यू समझ के कोई अगर आपके अप्रिशिएट करता है. आई थिंक दैट्स ह्यूमन नेचर, सबको अच्छा लगता है. बट आपके लिए और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक लगता है आपको कि ठीक है अब इससे भी ज्यादा अच्छा हमें करना है.
0: राइट
1: right. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये.
0: right.
1: और जब पेरेंट्स आपके भरोसे बच्चे टीचर को भरोसे जब बच्चा छोड़ते हैं, टीचर की पूरी ड्यूटी होती है कि हर चीज वो अपने ऊपर लेके पूरी उसी की टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का भविष्य को देखते हुए जो कर सकें. तो अवार्ड जब मिलता है तो रिकग्निशन है, ठीक है आपने किया, आपको मिला उसका रिवॉर्ड. पर सबसे जैसे मैंने पहले बताया, जब पेरेंट्स खुश होके जब बताते हैं अपने बच्चे के कि नहीं इट इज बिकॉज ऑफ यू, तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है. जब बच्चे आपको पहचान करके और वापस से आपको आके यू नो दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू यू नो कीप इन टच विथ यू बड़े होने के बाद में भी, दैट इज नो ये और बहुत बड़े रिवॉर्ड है.
0: राइट राइट राइट
1: प्राइसलेस सॉरी
0: प्राइसलेस ये
1: तो ये ज्यादा प्रेशियस है. बट यस जब आपका वर्क रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो यू फील वेरी नाइस.
0: राइट राइट वेरी अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम जी.
1: थैंक
0: यू. तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला रेजिलिएंट गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी. क्रांति.

0: मैम, आपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनका डिक्शन ठीक किया, तो अब आपके हिसाब से जब एक टीचर से सब्जेक्ट सिखाता है, विजिबली जब एक टीचर उस सब्जेक्ट के साथ साथ वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाता है, क्योंकि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, जिससे हम बहुत सारे एक्चुअल वैल्यूज लेसन वाइज सीखते थे और शायद कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अब्सॉर्ब होते थे। आज के जमाने में कितना डिफरेंस है उसमें कि जब टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट लर्निंग करता है, सब्जेक्ट डिलीवर करता है बच्चे को, बट साथ में वो जो वैल्यू सिस्टम है रीइन्फोर्स करना, उसका खुद पे यकीन डेवलप करना, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उन सब पे जब एक टीचर काम करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज कैटलाइज हो सकता है और कितना जरूरी है वो आज के जमाने में, जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे मॉरल साइंस एनी मोर, बट इट इज इम्पोर्टेंट नन द लेस आई थिंक। सो अगर आप इस पे
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारे व्यूज दें। जी
1: वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
0: जी
1: कॉन्फिडेंस आपको आगे लाइफ में बहुत वही हेल्प करेगा।
0: राइट
1: इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेजेस यहाँ पे फिर आकर के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी, जो जितना आपका कॉन्फिडेंस आपका इम्पोर्टेंट रहता है। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, तो टीचर शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स डेफिनेटली।
0: राइट राइट
1: हाँ जी, और ये वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, तो जब मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि टीचर को उसमें बुक से पढ़ाने की मॉरल साइंस की जरूरत नहीं है।
0: नहीं
1: रोज जो हम चीजें होती हैं उसी में अगर हम रोज बताएं, टीचर्स के पास में बच्चा कोई काम हो गया खत्म, कोई नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करने, तो अगर 5 मिनट भी होते हैं, 2 मिनट भी होते हैं, हम उस वक्त क्यों नहीं उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनसे इन बारों बातें में इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना हम जब उनको बोलते हैं कि हाँ कोई बच्चा सच बोल रहा है, बोले दैट इज वेरी गुड,
0: बिल्कुल
1: डजंट मैटर। जब ये लोग जब डिक्टेशन वगैरह दिया जाता है, कुछ काम दिया जाता है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि लाइक नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग, इट्स
0: करेक्ट
1: एब्सोल्युटली ओके,
0: करेक्ट
1: क्योंकि रॉन्ग होएगा तो हमें पता चलेगा कि ठीक है हमको ये नहीं आता है, हम उसको दोबारा लर्न करेंगे।
0: करेक्ट
1: पर चीटिंग, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो ये अगर हम यहीं से बिल्ड करेंगे कि नो चीटिंग इज रॉन्ग, है
0: राइट
1: ना, सच बोलना है, डजंट मैटर क्या होएगा, आपको गुस्सा करेगा कोई, कोई बात नहीं है, हम क्योंकि हमने गलती की है तो हमें थोड़ा गुस्सा भी बेयर करना पड़ सकता है कभी,
0: राइट
1: बस इसमें हमें हाँ, तो वो चीज उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होएगा तो आप लाइफ में सच भी बोलेंगे, राइट।
0: बिल्कुल
1: एंड हाँ, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है, बेझिझक अपनी बात कह सकें वो बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें।
1: पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें अपना
0: जी,
1: जी।
0: बहुत ही सुंदर मैम। अब मैं हमारे आखिरी सवाल और आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊंगी, जहां ऑलरेडी आपने बहुत सारी सीख हमारे लिसनर्स के साथ साझा की है, बहुत सारी बातें हमने ऐसी की हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का एक सार समझ आया है, एक तरीका समझ आया है, एक एक रास्ता आपने हमें दिखाया है। इसी के साथ अगर एंड में कोई प्रैक्टिकल मैसेज अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी नए पेरेंट्स हैं या नए टीचर्स हैं जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए
1: जी
0: अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो बच्चों को इमोशनली सिक्योर, कॉन्फिडेंट और काइंड चिल्ड्रन बना सकें, तो वो क्या
1: जी
0: होगा?
1: तो आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, टीचर्स को यही कहना चाहूंगी, स्पेशली पेरेंट्स को, अभी बच्चों को फोन और टीवी से दूर रखें,

0: थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, फोन अपनी जगह नहीं ले सकते, वो उनकी जगह, पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, ना ही एक्सपेंसिव टॉयज उनकी जगह ले सकते हैं। उनके साथ खेलिए, क्योंकि बचपन बार बार में नहीं आएगा। उनको कहानियां सुनाइए, स्टोरी बुक्स खरीद के दीजिए टॉयज खरीदने की जगह, टैबलेट्स खरीदने की। क्लास 2-3 में, मैम आई हैव गॉट अ टैबलेट, माय फादर्स गिव मी अ टैबलेट, नॉट रिक्वायर्ड। तो रॉन्ग थिंग्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो चला गया, इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक अगेन। प्यार की जगह प्यार दीजिए, बट एट द सेम टाइम लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इतना मत पैम्पर कीजिए, क्योंकि सही गलत सब चीज को हम सही माने।
1: बिल्कुल
0: एंड डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन, वेदर इट्स टीचर्स और पेरेंट्स, डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन और क्रिटिसाइज देम, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम।
1: राइट,
0: स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम।
1: राइट,
0: बिकॉज अगर हम बार बार में बच्चे को बोलेंगे ये बेवकूफ है या वॉट एवर, वो बच्चे के दिमाग में बैठा जाएगा, ये बोलते नहीं मैम ये सुनता ही नहीं है। तो वो नहीं सुनेगा। आप जब बार बार में उसको बोलेंगे ये सुनता ही नहीं है, ये बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये नमस्ते नहीं करता है, आप करेंगे, वो आपको देख करके जरूर फॉलो करेंगे, आपके बोलने से नहीं करेंगे, पर आपके जो आप जो करेंगे वो उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे वो।
1: Absolutely. बहुत कॉमनली मैं भी ये सुनती हूँ, ये सुनता ही नहीं है। तो हमेशा वंडर करती हूँ कि ये किस तरह की माँ है जो अपने बच्चे के सामने ये बोल रही कि मेरी सुनता नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं एज अ पेरेंट? तो बहुत दुख होता है
0: उनको। एक्चुअली जो मैं देख रही हूँ बहुत टाइम्स, बहुत समय से, तो ये देख रही हूँ कि मदर्स चाहती हैं कि नहीं फादर का डर होए। क्यों? जब आपके सामने बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप अपने लेवल पे बात करिए, है ना। फादर अपने लेवल पे बात करेंगे, टीचर अगर को कुछ कहना है तो नहीं मैं टीचर का डर बेटा आज मैं तुम्हारे टीचर को बोल दूंगी, मैं स्कूल में बोल दूंगी। क्यों?
1: बिल्कुल,
0: आपके सामने गलत कर रहा है, आप उसको चेक करिए, इट इज नॉट रॉन्ग, एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। जब बड़ा हो जाएगा, जब समझ आ जाएगी, बच्चा जानेगा कि हाँ मेरे मदर ने मुझे चेक किया, मैं गलत था, मदर ने मुझे थप्पड़ मारा।
1: करेक्ट,
0: बट इट ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप।
1: करेक्ट, वरना गलत बच्चा जी
0: गलत नहीं है। अगर कोई चीज के लिए हमें बहुत जोर से डांटना पड़े, बच्चा रोए, ठीक है, कोई बात नहीं है।
1: एब्सोल्युटली Absolutely. वो भी एक लर्निंग है, प्रोसेस है।
0: दैट इज ऑल्सो लर्निंग, बिल्कुल
1: राइट।
0: बट क्रिटिसाइज कभी भी ना करें बच्चे को, बच्चे के सामने तो कभी भी ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है टीचर और पेरेंट मिलकर के सुलझाएं, है ना। और बहुत जरूरी है कि टीचर से बराबर कॉन्टेक्ट रखें पेरेंट्स। ऐसे नहीं पेरेंट टीचर मीट में गए तो बस, वो नहीं। जब अगर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली जाएं पेरेंट टीचर से बात करें, टीचर को कोई प्रॉब्लम है टीचर पेरेंट से बात करें, बिकॉज दोनों का मकसद तो एक ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, टीचर भी चाहती है मेरा बच्चा, दोनों के लिए बच्चा तो उनका अपना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके लिए मेरा बच्चा है, टीचर के लिए भी मेरा बच्चा है। तो दोनों एक ही उस पर जब फोकस कर रहे हैं तो बच्चे को तो अच्छा होना ही है जब मिलकर के करेंगे।
1: बिल्कुल, और जब ये इतना क्लियर और यू नो स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा इंस्टेड ऑफ वन पीटीएम मीटिंग जैसे आपने बताया। जी
0: हाँ, तो कभी भी कोई दिक्कत होती है साथ बात करें, और जब तीनों मिलकर के करते हैं उस चीज को, बच्चा पेरेंट एंड द चाइल्ड टीचर एंड द पेरेंट, तो 100% द चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेल, द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स, गारंटीड मैं बोलती हूँ ये चीज।
1: राइट,
0: अगर तीनों मिलकर करेंगे हो ही नहीं सकता है कि बच्चा कमजोर हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक करी कमजोर रहेगी इफेक्ट बच्चे पे आएगा।
1: राइट राइट, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके बच्चों से मिल पाती, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन हाउ अमेजिंग किड्स यू मस्ट हैव रेज्ड मैम, सच अ ब्यूटिफुल थॉट प्रोसेस, इतना इवॉल्व, इतना विजनरी थॉट प्रोसेस है आपका। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सटीक और इतनी गहरी बातें साझा करने के लिए। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, एंड आई एको ऑल द थॉट्स। आई विश ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी और चला सकती मैं और थोड़ी और बातें कर सकती, बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट देन समय बलवान है और समय के साथ हमें हमारा शो अब वाइंड अप करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नमिता मैम, अगर आपके कोई एंडिंग थॉट्स हैं तो, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू टू हैव दिस विजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।
0: थैंक यू तनुषा जी, थैंक यू सब व्यूअर्स को, थैंक यू
1: जी,
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर, थैंक यू
1: जी जी। तो दोस्तों, नमिता जी से आज बात करके हमने ये एक्सपीरियंस किया कि रोशनी होती कैसी है। एक रोशनी जो दूसरों को इतना रास्ता दिखाए कि उनका रास्ता आसान हो जाए और जीवन बन जाए, जीवन बदल जाए। टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो जिंदगियां गढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर। मिलूंगी आपसे फिर से एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। लीजिए दोस्तों, सुनिए कहानी मृणालिनी साराभाई जी की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध डांसर हैं। बेटियों के लिए पिता इस संसार सागर में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। किसी भी दिशा में चली जाएं बेटियां, पिता को बार बार खोजती और निहारती रहती हैं कि न जाने कब पिता अपनी आंखों से कुछ बात बता दे, उनके मुखड़े पर कोई उम्मीद तैरने लगे। चुपचाप बहुत थोड़ा बोलेंगे पिता और बहुत कुछ मन में रख लेंगे। बेटियों के लिए न जाने क्या क्या अच्छा सोचते रहेंगे पिता, और बेटियां भी कोशिश में लगातार लगी रहेंगी कि पिता को पूरा जान पाएं। पिता अगर अपने कर्म में कोई मिसाल कायम करें तो बेटियां भी उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए पिता वही हैं जो अपनी बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें, और ऐसी बेटियां भी खुशनसीब होती हैं जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है। वो बेटी भी खुशनसीब थी। बैरिस्टर पिता सुब्बाराम स्वामीनाथन अपनी बेटी के अस्तित्व की धुरी थे। उनकी मुस्कुराहट, स्नेह से शराब और चमकती आंखें। पिता ने एक दिन गर्व से कहा कि ये बच्ची बड़ी होकर कुछ बनेगी, और ये बात बस गहरे असर कर गई। पिता किसी से डरते नहीं थे, बेटी पर भी असर पड़ा उसका। पिता कभी हिम्मत नहीं हारते थे तो बेटी ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिता ने बार बार कहा तो बेटी भी बार बार दोहराने लगी कि मुझे नर्तकी बनना है। जब दूसरे ज्यादातर बच्चे खिलौने और चॉकलेट के बारे में सोचते थे, तब वो नर्तकी बनने के बारे में सोचती थी। उसने सबको बता दिया, मैं नर्तकी बनूंगी, नृत्य ही मेरी सांस है, मेरा जुनून है। पिता तभी कुछ अनमने से लगते थे जब वो बेटी वाद्य यंत्र पियानो के अभ्यास से मुंह चुराती थी। बेटी को वो वाद्य यंत्र पसंद नहीं था। दरअसल वो ठहरी चंचल, किसी एक जगह पर स्थिर बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। उसे गति और गतिशीलता से प्रेम था। पिता के सानिध्य में बेटी साहसी और नवाचारी भी खूब हुई। एक बार मंच पर लकड़ी का घोड़ा दौड़ाना था, बेटी ने ऐसी तेजी से दौड़ाया कि घोड़ा ही टूट गया, लेकिन वो नहीं रुकी। जब घोड़ा टूटा तो दूसरे लोग ये मान रहे थे कि नाटिका बिगड़ गई, लेकिन उस बेटी ने नाटिका को रुकने नहीं दिया। सामान्य गति में नाटिका को आगे बढ़ाती ही गई, अपना किरदार ठीक से निभाया। पिता ने कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा पैदा कर दिया था कि वो बेटी जब पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड गई तो वहां भी विदेशी नृत्य सीखती रही। थोड़े से ही समय के लिए अमेरिका में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में भी वो पढ़ी, लेकिन दिल हिंदुस्तान ही खींचता रहा। बहुत मुश्किल था फैसला, सब अलग अलग तरह के नर्तक थे, सब अपनी अपनी कलाओं में माहिर। लेकिन शांति निकेतन में उस बेटी ने देखा कि कोई छात्र एक साथ कई तरह की कलाएं सीख सकता है, एक साथ अनेक प्रकार के नृत्य सीखना भी मुमकिन है। उस छात्रा की दृढ़ता देखकर प्रसन्न गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दिशा देने में चूक नहीं की। गुरुदेव ने भी इस एहसास को मजबूत किया कि मृणालिनी, तुम्हें नृत्य करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव ने उन्हें अपने नाटक चांडालिका में मुख्य भूमिका दी और उनसे अपने हिस्से की कोरियोग्राफी स्वयं करने को कहा। मृणालिनी ने पहली बार टैगोर के नृत्य नाटकों में भरतनाट्यम की शुरुआत की, जिससे उन्हें पहली बार बहुत सराहना मिली। वो सराहना से बहुत खुश हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को किसी ने नृत्य के संसार में पूरी तरह से आजाद कर दिया। वो अब जिधर चाहें उड़ सकती हैं। सीखने की तमन्ना इस तरह से मजबूत हुई कि किसी महान गुरु ने भरतनाट्यम सिखाया तो किसी ने कथकली में पारंगत कर दिया, तो किसी ने मोहिनी अट्टम में सिद्ध बना दिया उन्हें। गुरु उन्हें सिखाकर धन्य धन्य हो जाते थे। वो अगर 19 भी सीखती थीं, तो उसे 21 बनाकर पेश कर देती थीं। देश की आजादी के बाद साल 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में अपना नृत्य विद्यालय खोला। नृत्य ने ही उन्हें सब कुछ दिया। नृत्य ने ही जीवन साथी महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई तक पहुंचाया। वो मृणालिनी स्वामीनाथन से मृणालिनी साराभाई बन गई। विक्रम साराभाई जब आजाद भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रख रहे थे, तब मृणालिनी साराभाई भारतीय नृत्य और संस्कृति की नींव गढ़ रही थीं। नृत्य में उनकी सृजनशीलता और नवाचार को पूरी दुनिया ने पहचाना। दुनिया हर वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाती है, तब मृणालिनी साराभाई को जरूर याद किया जाता है। अपने पापा की इस बेहद कामयाब प्रिय परी को 97 साल लंबा जीवन मिला और अपने पिता को वो अक्सर याद करती थी। पिता ही मेरी पूरी जिंदगी थे।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ज्योतिष बोला, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? गीता बोली, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथों में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए, क्या क्या हो चुका है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

अहंकार और संस्कार में देखिए फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है।

कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति यह है कि जब थोड़ा सा भी कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। यह सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है दोस्तों। वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है। ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ, मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है, आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है। उस सांस की शक्ति को तुम अपने तुच्छ उपकरणों से मत मापो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। सबसे ऊपर तुम अपनी आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही अहंकार से अलग रखो, तब तुम्हारे पास आगे एक आग चलेगी और तूफान मददगार होगा और महानता के जिस ऊंचे से ऊंचे शिखर को जीता जाना चाहिए उस पर आपका झंडा फहराएगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना,

हजारों साल पहले से दुनिया में चारों तरफ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेयर करना, पूजा करना, इबादत करना प्रचलित है। सामूहिक जागरण होते हैं, पाठ होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कीर्तन चलते हैं और इन सब में लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और ज्यादातर एक ही स्वर में एक ही प्रार्थना, पाठ या प्रेयर को पढ़ा जाता है, गाया जाता है। इस तरह की सामूहिक व्यवस्था और तरीका कहां से आया? हर धर्म के ग्रंथ इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के नियम बताते हैं और उनमें भी इन सामूहिक प्रेयर्स को करने के लिए बताया गया है। अब ये ग्रंथ या तो परम महान शक्तियों से आए हैं या उनसे सीखकर परम गुरुओं ने यह व्यवस्था इन ग्रंथों में बताई है। पर सवाल यह है कि इस सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या है और क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा है जो इन परम गुरुओं ने समझा और हमें यह सामूहिक आयोजन करने का रास्ता दिखाया। क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि दुनिया के कोने कोने में बने स्कूलों में बच्चे अपनी शिक्षा शुरू करने से पहले सामूहिक तौर पर प्रेयर करते हैं? स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थनाओं का यह विचार कहां से आया, कौन लाया और क्यों? इन सवालों के आसान और साधारण से जवाब हो सकते हैं। सामूहिक प्रेयर से सद्भावना बढ़ती है, सामूहिक प्रेयर से मन एकाग्र होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का भाव खत्म होता है। और भी इस तरीके के जवाब हो सकते हैं। सामूहिक स्तर के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी यह प्रक्रिया की जाती है। जैसे कोई चुना हुआ मंत्र, प्रार्थना या शब्द को 108 बार या उससे ज्यादा बार जपना। इतने बार जपने के पीछे भला क्या उद्देश्य है? प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट एजर मिशेल ने पॉल टेंपल की सहयोग से 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेस की स्थापना की। यह इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला और शायद अकेला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में बना हुआ है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन, चेतना, अचेतना, विचारों की शक्ति, अध्यात्म, हेल्थ केयर के दूसरे तरीके, मृत्यु के बाद चेतना जैसे कई विषयों पर रिसर्च हो रही है। इनमें से एक रोमांचक रिसर्च विचारों के वजन के बारे में है। जी हां, विचारों का वजन। इंस्टीट्यूट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी एक विचार में कुछ वजन हो सकता है और कितना, क्योंकि यह बात तो साइंटिफिक तौर पर तय है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सभी कुछ। अगर एनर्जी का एक समूह एक आकार लेता है जैसे हमारा शरीर, और शरीर का कुछ वजन होता है, तो इस समूह की एक अकेली इकाई का भी कुछ वजन होगा। क्या उस एक इकाई का वजन नापा जा सकता है? कोशिशें जारी हैं। अब परिकल्पना यह है कि विचार भी एनर्जी है। अगर किसी एक विचार का वजन बढ़ाया जा सके तो शायद वह विचार आकार ले ले। तो किसी विचार का वजन कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह मिट्टी के एक एक कण को मिलाएं तो एक ईंट बन सकती है, उसी तरह अगर एक ही तरीके के विचार को इकट्ठा करें तो शायद उसका एक ऐसा वजन बने जो वह आकार ले ले। बात कुछ कुछ तो संभावित लगती है, क्योंकि मिट्टी के कणों को देखा जा सकता है और इकट्ठा करके उसका वजन बढ़ाया जा सकता है, पर विचार तो किसी ने देखे ही नहीं। पर ऐसा लगता है कि उस विचार में कुछ तो वजन होगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस एक विचार को करें तो शायद वह विचार कुछ वजन ले ले और आकार में आ जाए। बात समझने में थोड़ी कठिन है, पर यह बात हमारे पौराणिक ज्ञानियों, साधुओं और गुरुओं ने समझ ली थी। आधुनिक रिसर्च तो अब शुरू हुई है। विचारों के वजन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे गुरुओं ने सामूहिक चेतना के नियम बनाए। आराम से समझें, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर एक विचार को दोहराएं तो उस विचार का वजन बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही वो आकार लेने के नजदीक आएगा, यानी कि कैसे ना कैसे हमें प्रभावित करेगा। अब गौर कीजिए,
कि दुनिया के कोने कोने में होने वाली इस सामूहिक चेतना की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले विचार क्या हैं, जिनका वजन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, सबसे आसान विचार जो स्कूलों में प्रेयर्स में दोहराया जाता है, हमें शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, यह एक उदाहरण है। और भी प्रेयर्स हैं, पर उद्देश्य एक ही है, इस विचार का वजन बढ़ाकर मन के विश्वास को मजबूत करना। इसी तरह जब किसी मंत्र का 108 बार या और अधिक बार मनन किया जाता है, कोशिश उसके वजन को बढ़ाने की ही है, जिससे कि उस मंत्र का प्रभाव हम पर पड़े। अब यह सिद्धांत सिर्फ प्रेयर्स या मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी भी विषय के विचारों के बारे में हो सकती है। सामूहिक चेतना के कुछ विचार किसी व्यक्ति को राजा बना देते हैं और किसी को रंक, किसी योजना को सफल कर देते हैं और किसी को असफल, किसी देश को प्रसिद्ध कर देते हैं और किसी को नाकारा बना देते हैं। जब कोई एक परिवार या समूह एक तरह के विचार का मनन करता है, तो उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका प्रभाव उस परिवार पर या उस समूह पर दिखाई देता है। अब विचार यह करना है कि हम किस विचार के वजन को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हकदार है, अब अब खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

चन दाल चौकरी चांद चुराने आए, चमचा चलम चकोर चरैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा, टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टक्की जाए।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है, तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है। ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ गई दोस्त, बारिशें संग का मौसम है, बारिशें संग का मौसम है मेरे शहर में। तू ये शीशे का बदन लेके कहाँ से आ गई दोस्त, मैं उसे अहदे शिकन कैसे समझ लूं, मैं उसे अहदे शिकन कैसे समझ लूं जिसने आखिरी खत में ये लिखा था, फकत आपकी दोस्त। नमस्कार, आदाब। रात के इस फैलते जा रहे अंधेरे में, जब दुनिया धीरे धीरे सोने की तैयारी में है, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक, सिर्फ और सिर्फ 90.8 SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील पर। दोस्तों, घड़ी में अब 10:15 से कुछ एक मिनट ऊपर हो गया होगा। आप सबने डिनर तो कर ही लिया होगा अब तक, किचन भी समेट लिया होगा और बेड भी बना लिया होगा। तो क्या आपने कमरे की बत्ती को भी बंद कर दिया आपने? थोड़ी मध्यम कर दीजिए, आराम से तकिए पर सर रख कर लेट जाइए, या दो दो तकिए रख कर बेड के साथ टेक लगा कर औंधे लेटे और आधे बैठे जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि अब ये वक्त भाग दौड़ का नहीं बल्कि खुद को सुकून देने का है। दोस्तों, हर रोज़ तो कमोबेश इसी हाल में होते होंगे, पर आज मैंने भी आपको बता दिया कि मैं भी जानती हूँ थोड़ा बहुत आपको। आखिर आप सब मेरे दोस्त ही तो हैं। तो चलिए, आज की शाम आप सब दोस्तों के नाम मैं रोज़ ही आपके लिए चुन चुन कर गज़लें लाती हूँ और अपने ख्यालात आपसे शेयर भी करती हूँ। आज सोचा क्यों ना कुछ आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाए, लिहाजा ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम होने वाला है। कुछ चुनिंदा गज़ल जो कुछ दोस्तों ने फरमाइश की और मुझे मैसेज किया, और मैं उन चुनिंदा रूहानी गज़लों को आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की ये शाम, ये सुर और ये एहसास पूरी तरह आपकी पसंद के नाम, आपकी नज़र हैं। तो बस अपनी आँखें थोड़ी थोड़ी बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और खो जाइए हमारी इस पहली फरमाइश के सुरों में। सबसे पहला मैसेज व्हाट्सएप पर जो मुझे मिला वो है हमारी दोस्त कविता देशपांडे का। कविता देशपांडे जी बेंगलोर में रहती हैं। कविता लिखती हैं कि वो इस वक्त एक ऐसी गज़ल सुनना चाहेंगी जो उनके दिल को पूरी तरह सुकून से भर दे। माय डियर कविता, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत लाजवाब है, क्योंकि आज की शाम को और भी ज़्यादा नशीला और गहरा बनाने के लिए मैं जो नगमा लेकर आई हूँ उसके तो बोल ही शुरू होते हैं सुरमई शाम से। ये गज़ल हमारे महान संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत से सजी है। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाजों से महकती और हमारे खास गुलकार सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में फिल्म लेकिन से है। तो पेशे खिदमत है कविता देश पांडे की पसंद पर आप सभी सुनने वालों की नज़र ये रूहानी गज़ल। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तो यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए।

देते हैं। चांद भी अब तक निकल आया होगा, तो ऐसा नगमा महफिल में गूंजना चाहिए जो इस रात की खूबसूरती को जैसे मुकम्मल कर दे। तो दोस्तों, अरुणा महेश्वरी की पसंद पर अब गूंजने जा रही है गजल के बादशाह जगजीत सिंह जी की पुरसोज आवाज में एक बहुत ही रूहानी गजल, जिसे सुनकर दिल का हर कोना मचल उठता है। ये उनकी एल्बम मिराज से ली गई है। आपकी नजर अरुणा की पसंद जगजीत जी की आवाज में ये गजल। तुम्हारे ख्यालों की अंगड़ाइयों में, तुम्हारे ख्यालों की अंगड़ाइयों में मेरी याद के फूल महके तो होंगे, कभी अपनी आँखों के काजल से, कभी अपनी आँखों के काजल से तुमने मेरा नाम लिखकर मिटाया तो होगा, कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर, कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर तुम्हारे तसव्वुर में आया तो होगा, किसी से तो की होगी तुमने मोहब्बत, किसी को गले से लगाया तो होगा।

14वीं के चांद को देखने के बाद आप सब भी महफिल की रोमानियत में खो गए होंगे। हमारा अगला मैसेज है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त पूनम अरोड़ा का, जो गुड़गांव यानी गुरुग्राम में रहती हैं। वो मल्टी टैलेंटेड खातून हैं दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड हैं, योगा सिखाती हैं, क्रोशेट की निटिंग सिखाती हैं और बहुत बेहतरीन गाती भी हैं। उनकी खास पेशकश वाकई बहुत खास है। अब जबकि रात गहराती जा रही है तो किसी के इंतजार का दर्द और फिर उसके आ जाने की खुशी दोनों ही बहुत खूबसूरत एहसास हैं। इंतजार के बाद जो मिलने का सुकून है उसे लफ्जों में पिरोना किसी आम शायर के बस की बात नहीं। तो अंदलीब शादानी के ये खूबसूरत अल्फाज सुने हमारे जगजीत जी की रूहानी आवाज में, उन्हीं के संगीत में रचे बसे। पूनम अरोड़ा की खास पसंद पर शफक धनुक महताब घटाएं, शफक धनुक महताब घटाएं। जगजीत जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया इस गजल में इन इन इन लफ्जों का। शफक यानी किरणें, धनुक यानी रेनबो, महताब यानी चंद्रमा और घटाएं तो आपको मालूम ही है। तो वो कहते हैं शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है। सोचिए रुमानियत की इंतहा है। कहते हैं उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।

इंतज़ार और वसल के इस खूबसूरत एहसास के बाद चलिए रुख करते हैं हमारे अगले मैसेज की तरफ, जो इस खामोश सी रात को हमें यादों के एक बिल्कुल अलग और भावुक सफ़र पर ले जाएगा। दोस्तों, ये फरमाइश भेजी है हमारे दोस्त अरुण पंडित जी ने, जो कि उदयपुर में रहते हैं, और हमारी एसएन फैमिली के मेंबर हैं। हमारे अरुण जी की पसंद कोई महज गजल नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के दिल की धड़कन है जो अपनों से दूर कहीं परदेश में बैठा है। मशहूर शायर राही मासूम रजा साहब की लिखी इस गजल को जब जगजीत और चित्रा सिंह ने अपनी जादुई आवाज से सजाया, तो ये गजल हमेशा के लिए जैसे अमर हो गई हो। तभी तो परदेश के अकेलेपन और वतन वतन की याद को बयां करते हुए इस गजल का ये मिसरा सीधे कलेजे को चीर देता है। चांद बिना हर दिन यूं बीता, चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद? या फिर जिन आंखों में काजल बनकर तेरी काली रात, जिन आंखों में काजल बनकर तेरी काली रात, उन आंखों में आंसू का एक कतरा होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद।

वतन और उनकी यादों के उस हसीन सफ़र के बाद चलिए रुख करते हैं हमारे अगले मैसेज की तरफ, जो हमारी आज की इस महफिल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने जा रहा है। दोस्तों, ये दिलचस्प फरमाइश भेजी है मेरी बहुत ही करीबी दोस्त अंजना मलिक ने, जो दिल्ली में रहती हैं, और हमारी दोस्ती ख्याल के सिंगिंग प्रोग्राम से हुई, और फिर ऐसा लगा कि शायद हम दोनों का बरसों का याराना है। कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त नहीं है। ये बंधन कुछ अलग ही होते हैं दोस्तों, हमारी किस्मत में कब कोई कब कैसे आके जुड़ जाता है। अंजना उसका बेहतरीन उदाहरण है, और तो मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी। अंजना के मुताबिक गुलाम अली साहब की इस खूबसूरत गायकी के बिना कोई महफिल कैसे मुकम्मल हो सकती है। बहुत सुंदर अंजना, तुमने जो गज़ल चुनी है वो सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि गुजरे हुए हसीन लम्हों का आईना है। मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर साहब की लिखी हुई इस नायाब गज़ल को जब उस्ताद गुलाम अली ने अपनी मखमली और रूहानी आवाज़ से नवाजा तो वक्त जैसे थम सा गया। जब रात के सन्नाटे में पुरानी यादें अचानक दिल पर दस्तक देती हैं तो इस गजल का ये मिसरा रूह को छू जाता है। लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बांकपन याद आ गया। दोस्तों गौर फरमाएं, लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बांकपन याद आ गया। और फिर मिले वो अजनबी बनकर तो रिफत, मिले वो अजनबी बनकर तो रिफत, जमाने का चलन याद आ गया। बहारों को चमन याद आ गया, मुझे वो गुलबदन याद आ गया। दोस्तों आंखों को मूंदे रखिए और बह जाने दीजिए इन सुरों के समंदर में। अंजना की पसंद की गजल सुनिए, आपकी नजर।

बहारों को चमन याद आने के बाद चलिए अब पढ़ते हैं हमारे इनबॉक्स के अगले मैसेज की तरफ, जो इस महफिल को की क्लासिकी गायकी के शिखर तक ले जाने वाला है। गीता मणि आप सब जानते हैं बहुत बेहतरीन गायिका है, हमारी एसएन फैमिली की मेंबर हैं जो चेन्नई में रहती है। उन्होंने बहुत ही उम्दा फरमाइश भेजी है हमारी गीता मणि जी ने। वो कहती हैं कि रात के इस पहर की खामोशी में शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब की वो गज़ल सुनना चाहती हैं जो उन्हें बेहद अजीज है। गीता मणि जी, आपकी पसंद की जितनी तारीफ की जाए कम है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर साहब के लिखे हुए इन लाजवाब अल्फाजों को जब मेहदी हसन साहब ने अपनी मखमली आवाज में पिरोया तो ये गजल हमेशा के लिए एक तारीख बन गई, यानी इतिहास बन गई। जब महफिल में महबूब के सामने होने के बाद भी दूरियां महसूस होती हैं और जुबां साथ नहीं देती है तो इस गजल का ये मिसरा रूह को झकझोर देता है। तो हमारी दोस्त गीता मणि की पुरजोर फरमाइश पर पेश खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन साहब की ये पुरसोज गजल। फरमाते हैं, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। चश्म कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन फिर फरमाते हैं, चश्म कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

बात को सुलझाते सुलझाते दोस्तों वक्त आ पहुंचा है हमारी आखिरी फरमाइश के पूरे होने का। और भला इनबॉक्स में मैसेज किसका है? ये मेरी बहुत ही प्यारी बेहतरीन उषा नागराजन, जो कि एक बहुत बेहतरीन गायिका हैं। वो हैदराबाद में रहती हैं। अंजना की तरह वो भी हम ख्याल हैं। उसी जगह सिंगिंग प्रोग्राम में मैंने उन्हें सुना और उनकी आवाज़ मेरे दिल को छू गई। यहाँ SN रेडियोस पर भी उनके दो प्रोग्राम एयर हो चुके हैं। आज के कलाकार में वाहवाही बटोरने के बाद तमिल सॉन्ग्स के प्रोग्राम में भी वो अपनी धाक जमा चुकी हैं। तो आइए देखें उषा ने क्या मैसेज भेजा है। जी दोस्तों, जैसी उनकी शख्सियत बिल्कुल वैसी ही उनकी पसंद है। उषा ने फरमाइश की है, सब रूहानी और रुमानी गजलों के बाद इस तरह का कोई शाहकार होना चाहिए कि रूह भीग भीग जाए। और उन्होंने इसके लिए चुना है पद्म भूषण से सम्मानित बेगम परवीन सुल्ताना जी को। और जब बेगम परवीन सुल्ताना जी की शास्त्रीय और मखमली तान पर सदियों के सबसे महान शायर मिर्ज़ा गालिब के अल्फाज तैरते हैं तो संगीत खुद ब खुद सजदा करने लगता है। इस गज़ल में गालिब साहब का जो अंदाज है और जिस खूबसूरती से बेगम साहिबा ने उसको गाया है, बस वो सीधे रूह तक उतर जाता है। मिसरा मुलाजा फरमाए, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया, दिल कहाँ की गुम कीजे, हमने मुद्दाए पाया। तो मेरी बेहद अजीज दोस्त उषा नागराजन की फरमाइश पर आज की इस पूरी होती शाम अल्फाज से एहसास तक के इस सफ़र में मेरे साथ जाग रहे आप सभी प्यारे दोस्तों की नज़र पेशे खिदमत है मोहतरमा परवीन सुल्ताना की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब का ये कलाम। कहते हो ना देंगे हम, कहते हो ना देंगे हम, दिल लगर पड़ा पाया, दिल कहाँ की गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया।

वाह, क्या जादुई आवाज थी और क्या बेमिसाल अल्फाज थे। बेगम परवीन सुल्ताना जी की इस रूहानी तान के साथ अब हमारी इस खास महफिल के सुर मुकम्मल होते हैं। दोस्तों, आज का ये सफर वाकई बहुत कमाल का था। कविता देशपांडे जी से शुरू हुआ, अरुणा, पूनम, अरुण, अंजना, गीता मणि और उषा नागराजन, आप सबकी इन चुनिंदा गज़लों ने आज की रात को आम रातों से बिल्कुल जुदा और बेहद हसीन बना दिया। आप सभी का शुक्रिया जो अपने इनबॉक्स के ज़रिए आपने एहसासों को हमारे प्रोग्राम तक पहुंचाया। दोस्तों, आप भी अगर कोई अपनी फेवरेट गज़ल को सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर उनको शामिल करूंगी। लेकिन अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे आपसे विदा लेनी है। रात और गहरी हो चुकी है, आप तक किया सरकार के लेट भी सकते हैं और ख्वाबों की दुनिया में लैंड भी कर सकते हैं। जाने से पहले आज की रात की आखिरी बात आपके सिरहाने छोड़े जा रही हूं कि सो जाइए, अब की रात बहुत हो चुकी। सो जाइए अब की रात बहुत हो चुकी है, ख्वाबों के शहर में आपकी बात बहुत हो चुकी है। आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय अब आपसे इजाजत चाहती है। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। अपनों का ख्याल रखिए और खुद से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सशक्त बनाना है, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे नए बदलावों को जानना, समझना और उसमें परिवर्तन के साथ कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं और कैसे परिवर्तन के साथ कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं और कैसे हम आय वर्धक खेती कर सकते हैं आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानते हैं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। किसान साथियों, खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खी पालन को लेकर। किसान साथियों, हमारा जो किसान है, हम सभी फूल हमारी फसलों में फूल आते हैं और हम जानते हैं हमारे खेतों की मेड़ों पर और हमारे पेड़ों पर मधु काफी होता है। तो किसान साथियों, क्या हम मधुमक्खी पालन हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये हमारे लिए आय का स्रोत बन सकता है, क्या ये हमारी आय में वृद्धि कर सकता है, इन सब बातों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। कहां से हम और कैसे इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और कैसे एक किसान अब अगर कोई इसके इच्छुक हो तो वो कैसे इस मधुमक्खी पालन को कर सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: जी हाँ, मधुमक्खी पालन की बात करें तो आज के समय में कृषि संबंधी ये बहुत ही तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है। हमारे किसान इसे काफी लाभ भी ले रहे हैं और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम भी उठा रही है। आपको बता दें कि गांव में रहने वाले बेरोजगार और युवा इससे जुड़कर अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है और परंपरागत खेती में कैसे इससे लाभ हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने से पहले जरूरी ये भी है कि इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग जरूर लें और इससे संबंधित विशेष जो बिंदु हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से जान लिया जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरे मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह, आप परियोजना समन्वयक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में और इस परियोजना के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मधुमक्खी पालन से जुड़ी किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक निदेशक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय से हैं आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और हमारे साथ जगपाल सिंह फोगाट जी भी मौजूद हैं, जो कि जिला झज्जर से हैं, गांव मलिकपुर है इनका। ये एक प्रगतिशील मधुमक्खी पालक हैं। इन्होंने बहुत ही छोटी से शुरुआत की और आज बहुत आगे पहुंच गए हैं। इनसे भी इनके जर्नी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा की। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
6: मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा ही एक व्यवसाय है। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना काफी आसान है, क्योंकि पहले तो इसके करने का तौर तरीका आसान है और दूसरा ये भारी बोझ वाला काम नहीं है, यानी इसे महिलाएं भी काफी आसानी से कर सकती हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लें। मधुमक्खी पालन के लिए वही उपकरण लें जो भारतीय मानक संस्थान के मापदंडों के आधार पर बने हों। मधुमक्खी पालन करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अच्छी आमदनी। इसके अलावा फसलों में परागण के लिए भी मधुमक्खी पालन काफी फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस व्यवसाय के लिए चार तरह की मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियाँ ही ज्यादा शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं, इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा।

0: होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन ग्री के सबसे निचले हिस्से को तलपट कहते हैं। तलपट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन ग्री के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्षों में करती है। पोषण प्रबंधन की बात करें तो मधुमक्खियों का पोषण पराग और मरकंद होता है जो इन्हें फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छतों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। शहद लेने के लिए इन्हें तोड़ा नहीं जाता बल्कि एक ही छत्ता बार बार उपयोग में लाया जाता है जिससे मधुमक्खियों को बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती। ऐसे में आप मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऑर्गेनिक फार्म्स में मधुमक्खी पालन करके ऑर्गेनिक शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं जिसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है।
1: रिपोर्ट देखिए जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और साल भर कैसे वो हनी बी से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है इसे बनाए रख सकते हैं। इन तमाम बातों को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। बलराज जी, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा विषय ही यही है कि कैसे मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा हमारे जो किसान हैं या फिर मधुमक्खी पालक हैं वो अर्जित कर सकते हैं, क्या स्थिति अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन की और किस तरह से इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है?
2: बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मधुमक्खी पालकों के और कृषि के हित में पूछा है। तो मैं बताऊं, अगर आज वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग देश में जो दो पालतू प्रजातियां हैं एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका, वो पालतू रूप में अपनाई जा रही हैं और लगभग 32 से 35 लाख जो है बी बॉक्सेस पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालन के रूप में अपनाए जा रहे हैं और वर्तमान में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक देश में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और हमारे देश में शहद का उत्पादन अगर मैं 2000 के मुकाबले 2021 की बात करूं तो गत वर्ष हमारे देश में शहद का उत्पादन 2.25 लाख मेट्रिक टन हुआ है जो कि 2000 वर्ष में मात्र 10,000 मेट्रिक टन या उससे नीचे था। तो बहुत प्रगति हुई है और देश से लगभग 60% जो शहद है हमारा हनी है उसका एक्सपोर्ट भी हुआ है जिससे देश को एक बहुत अच्छी खासी जो है ना विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है लगभग 760 करोड़ रुपए से अधिक की। और वर्तमान में इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसमें काफी प्रगति हो रही है और इसका यही नहीं, अगर हमारा शहद का उत्पादन बढ़ रहा है या दूसरे उत्पाद जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट है उनकी हम बात कर रहे हैं लेकिन इसमें कृषि की उत्पादकता और कृषि की गुणवत्ता दोनों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे देश में मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कृषि के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और उसमें उसकी उपज, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता, यही नहीं सिर्फ धान्य फसलों या तिलहन फसलों में इसका योगदान, जो बागवानी फसलें हैं जैसे सेब की बात करें, अनार की बात करें, आप अमरूद की बात करें, आप लीची की बात करें या मसालों की बात करें जिसमें जीरा है, धनिया है, तो ये सब जो ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण के तौर पर ऐसे जो हमारे कीट है मधुमक्खी पालक जैसे कीट वो सक्षम परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और इसी के कारण आज हमारी उत्पादकता निरंतर जो है ना वो बढ़ने के उस पे है और भविष्य में भी अगर इसी प्रगति से हम आगे बढ़ते रहे तो मीठी क्रांति तो आएगी जिसकी आप बात कर रही हैं कि शहद का उत्पादन बढ़ेगा साथ साथ कृषि की जब उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता बढ़ेगी तो उससे भी किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ ये प्रगति जो है ना आगे और बढ़ेगी।
1: जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं उसे भी बेचकर हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो लाभ ले सकते हैं और साथ ही अगर किसान हैं आप तो आपको कृषि में भी इसके कई तरह के लाभ होते हैं जिसके बारे में अभी हमें बलराज जी ने बताया। आइए बात करते हैं डॉक्टर मनोज जी से। मनोज जी, जैसे कि हमने कहा कि ये एक मिशन है, अब क्योंकि देख लीजिए आप मिशन जब किसी चीज को कह देते हैं तो इससे समझ आता है कि हमारी सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है और इसे कितना रुझान इसको लेकर हम देख रहे हैं किसानों में या मधुमक्खी पालकों में, तो अभी हाल के दिनों में किस तरह के प्रयास या नए कदम इस दिशा में इस मिशन को लेकर उठाए गए?
3: भारत सरकार द्वारा

0: अभी मधुमक्खी पालन के ऊपर पिछले 3-4 साल से काफी इस पे जोर दिया गया है कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। तो इसके लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक नई स्कीम जिसको कि हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से जानते हैं वो लॉन्च की गई और उसको जो इम्प्लीमेंटेड कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन का जो उसका काम है वो नेशनल बी बोर्ड जो एक भारत सरकार की सोसाइटी है उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस जो नए मिशन का उद्देश्य है कि जो हमारी साइंटिफिक बी कीपिंग है इसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि शहद के उत्पादन के साथ साथ उसके साथ जो दूसरे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताए जैसे कि रॉयल जेली है, बी पोलन है और हमारे जो इससे दूसरे जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उनको किस प्रकार से उनको भी शहद के उत्पादन के साथ साथ उसमें वृद्धि की जाए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की और इस स्कीम के द्वारा हमने पिछले 3 साल में इसको किया लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से इस स्कीम में ज्यादा अभी वो नहीं हो पाया लेकिन जो भी इसमें प्रगति हुई है वो काफी प्रगतिशील जो किसान है हमारे उन्होंने इसका काफी लाभ उठाया।
1: जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक मिशन है और इससे बहुत तरह के फायदे भी हैं। देखिए जहां किसानों की आय में वृद्धि होती है वहीं जैसा कि बलराज जी ने बताया कि क्योंकि हम इसको विदेशों में भी बेच रहे हैं तो जो विदेशी मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है तो कई तरह के लाभ इसके हैं। और मैं बात करना चाहूंगी अब हमारे साथ जगपाल जी हैं जो कि एक प्रगतिशील किसान है, मधुमक्खी पालक है और आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 20-22 साल पहले सिर्फ 30 डब्बों से शुरुआत की थी और आज कहां पहुंचे हैं, किस तरह के बदलाव अपने जीवन में आप देख पा रहे हैं इसके बारे में समझते हैं। जगपाल जी सबसे पहले मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आपने शुरुआत की और मुझे तो ये भी पता चला कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद नौकरी करने का ना सोचकर क्योंकि आप शहर के पास ही हैं आपने मधुमक्खी पालन को अपनाया, कहां से इसकी प्रेरणा मिली थोड़ा उसके बारे में बताएं।
2: देखिए जी प्रेरणा तो पहले तो मन में ये था कि भाई पढ़ाई के बाद अपना खुद का व्यवसाय करना है, नौकरी की तरफ ना जाके। अमूमन हमारे देहात में ये क्या होता है कि भाई पढ़ लिख ले नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे फादर साहब की ये सोच थी भी नौकरी नहीं करनी अपना खुद का व्यवसाय करना है।
1: जी जी।
2: तो उस व्यवसाय की कड़ी में एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था तो उन्होंने उस समय मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर रखा था
1: जी।
2: तो मैंने उनका देखा भाई ये क्या है, बोला जी मधुमक्खी पालन का कार्य है। तो मैंने उनसे चर्चा की 1-2 घंटे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और समझ में आ गया उसी टाइम। तो उसी टाइम में मैंने मन बना लिया कि भाई मधुमक्खी पालन का कार्य ही शुरू करना है क्योंकि ये कार्य खुद को तो फायदा देता ही है
1: जी, जी।
2: और किसानों को भी पोलिनेशन से फायदा देता है। तो मुझे तो ये है कि भाई पैसा भी आएगा और पुण्य भी कमाएंगे तो इसलिए मैंने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया और जी 30 बॉक्स शुरू किया था। आज भगवान की दया से मौज है सब चीजों की, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत से और भी किसानों को जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं मैं
1: जी।
2: और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारा यूथ जो नौकरी के पीछे भाग रहा है वो अपना व्यवसाय करे, खेती से
1: स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने।
2: हाँ जी
1: जी जी,
2: आत्मनिर्भर बने और बहुत आसान सा व्यवसाय है जी।
1: अभी कितने डिब्बे हैं आपके पास, कितने बॉक्स हैं?
2: हाँ मेरे पास अब 500 के करीब बॉक्स है जी,
1: 30 से शुरू किया और 500 तक पहुंच गया।
2: और मैं बता दूं जी मैं बॉक्स से खादी को सप्लाई भी करता हूं, मेरे पास जब बॉक्स एक्सेस हो जाते हैं या और फार्मर से भी बॉक्स खादी में मैं देता हूं, खादी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी है, खादी से जुड़ा हुआ हूं मैं। तो इस फील्ड में काफी अच्छा काम चल रहा है जी और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट के बीच में हम हैं तो इनसे और सीखेंगे, कोई को नया और प्रोडक्ट जोड़ेंगे जैसे बी पोलन की डॉक्टर बलराज जी ने बताया तो हम भी ये शुरू करना चाहते हैं।
1: जी जी
2: तो
1: बिल्कुल। देखिए हमारा मकसद भी यही होता है और हमारा मंच भी इसीलिए कि ऐसे किसानों को मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में या इससे जुड़े हुए व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, दूसरे किसानों के लिए वो सीख भी बने और साथ ही हमारे मंच से कुछ नया सीख कर जाए, कुछ आगे बढ़ाएं। बलराज जी, जैसे कि अभी जगपाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर से की थी और आज यहां तक पहुंच गए हैं, तो जो हमारे अभी युवा किसान या फिर वो किसान या फिर वो युवा जो कि पढ़ाई करने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं या फिर उनके लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकता है, क्या इसे स्टार्टअप से भी जोड़ा जा रहा है?
3: बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजू जी, इसको स्टार्टअप के रूप में या एफपीओ बनाकर सरकार का उस पर भी जोर है। डॉक्टर मनोज इसकी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में भी, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी अब एफपीओ की बात हो रही है और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कई उसमें। तो जहां तक बात है मधुमक्खी पालन की, जो युवा है शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, निश्चित तौर पर चाहे उनके पास भूमि है या भूमिहीन है, यानी जरूरी नहीं है कि उनके पास लैंड है कि नहीं है, लैंडलेस है तो भी वो इस तरीके का धंधा शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम जो पश्चिम के देशों में जो विकसित देश है या खाड़ी क्षेत्र में जो स्थापित देश है, इसराइल, मोरक्को ऐसे देश या अमरीका जैसे देश, वहां पर मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है, सेवा के रूप में कि पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्थिति अब हमारे देश में भी विकसित होने की संभावना है कि हमारे युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खेती की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे परागण का बहुत महत्व है और उसमें ज्यादातर परागण के अंदर मधुमक्खियां योगदान देती हैं 70-75%, और जो स्व परागित फसलें उनमें भी एडेड पॉलिनेशन की सहायता की जरूरत पड़ती है, यहां तक कि जो पर परागित फसलें उनका तो गुजारा ही नहीं हो सकता, चाहे वो तेलन हो, चाहे वो फल के वृक्ष हो, चाहे वो मसाले हो, बीजीय मसाले हो, तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें तो आवश्यकता है ही। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत अवसर है, पॉलिनेशन सर्विसेज, साथ में शहद पैदा होगा और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है रॉयल जेली की बात अभी जगपाल जी कर रहे थे, डॉक्टर मनोज कर रहे थे, पोलन की बात है, वेनम की बात है, या जो हमारे जो है ना वैक्स की बात है, या जो दूसरे और बहुत सारे प्रोपोलिस वगैरह है उनका भी उत्पाद हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जगपाल जी से वो प्रेरणा ले सकते हैं कि 30 से उन्होंने शुरू किया तो पूरी, लेकिन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है कि जब तक आप हमारे युवा जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, जब ही वो आगे सफल होंगे और सरकार की योजनाओं का भी फायदा वो जब ही ले पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग से क्या होता है ना कि दक्षता आपकी बढ़ जाती है, आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अगर उसका प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो और दक्षता उधार दे पाते हैं आप, तो ये एक मकसद भी रहता है कि आप जो आपका इनपुट है या फिर जो आपकी ऊर्जा है, जो संसाधन है उसका वेस्टेज ना हो, उसकी बर्बादी ना हो। मनोज जी, जैसे कि अभी हमें बलराज जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे एक स्टार्टअप का रूप भी दिया जा रहा है, देखिए किसान जो है वो अब खेतों में तो काम करते हैं लेकिन अब वो नई दिशाएं भी तलाश रहा है, और ऐसे में जो युवा किसान है, जो पढ़े लिखे हमारे जो आपके जैसे पोस्ट ग्रेजुएट किसान है लेकिन वो गांव में रहना चाहते हैं, गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरह की संरचना है ये पूरी और कैसे स्टार्टअप से इसे जोड़ा जा रहा है, जैसे कि बलराज जी ने अभी बताया?
0: इसमें भारत सरकार की जो NBHM मिशन है
1: जी,
0: ये 500 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रकार की योजना बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे उसमें सुधार किया जाए, तो इसके लिए हमने इस जो योजना है इसको तीन भागों में इसको बांटा है, जिससे कि इसमें जो किसानों को और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं इनको सभी को लाभ इससे मिल सके। तो इसमें हमारे तीन जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें जैसे कि नंबर एक पर हमने मिनी मिशन वन रखा है।
1: मिनी मिशन वन ये क्या है?
0: मिनी मिशन वन के अंतर्गत हमने जो IBDC जिसको कि हम इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनको विकसित किया जाए। वहां पर जो हमारी योजनाएं हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसमें कि हम
4: किसान साथियों, अभी आपने मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने जाना कैसे ये हमारे लिए एक आय का बहुत ही अच्छा स्रोत बन सकता है, यह कैसे हम इसमें हमारी जो आय है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी और हम जानेंगे कैसे हम मधुमक्खी पालन और कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर ली जा सकती है और क्या अनुदान हमें मिल सकते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी मधुमक्खियां हैं जिनको जिनका पालन हम करके हम अधिक से अधिक शहद ले सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। किसान साथियों आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन में अलग अलग वनस्पति का शहद कैसे निकाला जाता है और उसमें कौन कौन सी वैरायटीज है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खी में अलग अलग वैरायटीज होती है और उनके क्या क्या लाभ भी हमें मिल सकते हैं आदि जानकारियों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं।
1: तो क्या ये संभव होता है?
3: बिल्कुल, पहले तो अंजू जी बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन के रूप में दो मुख्य प्रजातियां हम हिंदुस्तान में भारतवर्ष में इस्तेमाल करते हैं। एक तो है एपिस मेलिफेरिया जो इटालियन बी है और इसका ये खासियत है कि इसका पोलिनेशन एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है फॉरेजिंग के दौरान, खाना इकट्ठा करने के दौरान। और शहद का उत्पादन भी अगर अच्छा फसल चक्र है, जैसे अभी सरसों की फसल चल रही है और अच्छा फसल चक्र साल भर है, तो लगभग 30 से 40 किलो, कई बार 50 किलो तक पर बॉक्स जो है ना इससे शहद उत्पादन होता है और बहुत सक्षम परागण करता है। दूसरी जो मधुमक्खी है हमारी वो है एपिस सेराना इंडिका, इंडिजिनस जो है वो प्रजाति है। इसके द्वारा जो है लगभग 15 से 20 किलो शहद का उत्पादन होता है पर बॉक्स पर ईयर। और ये जो है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी खाना इकट्ठा करने के दौरान तय करती है फॉरेजिंग पीरियड के दौरान और बहुत सक्षम परागण करता है। तो उत्तर भारत के मैदानों में बड़े पैमाने पर जहां से जगपाल जी आए हैं या उत्तर प्रदेश की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बड़े पैमाने पर एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है मधुमक्खी पालन के रूप में। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें या पश्चिमी तटों की बात करें, तो एपिस सेराना इंडिका का इस्तेमाल मधुमक्खी पालन के रूप में होता है। और जो आप बात कर रहे हैं शहद की, तो हमारे देश में जो ज्यादा उत्पादन है शहद का, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर तिलन सरसों फसल का उत्पादन होता है, तो लगभग 60% या इससे ज्यादा उत्पादन शहद का वो सरसों की फसल से होता है, जिसके अंदर रेप सीड है, मस्टर्ड है, तोड़िया है, तारामीरा है, ये सब फसलें आती है। इनमें नेक्टर और पोलन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं ये दोनों जो पालतू रूप में अपनाई जाती हैं वो ज्यादा शहद का उत्पादन करती हैं। और जहां तक बात है कितने से शुरू करें, कब शुरू करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए एक तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण देश भर में हमारे 25 जो केंद्र हैं अखिल भारतीय परियोजना के जो मधुमक्खी पालन के ऊपर है जो अनुसंधान का कार्य करती है, तो वो समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो डॉक्टर मनोज शर्मा इस पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो है जो योजना है जो अभी बता रहे थे उसमें योजना मिनी विजन 1 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए इन्होंने सहायता की है। तो केवी के भी आजकल जो है ना प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, तो वो भी एक है। या दूसरे केवीआईसी के सेंटर्स हैं, नेफेड है, ये सब लोग मिलाकर के कुल मिलाकर
1: कई सारी एजेंसियां हैं जो इसे
3: जुड़ी हैं। और शुरुआत जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर उत्तर भारत की बात करें तो करनी चाहिए। और कम से कम 30-40 बॉक्सेस से कोई युवा अगर इसमें आगे आना चाहता है प्रशिक्षण लेके, तो शुरुआत करें जैसे जगपाल जी से ने की थी, और फिर आगे वो अपनी इच्छा के अनुसार जो स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ सकता है। और उसमें दोनों रूप में कि सिर्फ ये नहीं कि भाई शहद का उत्पादन या जो बाय प्रोडक्ट है उनका या एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है।
1: और पॉलिनेशन सर्विस के बारे में भी आपने बताया, तो
3: सर्विसेज के
1: मैं इसके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन जैसे कि अभी मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे जिज्ञासा है कि जगपाल जी जो अलग अलग तरह के शहद लेकर आए, ये थोड़ा हमें दिखाएं। और देखिए एक बहुत यहाँ पे देख रही हूँ गाढ़े रंग में है, थोड़ा हल्का है, और एक तो बिल्कुल घी जैसा शहद दिखाई
2: दे रहा है। ये घी जैसा ही दिखाते हैं। सबसे पहले ये मस्टर्ड का हानि है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है,
1: मतलब सरसों का।
2: हाँ। सबसे पहले ये मस्टर्ड का हानि है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है,
1: मतलब सरसों का।
2: हाँ। लेकिन एक मिथ की वजह से ये हानि हमारे देश में बहुत कम खाया जाता है। कि एक मिथ क्या है हमारे देश में कि जो जम गया वो नकली है, ये गलत है। हानी सभी जमते हैं, हानी का नेचर है जमना। जैसे मस्टर्ड का आप देख रहे घी की तरह लग रहे हैं, ये जल्दी जमता है, बाकी भी जमेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो अंजू जी इसमें हमने ये वैल्यू एडिशन किया है, वैसे मार्केट में आम आदमी जाता है तो दुकानदार से कहता है शहद दे दे, वो उठा के शहद दे देता है।
1: बिल्कुल। और देखिए हम मैं आपको बताऊं कि इतना जमा हुआ शहद मैंने भी नहीं देखा, और अगर मैं भी देखती तो मुझे लगता है कि शहद है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी कहा कि ये शायद जैसे घी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये शहद जो है ये सरसों का है,
2: सरसों का
1: ये जम जाएगा।

0: जाएगा और बहुत गुणकारी है। उसका एक मोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, ये हमारे देश में जितना होता है उसका 80% एक्सपोर्ट होता है और उन देशों का एक्सपोर्ट होता है जो फूड के मामले में हमसे ज्यादा अवेयर
1: है। एक दूसरा ये बहुत गाढ़ा सा है, ये मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे जामुन का रस हो।
0: नीम के फूलों का है जी।
1: अच्छा,
0: लोग समझते हैं कि भाई नीम इसमें ऊपर से मिलाया गया, नहीं। मधुमक्खियों को नीम के पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां रखते हैं उन पेटियों को और नीम के फूल से रस चूस के बनाती है, वो नीम का शहद है।
1: तो नीम में तो बहुत सारे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक भी
0: एंटीबायोटिक है,
1: तो ये सारी चीजें इस शहद में
0: बिल्कुल
1: भी
0: जी। आप खाओगे तो सारे उसके जो प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल है और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा।
1: और ये हल्के रंग में कौन सा है? ये बिल्कुल बहुत हल्के रंग में यहाँ पर
0: जी, ये मल्टी फ्लोरा है जी।
1: अच्छा, कई तरह की वनस्पति से?
0: कई तरह की वनस्पति से।
1: आमतौर पर हम यही वाला
0: आमतौर पर कस्टमर यही लेता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है
1: जी।
0: वो जाके ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूएशन करके सबको हमने अलग अलग से कलेक्ट किया है और अलग अलग से पैक करते हैं।
1: और ये थोड़ा सा लाल रंग में है, ललछर सा है, ये किस चीज का है?
0: ये अजवाइन का है जी।
1: अजवाइन?
0: हाँ,
1: अजवाइन का भी शायद होता है।
0: हाँ जी, अजवाइन की खेती होती है राजस्थान में बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
0: और वहाँ पे अपने हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बी कीपर है वो माइग्रेट करते हैं, तो हम भी माइग्रेट करके अपने बॉक्सेस को पूरे साल भर में 5-6 जगह ले जाते हैं।
1: मैं यहाँ पर बता दूं कि आमतौर पर जो उपभोक्ता है वो ये सोचते हैं कि अजवाइन का शहद यानी इसमें अजवाइन मिलाया हुआ है।
0: हाँ,
1: नीम का शहद मतलब इसमें नीम मिलाया हुआ, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये ऐसी जगहों पर बक्से रखे जाते हैं जहाँ पर नीम के ही पेड़ है या फिर अजवाइन की खेती है, तो जो नेक्टर होता है, जो रस जो मधुमक्खी चूसती है, वो उसी वनस्पति का चूसती है।
0: 80-90% उसी वनस्पति का रस चूस के वो बढ़ाते हैं। 10% तो हो सकता है अभी कोई और भी आ जाए, लेकिन 90% वो उसी
1: मतलब
0: चीज़
1: शुद्ध शहद है, इसमें किसी तरह की और चीज मिली
0: कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध शहद को हम घर पे भी जांच सकते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है भी कैसे जांचे। एक तो अंजू जी देखो, शुद्ध शहद को हम कांच के गिलास में पानी भर के ऊपर से डालेंगे तो उसका तार बनेगा, तार टूटेगा नहीं। और सेकंड क्या है, वो बॉटम में जाके और जम जाएगा, बैठ जाएगा। जब तक हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तब तक वो हिलेगा नहीं।
1: अच्छा, और है आपके पास, वो भी दिखा दीजिए।
0: ये हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ये भी बड़ा अच्छा इसका बायो प्रोडक्ट है।
1: बी पोलन क्या होता है
2: अंजू जी? पराग कण जिसको बोलते हैं, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये प्रोटीन रिच है। अगर कोई शाकाहारी है और ऐसे कोरोना काल में काफी
1: तो इसे भी खाया जाता है,
2: बिल्कुल इसको भी खाया जा सकता है। ये सिर्फ प्रोटीन है इसमें, और मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती हैं, तो इसको भी इकट्ठा करने का, एकत्र करने का एक तरीका होता है साइंटिफिक, कि हम जो ट्रैप लगाते हैं पोलन ट्रैप बक्सों के ऊपर, और जगपाल जी वही कर रहे हैं। इसकी मार्केट यूरोप के देशों में, अमरीका जैसे देशों में बहुत है।
1: नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन,
2: बिल्कुल नेचुरल सोर्स, और बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिसको आप वैसे खा सकते हो, दलिया में डाल सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, जब चाहे। बिल्कुल प्योर है ये, और मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया गया है। ये जैसे सरसों का है, सौंफ का हो सकता है, अजवाइन का हो सकता है, सोया का हो सकता है,
0: अलग अलग वनस्पति
2: किसी भी चीज का हो सकता है, वनस्पति का जैसे शहद है।
1: जी जी, और भी कुछ अभी आप बाकी है, कुछ एक और आप दिखाना चाह रहे थे शायद।
0: ये शीशम का है जी।
1: शीशम का भी होता है?
0: हाँ जी, शीशम का बहुत छोटा सा फूल होता है और केवल 15 दिन के लिए फूल खिलता है। लोग ये समझते हैं कि शीशम का फूल आता है, बिल्कुल छोटा सा व्हाइट फूल आता है, और ये शहद बड़ा गजब का है जी।
1: कैसे?
0: इम्यूनिटी बूस्टर है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप रेगुलर इसको खाओ। तो कोरोना काल में मैंने बहुत से लोगों को खिलाया है, उनके फीडबैक आया, रिजल्ट आया है कि इस शहद से हम बचे रहे
1: जी। शहद मतलब एक ही तरह से सारे शहद को देखते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप प्रोटीन रिच चाहते हैं तो प्रोटीन का भी प्रोडक्ट है, अगर आप जैसे नीम का शहद है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी शहद है, तो कई तरह की वैरायटी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। मनोज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?
3: सामान्य जो भी आदमी होता है वह पूछता है कि हमको शुद्ध शहद चाहिए
1: जी,
3: तो इसकी कोई साइंटिफिक, कोई इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये शुद्ध शहद ये है। इसके लिए भारत सरकार ने एक इस योजना के अंतर्गत, NBHM के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है कि हम टेस्टिंग, इसकी हनी की टेस्टिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए।
1: और ये भी मिनी मिशन के अंतर्गत,
3: ये मिनी मिशन के अंतर्गत है, ये जो हमारे तीनों मिनी मिशन के अंतर्गत, जो ये मिनी मिशन सेकंड और फर्स्ट में ये कवर होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो किया है कि पूरे जो देश को 5 रीजनल सेंटर्स में इसको बांटा है, कि उसमें हम 5 बड़ी लैब जिसमें कि सभी प्रकार के टेस्ट, NMR टेस्ट या दूसरे प्रकार के जो भी हनी से रिलेटेड टेस्ट हैं, उनको आसानी से कराई जा सके।

0: महसूस की जाए तो इसकी मांग भी जहां तक मेरी जानकारी है काफी समय से उठ रही थी। आपने खुद बताया कि विदेशों में टेस्टिंग होती थी और कई बार उनके मानकों के आधार पर खरा नहीं उतरता था माल, तो काफी नुकसान भी रहता था। ये टेस्टिंग किस किस चीज की जाती है, मतलब इसके मानक क्या है, आप बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा। देखिये अंजू जी, क्या है, जो एडल्ट्रेशन होता है दो तरीके से होता है। एक तो माल्या गन्ने की चीनी का एडल्ट्रेशन है, उसकी मिलावट की गई है, तो उसको हम C4 की श्रेणी में लाते हैं। अगर गन्ने की चीनी और अंतरराष्ट्रीय जो मापदंड है उनके अनुसार अगर किसी शहद में 5% से ज्यादा सुक्रोज है या चीनी है तो वो मिलावट की श्रेणी में आता है। और एक जो दूसरी बात है मॉइस्चर, नमी की मात्रा, नमी की मात्रा अगर 18% से ज्यादा है तो वो जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है, उसमें 18% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। और जहां तक बात है C4, जो गन्ना है C4 की श्रेणी में आता है, तो C4 की टेस्टिंग तो हम कर पाते थे हिंदुस्तान में, पता लगा लेते भाई इसमें चीनी का मिलावट की गई है। जैसा जगपाल जी ने बताया, आप पारदर्शी ग्लास में एक बूंद शहद डालेंगे तो तली में बैठ जाएगा, जाकर तार सा बनेगा, उसका मिलेगा नहीं जब तक आप चम्मच से नहीं मिलाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर C3 हमारा जैसे राइस सीरम, इसकी अगर मिलावट की गई है तो राइस सिरप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है मिलावट के रूप में, उसकी जांच हम नहीं कर पाते थे हिंदुस्तान में, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जर्मनी से NMR या दूसरे जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, उनके लिए जो लैब स्थापित किए हैं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो इस योजना के तहत, मिशन के तहत किया गया है, NDDB आनंद के अंदर, दूसरा PBTI चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छी लैब बनी है, और ये दोनों, और तीसरी अभी IHR बेंगलोर में लैब स्थापित हुई, IRI में भी, पूसा में भी लैब स्थापित की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इसको पता लगाना कि राइस सिरप का और C3 प्लांट्स की जो एक्सट्रैक्ट है उनका इस्तेमाल करके शहद में मिलावट की गई है, वो एक मुश्किल कार्य था
0: जी, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए ये लैब स्थापित की जा रही है और सारे स्टैंडर्ड तैयार की जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 25 केंद्र हैं, हम इन दोनों लैब को जो वर्तमान में इस क्षेत्र में काम कर रही है, आनंद और चंडीगढ़ वाली, मोहाली वाली, इनको हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल मंगा के शहद के अलग अलग, उससे अलग अलग,
0: यानी बलराज जी कुल मिला के बात यह है कि इससे हम और बेहतर जो गुणवत्ता युक्त जो प्रोडक्ट है वो बाजार में उपलब्ध करा सके, उपभोक्ता जो है उसके मन में भी इससे ज्यादा विश्वास भी पैदा होगा। देखिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहद को लेकर कुछ कुछ वीडियो भी वायरल होते रहते हैं कि ये नकली है, ये असली है, तो जब पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी तो वो तमाम जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी।
2: इसके साथ साथ मैडम, इसमें ये तो बड़ी लैब है, इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश में एक जो लैब्स का एक जाल बिछाया जाए
0: जी,
2: उसमें हमने अपने 3 साल का जो हमारा टारगेट है वो 100 लैब्स का है।
0: अच्छा,
2: इनको मिनी टेस्टिंग लैब बोलते हैं, इसमें बड़े टेस्ट ना होंगे, जितने नॉर्मल टेस्ट हनी से रिलेटेड हैं इनको कवर किया गया है, और अब तक लगभग 16 लैब हम स्थापित भी कर चुके हैं
0: जी।
2: और पूरे देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सभी में ये लैबों का जाल बिछाया जा रहा है।
0: टेस्टिंग पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। बलराज जी, एक और बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है और उसमें बेचारे जो किसान है या मधुमक्खी पालक है उसका कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन तभी उसका माल रिजेक्ट हो जाता है। स्टोरेज, किस तरह के बर्तनों में इसकी स्टोरेज की जाए ताकि गुणवत्ता बनी रहे, और जो कई बार मिलावट जो नहीं भी करता है और लेकिन वो टेस्टिंग में उसका शहद फेल हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: देखिए इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज ने बताया, जो योजनाएं दी जा रही हैं, तो किस प्रकार के बर्तन उसमें होने चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या ग्लास के कंटेनर्स भी हो सकते हैं, तो उनमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहां तक कि जैसा आपने कहा कि किसान अपने स्तर पर, मधुमक्खी पालक कई बार, अब जगपाल जी तो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी यूनिट लगाई होगी निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग की, प्रसंस्करण की, लेकिन आम किसान नहीं कर पाता, तो ऐसे में अब इनकी योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार की है, जैसे KVIC ने अभी एक मोबाइल जो प्रोसेसिंग वो वैन स्थापित की है पिछले महीने, जो 300 किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है एक दिन में, और उसमें एक मिनी टेस्टिंग लैब भी है जो चलते हुए कहीं भी मान लिया बी कीपर है वहां चली जाएगी, वहां प्रोसेसिंग कर देगी। इस तरीके से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती माइग्रेशन में, जब मान लिया सर्दी की फसलें खत्म हुई तो इनको दूर पर लेके जाना है, तो एक ऐसी मोबाइल वैन 50 बक्सों के लिए भी KVIC ने तैयार की है। तो जो आपकी योजना है केंद्र सरकार की, डॉक्टर मनोज जैसा बता रहे, उनके अंतर्गत इन सारी चीजों पे जोर दिया जा रहा है कि नॉट ओनली कि सिर्फ हम उसकी टेस्टिंग के ऊपर, मिनी टेस्टिंग लैब पर बहुत अच्छा जोर दिया जा रहा है, अब भाई स्थानीय स्तर पे कैसे उसकी शुद्धता को जांचा जा सके, और कैसे उनको आप किन किस तरीके के हमारे मोबाइल जो है ना वो होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन होने चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और किस तरीके के कंटेनर होने चाहिए, और दूसरे इक्विपमेंट है, अब उनकी भी चर्चा, उन पर भी इजाद हो रहा है, अब भाई जो है ना पोलन ट्रैप कैसे कैसा होता है और

0: को कैसे लगाया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, और यहाँ तक कि अनुसंधान के जरिए, क्योंकि हमारा काम है विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना, कैसे पोलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएं, सेब के ऑर्चार्ड हैं वहां पिछले साल का जो पोलन इकट्ठा किया है, वहां पोलिनाइजर की कमी है, अब पोलिनेटर तो है मधुमक्खी, पोलिनाइजर की कमी है, तो पिछले साल के पोलन्स को हम पोलन डिस्पेंसर्स के थ्रू या जेनेटिक स्टॉक भी अच्छा जो उसके पोलन को प्रीफर करता है एप्पल के को या दूसरे लीची के को, तो इस तरीके के अनुसंधान के जरिए बहुत अच्छा कार्य जो है प्रगति पर है और निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ावा मिलेगा और ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो मधुमक्खी पालन में काफी इजाफा होगा और इनको मधुमक्खी पालकों को भी कृषि को भी लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी बातें बताई बलराज जी ने और माइग्रेशन के बारे में बताया कि जो मधुमक्खी पालक सोलली मतलब जो सिर्फ मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, कृषि का कार्य उनका नहीं है, कई बार उनके सामने चुनौती ये आती है कि चलिए एक सीजन में तो आपने जिस क्षेत्र में है वहां पर आपने डब्बे रखे। माइग्रेशन में पहले जब मैंने एक बार प्रोग्राम किया था तो एक किसान ने समस्या बताई कि दूसरे स्टेट में जाना, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर वहां पर ऐसी जगह ढूंढना, ये एक प्रैक्टिकली समस्या आती है, तो क्या इसमें भी कुछ सुगमता हुई है?
2: आपने कृषि मंत्रालय ने पीछे एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई जो भी किसी भी स्टेट में सरकारी लैंड जैसे रोड के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे किसी बीकीपर ने अगर अपनी मधुमक्खियां रख दी तो वहां से उनको उठवाया नहीं जाएगा जब तक कोई बड़ी समस्या या लोगों को ना हो। पहले ये था कि जहां भी हम रखते थे तो उस डिपार्टमेंट के लोग आके कहते थे उठाओ उठाओ, तो ये डिपार्टमेंट की मंत्रालय की पहल से बहुत हद तक लोगों को सुविधा हुई है, न तो पहले रखने में ही बड़ी समस्या होती थी। कुछ मीडिया के माध्यम से, आप जैसे उनके माध्यम से लोग अवेयर भी हुए ना, हमने जब स्टार्ट किया तो लोग जेड़ी लेके आ जाते थे, पूरे रख दी सारे तेल न तो ये चूस जाएंगी ऐसे बोलते थे, लेकिन आज लोग बुला के रखवाते हैं, मेरे को फोन आते हैं कि भाई मेरा इस चीज का बाग है या भाई मस्टर्ड के लिए आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों का नजरिया भी बदले है इसके प्रति, भाई ये हमारे फायदे के जीव है, नुकसान के नहीं है।
1: जी बिल्कुल, हमारे जिसे हम कहते हैं दोस्त,
2: हाँ जी दोस्त,
1: हमारे दोस्त है कृषि,
2: मित्र कीट है हमारे।
0: और मैं अंजू जी बताना चाहूंगा, जब ये लोग जगपाल जी जैसे जो मधुमक्खी पालक है प्रगतिशील, जब वो अपने बक्सों को सरसों की फसल के बाद पहले यूकेलिप्टस में लेके जाते हैं, फिर वो जो है ना कहीं एप्पल ऑर्चार्ड में लेके जाते हैं, तो आज से 15-20 साल पहले जो सेब के बगीचे वाले जो ऑनर होते थे वो कोई पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज वो 800 से 1000 रुपया प्रति बक्सा एक महीना वहां रखने का,
1: क्योंकि उनको पता लग गया
0: इसका क्या फायदा है, इसकी उपज बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, साइज सेब सब उससे इम्प्रूवमेंट होता है, तो काफी प्रगति है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माइग्रेशन करते हैं तो केंद्र सरकार का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का तो कोई रोक टोक नहीं है।
1: मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
3: हाँ मैडम, इसमें जो मुख्य जो माइग्रेशन का सवाल उठा है, इसमें भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें भी हमने हाल में ही एक मधु क्रांति पोर्टल ऑनलाइन हमने लॉन्च किया है,
1: मधु क्रांति पोर्टल।
3: अच्छा, तो इसमें ऑनलाइन जो भी हमारे बीकीपर्स हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और उसमें जो बी कीपर्स हैं हमारे उनके कॉलोनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको कोई भी बी कीपर्स कहीं भी किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अगर वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसको सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे जो मंत्रालय की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी भी राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको चिट्ठी लिखी जाती है कि भाई हमारे जो बी कीपर्स हैं ये आपके स्टेट में जो माइग्रेशन करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए, तो इसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
1: यानी जो पहले जो समस्याएं थी उनमें संशोधन किया गया है, उनमें सुधार किया गया है ताकि और बेहतर तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके।
4: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि कैसे पहले जब शुरुआत की गई थी मधुमक्खी पालन की तो लोग कैसे उन्हें अपनी मधुमक्खियों को हटवाने के लिए बोलते थे, लेकिन अभी जो अवेयरनेस के माध्यम से अभी लोग जागरूक हो चुके हैं और कैसे अभी न केवल वो उनके खेत पे खुद बुलाते हैं वरन वहाँ पर पैसे भी देते हैं, इससे जो फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है और फसलों की पैदावार में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी हमको यहाँ पर मिली है। तो किसान साथियों, आप भी जो भी इस कार्य के इच्छुक हैं, आप भी अपना अपने विचारों को केवीकी के माध्यम से और केवीकी में पहुंचा सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं और अनुदान के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं मधुमक्खी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी तक हमने बात की जो पालतू प्रजातियां हैं दो हमारी एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, जिनसे हम बक्सों में रखते हैं, शहद उत्पादन करते हैं या परागण की सेवाएं भी देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अंजू जी दो महत्वपूर्ण प्रजातियां और हैं एपिस फ्लोरिया

0: जिसको हम लिटिल बी बोलते हैं, और ये प्रजाति अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। देखिए कहां मेलिफेरा 2 से 2.5 किलोमीटर तक जाती है, एपिस डोरसाटा 4 से 5 किलोमीटर तक फॉरेजिंग रेंज है, अपनी दूरी तय करती है खाना इकट्ठा करने में, बहुत सक्षम परागण करता है, विषम परिस्थितियों में काम करती है। तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या बुंदेलखंड का क्षेत्र ऐसे शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है, ऐसे में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो इन्हीं 2 परागणकर्ताओं के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी जनसंख्या कम होती, पालतू की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनकी जनसंख्या कम होती है तो निश्चित रूप से कृषि का हमारा एक चुनौती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि जैसे जहां पेड़ है बड़े बरगद के, उन पर डोरसाटा का कहीं छत्ता लगा है तो उसके नीचे धुआं कर दिया या उसके नीचे डीजे बजा दिया ब्याह शादियों में, वो ना करें, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर या पानी की टंकियों के ऊपर वो अपना छत्ता बनाती है। एक फ्लोरिया जो है वो झाड़ी में, बोगनविलिया में, घास में छत्ता बनाती है और ये भी करीब 700 से 800 मीटर की दूरी तय करती है, सक्षम परागण करता है। तो इनकी जनसंख्या भी हमें कम नहीं होने देनी है, तो हैबिटेट लॉस नहीं होने देना है ये बात। और जहां तक बात है भाई इन दोनों की जनसंख्या, हम समय समय पर इनके लिए क्या करें क्या ना करें, जैसे धुआं ना करें, सामूहिक आवाज ना निकालें, भड़कीले कपड़े ना पहने, खास करके गर्मी के महीने, सर्दी में तो काम चलता, खाने की कमी नहीं, पानी के स्रोत भी है, लेकिन गर्मी अप्रैल मई जून जुलाई में जब ये दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में सावधानी रखने की जरूरत है। और इनका जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पालतू के साथ साथ अगर जंगली प्रजाति से आपने डोरसाटा का छत्ता से शहद लेना है उसकी भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम बताएंगे से प्राप्त कर सकते, उसको जलाना नहीं है, तो बी हंटिंग पे काम नहीं करना है और उनको जलाना नहीं है, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो हमारी जैव संपदा है उसका एक पार्ट है।
1: जैव संपदा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जैसे कि आपने बताया कि बी हंटिंग नहीं, बी कीपिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य आप शुरू करने की सोचते हैं तो उसमें पूंजी तो लगती ही है, तो ऐसे में हमारे छोटे किसान, बहुत जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है या फिर बेरोजगार युवा, उन्हें किस तरह से उनके हैंड होल्डिंग की जाएगी या फिर कैसे उन्हें सहारा दिया जाएगा, किस तरीके से आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई जाएगी बी कीपिंग के लिए?
2: इसमें मैडम जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम जो हमारी स्कीम में असिस्टेंस सपोर्ट है वो जो सामान्य राज्य हैं उनमें 50% तक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 90% तक, और जो हमारे आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ हैं, कोऑपरेटिव हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हम 75% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका जो प्रोजेक्ट है या उनकी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसको वो अपने जिले में, जो जिले के माध्यम से वो राज्य सरकार में सम्मिलित करेंगे और राज्य सरकार उनको फॉरवर्ड करके वो केंद्र सरकार में भेजती है, तो उसके अंतर्गत हम अनुदान देते हैं। तो इसके लिए जो जिस भी कंपोनेंट पर अनुदान है, हमारी वेबसाइट है नेशनल बी बोर्ड की, उस पर पूरा विस्तार से दिया गया है कि किस कंपोनेंट में कितना सब्सिडी मिलती है।
1: बिल्कुल, नेशनल बी बोर्ड की एक वेबसाइट भी है जो कि तमाम जानकारियां जहां पर उपलब्ध है आप जा सकते हैं। और आजकल तो हमारे किसान बहुत स्मार्ट हैं, ज्यादातर किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी करें।
2: एक में और एक छोटा इसमें वो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस मिशन के अंतर्गत किया गया है कि पूरे देश को जो 100 FPO यानी कि क्लस्टर, उसमें जो महत्वपूर्ण जहां पर शहद का उत्पादन होता है उसको वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम में। और जो 3 एजेंसी हमारी हैं जैसे कि नेफेड और NDDB और एक ट्राइफेड, इनके माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
1: जी।
2: और जब ये एफपीओ पूरे बन जाएंगे तो उसके निर्माण के बाद वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से किया जाएगा, तो जो लोकल स्तर पर इन 100 जिलों के किसान या मधुमक्खी पालक हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है
1: जी।
2: तो एक बहुत
3: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि हम लगातार मधुमक्खी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी है। अधिकतर अपने गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा मधुमक्खी का छत्ता आ जाता है तो उसको धुआं करके या शोर शराबा करके वहाँ से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसे हमें बचा कर रखनी चाहिए। और जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा, हमें बी हंटिंग नहीं करनी है, बी कीपिंग करना है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा बिल 90.8 FM के साथ।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, झाबवा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह आपको आपके खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को आप हम तक पहुँचा सके और हम एक्सपर्ट के माध्यम से आप तक उसकी उसका परामर्श दे सकें और आपके खेतों में नई से नई तकनीकी खेती को हम कैसे कर सकते हैं आदि जानकारियों को आप तक पहुंचा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्यावरण है, दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, तो इस बदलाव को देखते हुए हमें हमारी कृषि पर भी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा किसान भाई जानता है हमारी जो कृषि है वो पूर्णतः हमारे पर्यावरण पर निर्भर है। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारी खेती, हमारा जल, हमारी वायु आदि के ऊपर, हमारी फसलों पर इन्हीं सभी का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पहले का किसान था वो प्राकृतिक खेती करता था और वह सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती करता था, परंतु हमारे आज के किसान जो हैं वो व्यावसायिक खेती करते हैं और व्यावसायिक खेती में अधिक से अधिक उपज लेने के उद्देश्य से हम काफ़ी रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे वातावरण में, हमारी मृदा के लिए और हमारे जल स्रोतों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। साथ ही किसान साथियों, अगर हम देखें तो आज हमारी जो फसलें हैं उनमें काफ़ी रासायनिक की मात्रा मिलती है, जो कि हमारे मानव जाति के लिए, सबके लिए एक हानिकारक साबित हो रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती है, इसके माध्यम से भी बहुत ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बहुत ही अच्छी कृषि की जा सकती है। तो किसान साथियों, अगर हम अपना रुख पुनः प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी उपज उतनी ही मिलेगी और उससे ज़्यादा मिलेगी, और हमारी जो उपज है उसमें हमें एक नवीनता देखने को मिलेगी, जो हमें भरण पोषण है हमें पूर्णतः मिलेगा। साथ ही हमें जो हमारा वातावरण से मिला हुआ प्राकृतिक और प्योर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, यहाँ पर ज़रूरी है हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से अधिक उपज ले सकते हैं और हम परिवार का भरण पोषण के साथ ही साथ हम व्यावसायिक कृषि भी कर सकते हैं, तो जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो ટાંટિયા ભીલ નો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
7: कार्यक्रम में खास तौर से हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की। किस तरीके से हमने जाना, कोरोना कालखंड की अगर बात की जाए, हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ा, यानी फिर से जो चीजें हम करते थे पहले, और खासतौर से जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जो पुरानी पद्धतियां थी उस पर आने की आवश्यकता है। और उसी के लिए हम मान सकते हैं जो प्राकृतिक खेती है उसको लगातार सरकार अपने स्तर पर बढ़ावा दे रही है, और न जाने कितने ही किसान हैं जो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती जो है वो कर पाए, और इसके साथ साथ जो हमारी कृषि क्षेत्र है, जो खेती है, उसको रसायन मुक्त भी कर सकें। एक मुहिम है किसान की जो लगातार वो चला रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन कैसे जो प्राकृतिक खेती है और अधिक मुनाफा दे सकेगी, इस पर आज हम कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे।
8: न सिर्फ फसलों में जहर घुल रहा है बल्कि मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। खराब सेहत की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी लगातार घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने की बात कही है। पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये जमीन किसानों की ही होगी। प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशक घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्री से बन जाते हैं। दो तरह के खाद होते हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। ये मुख्य रूप से गाय आधारित खेती है और एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती हो जाती है। क्योंकि इसमें लगने वाली सामग्री घर पर प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे जीरो बजट खेती भी कहते हैं। ये खेती मूल रूप से मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर इसे सेहतमंद बनाती है। बजट में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद ली जाएगी।
9: देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
7: किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और न सिर्फ कोशिशें, और खासतौर से डॉक्टर गंगनेश अगर देखा जाए तो आज के समय की मांग हम मान सकते हैं, अभी का जो स्थिति है कृषि क्षेत्र की उसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है।
10: जी बिल्कुल, प्राकृतिक खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राकृतिक खेती जो है, जो नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, कि वर्षों से हमारे भारतवर्ष में तो जो ट्रेडिशनल है, जितना भी जब हमारे ऋषि मुनियों से अगर शुरू करें, हम हमारे वैदिक भी लिटरेचर को अगर देखें तो वहां पर भी कृषि के ऊपर और नेचुरल फार्मिंग का बहुत ज्यादा उसमें इवन शोध किए गए हैं उस टाइम में जी। और उन्हीं चीजों को आज अपनाया जाता है। और उस टाइम क्या होता था कि कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब सिंथेटिक कोई भी चीजें नहीं थी, तो उसके आधार पर ही जो खेती की जाती थी। और नेचुरल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जंगल जो फॉरेस्ट है हमारे, कैसे फल फूल रहे हैं, अपने आप ही वहां पर फल होते हैं, अपने आप ही वहां पेड़ उगते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का भी, कि वहां पर कौन जाकर कल्टीवेशन करता है, वहां कौन जाके इनपुट्स देता है, वहां कौन जाके केमिकल फर्टिलाइजर देता है। अगर आप जंगल में देखें और आप नेचर को देखें नेचुरल तरीके से, तो वहां पर माइक्रोब्स हैं जंगल में, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, रिसाइकलिंग हो रहा है लीफ का, वही वहां पर वर्षा भी हो रही है अपने आप में, जो क्लाइमेट चेंज की बात है वो भी अपने आप में नियंत्रण रहता है वहां पर, और इसी के साथ में सबको फल फूल भी मिलते हैं, प्रकृति अपने आप में फलती फूलती है। तो यही नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है और यही नेचुरल फार्मिंग का आधार है।
7: जी बिल्कुल, तो देखिए आधार जो है वो अगर मजबूत होगा तो और ज्यादा मजबूती इस क्षेत्र में हमें मिल सकेगी। भारतभूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से जैविक खेती से भी जुड़े रहे हैं और ना जाने कितने ही किसानों को इस दिशा में आगे भी आपने बढ़ाया है, लेकिन आपको कैसे लगता है कितनी आवश्यकता कि न सिर्फ जैविक खेती बल्कि प्राकृतिक खेती की तरफ भी जो किसान है उसका रुझान होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करें लेकिन एक छोटे से हिस्से से ही, जैसे शायद पहले जैविक खेती की शुरुआत हम करते थे।
11: जी नमस्कार, मैं आदरणीय गगनेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इस संदर्भ में कुछ बात रखना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक साफ तौर से बात सामने आती है कि प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाना इसके लिए एक अनिवार्य वस्तु बन जाती है। प्रकृति अपने आप में कैसे काम करती है, प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक किस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, मौसम बदलते हैं, फसलें पैदा होती हैं और वहां पर खरपतवार और रोगों का नियंत्रण रहा, जिसकी प्रेरणा हमको अपने पूर्वजों से बराबर मिलती रही। लेकिन आज का सवाल एक ज्वलंत सवाल है कि आज़ादी के बाद जो चुनौतियां हमारे सामने थी वो भुखमरी थी, और भुखमरी के कारण हम लोगों ने बहुत जो प्रयास किया, इसमें अनुसंधान, शोध, शिक्षा, नीतिगत सभी विषयों के लोग इसमें लगे, किसानों ने भी मेहनत की और एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे और राष्ट्र एक अस्तित्व को लेकर आगे खड़ा हुआ। लेकिन जो सवाल आपका है वो बड़ा वाजिब सवाल ये है कि क्या केवल नाम भर बदलने से काम होगा, या नाम के पीछे जो कंटेंट है और जो कैरिकुलम है उसको कैसे हम किसानों तक पहुंचाएंगे
12: जी?
11: और जो किसान आज तक अभी तक भी अपनी खेती में केवल उत्पादक बनकर रह गया है और खेती के बाजारीकरण के प्रभाव में उसकी सारी इकोनॉमी कर्जे में बदल गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र ने प्राकृतिक खेती को किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए जो आह्वान किया है, इसके लिए हम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हैं और उन सभी मनुष्यों को भी साधुवाद करते हैं कि जो इस दिशा में विजन और मिशन के साथ में इसके बारे में पूरा सोचेंगे
12: जी।
11: मेरा एक छोटा सा निवेदन इसके साथ और भी है, चर्चा तो आगे करते ही रहेंगे। मैं यहाँ ये बात और कहना चाहूंगा कि आधुनिक खेती में इनपुट बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जो कदम बढ़ाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट बेस्ड जो हम बात का अभी तक कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्शन बेस यदि लेंगे और प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक आगे जाने के लिए जो हमने क्लस्टर अप्रोच में फार्मर प्रोडक्शन जो एफपीओ का जो विकल्प खोला है पूरे देश में
12: जी,
11: ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सजगता के साथ यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो अवश्य सफल होंगे और प्राकृतिक खेती आज देश की जरूरत है
12: जी। बिल्कुल, एक जरूरत देखिए देश की, और जैसा कि भारत भूषण जी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं, और ये बात हमारे किसानों पर बहुत सटीक बैठती है क्योंकि एक किसान के लिए असंभव कुछ नहीं, पूरे ना सिर्फ साल भर वो मेहनत करते हैं बल्कि उन्हीं की बदौलत आप देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो चुकी है उन्हीं की वजह से ये है, लेकिन यहाँ पर अब जो परिवर्तन है वो आज के समय की मांग है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
6: जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा किसान जो है वो बरसों से खेती करता आ रहा है और हमने हमारे पूर्वजों से खेती के तौर तरीके आदि चीजें हमने उन्हीं से सीखी है, लेकिन आज़ादी के बाद जो भुखमरी जो समय की मांग थी उसके हिसाब से हमने अपने रासायनिकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उपज को प्राप्त किया, परंतु अभी समय आ चुका है, अभी हमारा देश सक्षम है, तो अभी हमें जरूरत है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की, और कैसे प्राकृतिक खेती द्वारा हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमारी मृदा को बचाना है और साथ ही हमें हमारे जल स्रोतों का भी यहाँ पर बचाव करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे यह करना संभव हो सकता है।
13: धन्यवाद। ये कार्यक्रम 2016 में शुरू किया हमने और केंद्र सरकार की जो प्रोग्राम्स थे, राज्य सरकार की प्रोग्राम्स हैं, और ये एक डेडिकेटेड मिशन बनाया ये हर किसान के पास ये कार्यक्रम ले जाने के लिए।

0: और इस साल हम 3730 गांव में है, 28% गांव में है और लगभग 6,50,000 किसान इसमें अभी जुड़े हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हमारे राष्ट्र के सारे किसान, इतने 80% 85% किसान अगले 5-6 साल में ये कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। और ये प्राकृतिक खेती जो है ये विश्व में हर देश में चल रहा है
1: जी,
0: और इसमें बहुत साइंस है। इसमें ये आप सबको जानना चाहिए कि इसका साइंस जो है ये एडवांस साइंस है और बहुत साइंटिफिक वैलिडेशन हो रहे हैं अलग अलग देशों में, हमारे देश में भी। और इट इज लाइक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न साइंस कंबाइंड
1: जी।
0: एंड हमारे, मेरा विचार है ये भविष्य का व्यवसाय है क्योंकि इसमें तीन फायदे हैं। एक तो किसान की आमदनी दुगनी तिगुनी जितना भी बढ़ोत होना है हो सकती है इसके द्वारा
1: जी।
0: दूसरा जो कंज्यूमर्स हैं उनका हेल्थ का विषय में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे आहार में, जो रासायनिक विष पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये सब ये प्राकृतिक खेती से होता है। लेकिन तीसरा विषय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है
1: जी।
0: क्योंकि संतुलन, अभी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, माने बाढ़ आने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए
1: जी,
0: या ड्राउट होने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। तो प्राकृतिक खेती से ये जो अभी संतुलन नहीं है बिगड़ गया है
1: जी।
0: हमारे देश में हर साल हम वी आर लूजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर खो रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती एक ही मार्ग है जिससे हम सॉइल की जो पूर्व फर्टिलिटी थी
1: जी,
0: उसको लाने के लिए। पानी का विनियोग भी कम होता है तो ये, क्योंकि तीनों क्षेत्र में पीपल प्लैनेट जो यू कैन समराइज
1: जी
0: इज, सो दिस इज इन माय ओपिनियन द फार्मिंग ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य का खेती ऐसे ही होगा
1: जी। और भविष्य की खेती के तौर पर विजय जी आप इसको देख रहे हैं और आपके शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मान सकते हैं जल जमीन जलवायु जो है जीवन को किस तरीके से सार्थक बना सकती हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती जो है हमारे किसानों को लगातार सीख दे रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं कृषि की पुरानी पद्धति जो प्राचीन पद्धति है और आधुनिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं दोनों का समावेश जो है वो हमें प्राकृतिक खेती में नजर आता है। इस बारे में डॉक्टर गंगनेश आपकी राय हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो जानकारी है ये किसान तक भी के ना सिर्फ प्राचीन पद्धति बल्कि इसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है वो भी है इसमें जुड़ा हुआ।
2: बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय विजय कुमार जी ने और आदरणीय हमारे भारत भूषण त्यागी जी उन्होंने कहा कि इसमें हमें साइंस का भी बहुत महत्व है और इसमें हमें इनोवेशन की भी जरूरत है। मतलब साइंस का तो है ही है हमें, बट इनोवेशन भी हमें लेके आना है इसमें और इनोवेशन इस तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जिसको हम कहते हैं उद्यमिता वो भी हमें लेके आना है इसमें, तो तब जाकर जो इसका संतुलन बनेगा और तब जाके हम अच्छी प्रोडक्शन भी ले पाएंगे और अच्छा होगा। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विज्ञान के अगर हिसाब से देखा जाए तो जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं और नेचुरल फार्मिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं जो एक्टिविटीज नेचुरल फार्मिंग में अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे उसमें हमें ऑन फार्म मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है, फार्म पे ही सब कुछ तैयार करना है, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, आच्छादन है या वास्प है, तो इसको हम आच्छादन वास्पा को यही कहते हैं कि मल्चिंग जो की जाए। और मल्चिंग के साथ में क्या होता है, साइंस ये है कि जब हम स्ट्रॉ मटेरियल जो हमारा पड़ा हुआ है खेत के ऊपर ही पत्ते हैं सूखे हैं हरे पत्ते हैं उसकी कंपोस्ट बनाई जाए और उसको मल्च के तौर पर भी हम यूज करें, तो मल्चिंग से क्या होगा, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि साइंस की बात यहां पर क्या है कि जब मल्चिंग की जाती है तो वहां पर एक तो वाटर कंजर्वेशन नेचुरल हो जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता भी सस्टेनेबिलिटी इम्यूनिटी धीरे धीरे होने लगती है, माइक्रोब्स भी जो जीवाणु हैं अच्छे जो मृदा में वो पनपने लगते हैं, और जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं जो हमें चाहिए अच्छी प्रोडक्शन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए, वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ साइंस की बात होती है, इसके साथ
1: उनकी पूर्ति हो जाती है।
2: और इसके साथ ही साथ जो जैसे वास्पा की बात करें, तो वास्पा में हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं प्लांटेशन है, नेचुरल फार्मिंग हम एडॉप्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कॉफी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, तो उसके साथ साथ हम लौंग लगाएं साथ में, तो उसको जो बड़ा पेड़ है वो छाया दे रहा है, तो अच्छा दान, और उसकी क्रॉप की जो प्लांटेशन जो लेयरिंग है वो इस तरह से हो कि वो आपस में एक दूसरे को छाया भी प्रदान कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी हो रहा है, पत्ते भी मिल रहे हैं, और नेचर का जो नेचुरल कंजर्वेशन, जो नेचुरल लॉज हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, साइंस के आधार पर भी ये सारी भी अपने आप ही सेट हो रही हैं और अपने आप ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं।
1: तो यानी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आपको अलग से कोई जो लागत है वो इसमें लगानी नहीं पड़ती। भारत भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक किसान जो है अपने आप में बहुत अनुभवी होता है और किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होता, क्योंकि लगातार उन्हीं क्रियाओं को करते हैं जब कृषि की हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो जब हम इसके पीछे विज्ञान की बात करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम कहे दे के शुरू कर दीजिए प्राकृतिक खेती, इसके पीछे का जो विज्ञान है जिसका भी यहाँ डॉक्टर गगनेश ने भी जिक्र किया, ये क्यों आवश्यक है कि किसान जो है इस बात को अच्छे ढंग से समझे?
3: देखिए, इसमें एक तो जो ऑन फार्म इनपुट की बात बार बार आती है,
1: जी
3: मैं डॉक्टर विजय कुमार जी भी सुन रहे हैं और मैं सारे देश के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब भी इनपुट का शब्द आएगा, इनपुट का शब्द है माने बाहर से हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी होती है या उसी के साथ जोड़कर हम कुछ तैयारी करें। मैं इसमें और एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो एक लंबे समय तक हमने प्रयोग किए, जब हम नेचर के लॉ को देखते हैं तो उसमें एक तो कोएग्जिस्टेंस दिखता है, धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक इंटीग्रेशन में काम करते हैं। दूसरी बात ये देखती है कि सभी डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करते हैं, माने कहीं भी मोनोक्रॉपिंग नहीं है, बल्कि खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हमारे माइक्रो बायोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाने की बात है, जमीन के कार्बन को बढ़ाने की बात है, या पीएच और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आधुनिक खेती के जरिए कुछ खराब हुई उसको ठीक करने की बात है, तो ये ठीक करने वाला मनुष्य नहीं है। प्रकृति के नियम को फॉलो करते ही मिट्टी में अपने आप ही वो सारी की सारी क्रियाएं होने लगती हैं
1: जी।
3: और इससे किसान को केवल ये बताना है कि विविधता में फसल प्रणाली लागू किए जाने के कारण जमीन में पानी का संतुलन बनने लगता है, बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होने लगते हैं
1: जी।
3: और जमीन की सतह पर भी खरपतवारों का नियंत्रण होने लगता है, अनेक चीजों के उत्पादन मात्रा में भी, गुणवत्ता में और विविधता में भी मिलता है। यहाँ एक और बात दिलाना चाहूंगा कि देश के सामने एक संकट आता है, बार बार सवाल उठते हैं कि प्राकृतिक खेती से कहीं उत्पादन ना कम हो जाए
1: जी।
3: तो जब हम मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं तो उत्पादन कम होने की संभावनाएं बार बार कुछ फसलों में बन जाती हैं। ऐसे में निराशा का विषय जब यह है कि जब हम पूरी विविधता को नहीं समझे, लेकिन यदि अनेक फसलों को साथ साथ लगाकर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है, गुणवत्ता में भी बढ़ता है, इकोलॉजी भी सस्टेन होती है, और एक बड़ी बात होती है कि हमें धरती की सतह पर प्रोडक्शन डेंसिटी बढ़ जाती है, जो धरती की सतह के ताप दाब नमी को संतुलन बनाए रखने के लिए इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है
1: जी। यानी जो सारे संशय हैं, देखिए वो कैसे दूर आपके हो सकते हैं, कैसे आप इजाफा जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ आपको सीमित नहीं रहना किसी भी फसल के उत्पादन तक। और खासतौर से विजय जी, अगर बात की जाए, जैसा भारत भूषण जी ने कहा, जो विविधीकरण है वो काफी आवश्यक है आज के समय को अगर देखा जाए।
0: भारत भूषण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो फसल की वैविध्यता है, डाइवर्सिटी है, उससे एक और बड़ा लाभ है कि जो जमीन के अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, तो इसकी डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। और डाइवर्सिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो जितने भी पौधे हैं उनको सबको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर पौधे को 30, 40, 50 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। कुछ बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन ये सब भी जब जमीन में जो माइक्रोब्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, ये सब पौधों को मिलते हैं। और पौधे जब ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, बोरॉन है
1: जी,
0: ये सब पौधों में आ जाता है, फलों में आ जाता है, तो फिर हमारी हेल्थ का भी बहुत बेनिफिट है। सो ये जो फसलों की वैविध्यता है वो एक बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में 50% से भी ज्यादा जो जमीन है वो रेन फेड लैंड्स है
1: जी,
0: वर्षा आधारित है। और अब आप सबको मालूम है कि रेनफॉल पैटर्न में बहुत ही वेरिएशंस आ रहे हैं
1: जी।
0: और हम जो प्राकृतिक खेती आंध्र प्रदेश में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि रेन फेड लैंड्स में हम 3 फसल ले सकते हैं
1: जी,
0: बिना इरिगेशन के। तो जमीन जो है हम उसको 365 डेज ग्रीन कवर कहते हैं। जमीन को 365 डेज क्रॉप डाइवर्सिटी विविध पौधों के साथ रखने से
1: जी
0: जमीन के लिए अच्छा और किसान के लिए अच्छा है और हमारे पशुओं के फॉडर मटेरियल्स, तो इट लाइक विन विन विन फॉर एवरीबॉडी। एंड मोर इम्पोर्टेंट, सॉइल का टेम्परेचर कम करके जो ग्लोबल वार्मिंग की जो अभी हम बहुत ही क्लाइमेट इमरजेंसी में है
1: जी,
0: तो विश्व के जो साइंटिस्ट जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं उनका मानना है ये प्राकृतिक खेती से ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसका सोल्यूशन भी हमारे ये कीपिंग द ग्राउंड कवर्ड विथ लिविंग रूट
1: जी।
0: और एक और बात मैं गणेश जी का जो है थोड़ा एक और एक अंश उसमें लाना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक खेती का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दैट इज द बेसिस फॉर लाइफ
1: जी।
0: तो जो भी पौधे खाना बनाते हैं पत्तों के पत्ते बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, एक तिहाई 1/3 पोर्शन जो है वो शूट सिस्टम में जाता है लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स, लेकिन 2/3 जमीन में है वो रूट्स में है और रूट एक्सुडेट्स में है, तो ये खाना देते हैं सूक्ष्म जीवी को। सो प्रकृति ने ऐसा बैलेंस बनाया है कि पौधे जो है जमीन को जो सूक्ष्म जीवी है उनको खाना दे रहे हैं
1: जी।
0: और वापस जो सूक्ष्म जीवी है पौधों को जो चाहिए वो उनको दे रहे हैं। तो जितना हम वैविधता बढ़ाएंगे उतना ही सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ेगी, उनकी वैविधता बढ़ेगी और साल भर 365 डेज ऑफ द ईयर ये ये फिनोमिनन है वो भी एक एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू माना जाता है, क्योंकि बिना बारिश के ये फसल आने का एक ही मार्ग है कि हवा में जो वाटर वेपर है
3: बिल्कुल,
0: जब हम प्राकृतिक खेती से पौधे उगाते हैं वो पौधे में एक क्षमता है कि हवा में जो पानी है उसको वो ले सकता है।
4: किसान साथियों, अभी आप देख रहे थे रासायनिक कृषि से क्या क्या आपदा हमारे पर आ सकती है, क्या विपत्ति हमारे पर पड़ सकती है आदि जानकारियों को आप लोग सुन रहे थे। इस जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
5: आज ये कोहड़े लेन कई चलियो भाई,
6: लाकड़ा वाटवान का हो भाईयो,
5: उबर थोड़ी बार मारी बात हम ले पंजा दे।
6: अरे नहीं नहीं नहीं भैया, वाट दे रोटा हने करे नियल बालवानो गरीबी ने मले।
5: ओहो पण थोड़ी बार हम ले
6: के देखो देखो मन वार दे पर थाई रे।

0: साल घड़े के नाच ले।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से बिली गीत को सुना। इसी के साथ हम आगे की खेती बाड़ी कार्यक्रम की आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। कैसे जानेंगे हम कैसे प्राकृतिक खेती हमें मुनाफा देती है, उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है इस प्राकृतिक खेती का राज।
2: कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को बैक टू बेसिक्स के लिए तैयार कर दिया है। इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया ही है, यानी सेहत ही सब कुछ है। और इसकी शुरुआत होगी हमारे खेतों से। जी हाँ, जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो इससे उपजने वाला अनाज, फल और सब्जियाँ ना सिर्फ हमारी और मिट्टी की सेहत को दुरुस्त रखेंगे बल्कि किसानों की आमदनी को भी दोगुना करेगी। आप सोच रहे होंगे कि जैविक खेती तो सुनी थी, लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे होती है? दरअसल प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देशी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। तो जरा सोचिए, जब हमारी एक देसी गाय ही इतने काम की है तो अच्छी खासी संख्या में गायों को पालना हमारे लिए कितने काम का होगा। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आखिर प्राकृतिक खेती क्यों की जाए? प्राकृतिक खेती में किसान को नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आपके पैसों की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, कम लागत प्राकृतिक खेती से ही जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है।
3: इसमें किसानों को पलायन जाने की जरूरत नहीं है
4: जी।
3: साल भर गांव में ही जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या परिष्कार हो सकती है। और क्योंकि किसान 12 महीने 365 दिन कुछ ना कुछ फसल ले रहा है और गांव की इकोनॉमी बढ़ती है
4: जी।
3: जो भी उस पर आधारित है वो सो रूरल लाइवलीहुड की बढ़ोतरी होती है। सो देयर इज इट्स इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन हो सकता है
4: जी।
3: कि गांव में ये सीजनलिटी ना हो कि एक ही फसल है और दो तिहाई दिन लोग खाली हैं, ऐसा नहीं हो
4: जी।
3: अगर थ्रूआउट द ईयर ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न हुआ
4: जी,
3: ये रूरल इकोनॉमी को ये पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा।
0: यानी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी है देखिए वो किस तरीके से इससे बदल सकती है और इसके लिए लगातार सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। इस बारे में डॉक्टर गगनेश आपसे हम जानना चाहेंगे और किस तरीके से सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्राकृतिक खेती को।
4: जी बिल्कुल, जैसे टी विजय कुमार सर ने जो इतना अच्छा बताया कि साइंस किस तरह से इसमें नेचुरल फार्मिंग में कर रहा है, सारी चीजें कैसे सहयोग करेगा और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने बहुत पहले तीन वर्ष पहले जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना की तरह ही उसके सब स्कीम चलाई जिसका नाम है बीपीकेपी या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो उस स्कीम में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इस वक्त केरला भी आगे आ रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश इन सब और उड़ीसा में भी, ये सब 7-8 जो हमारे प्रदेश हैं इसमें करीब 4-5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत इस वक्त कवर किया जा चुका है
0: जी।
4: और इसका जो फोकस है इस स्कीम में इसमें किसानों को क्लस्टर में इकट्ठा आगे किया जाता है और किसानों को जो नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ऑन फार्म ही, जैसे हमने बात की कि उनको चाहे वहां पर वो बीजामृत जीवामृत बनाना है या और भी कोई बोटेनिकल और भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, बायोपेस्टिसाइड्स नीम आधारित काउ यूरिन आधारित फार्म के ऊपर जो बनाना है उसके लिए उनको 12,300 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 साल के लिए ये स्कीम चलाई गई और इसमें काफी किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो फोकस था सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का वो यही था कि प्रकृति के नियमों के आधार पर और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और ये देखा जाए पायलट बेसिस पर कि क्या इसका जो है रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, काफी सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं और यही जो टी विजय कुमार साहब ने जो बात की कि यही जो इन्हीं चीजों के ऊपर इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर ट्रेनिंग्स दी गई लोगों को, फार्मर्स को, किसानों को और उनको ये बताया गया कि इसके लाभ क्या है, किस तरह से इसको किया जाए, गाय आधारित, काउ डंग आधारित, काउ यूरिन आधारित किस तरह से खेती हम कर सकते हैं और जो आउटसाइड इनपुट्स हैं बाहर से हमें कुछ भी चीजें परचेज ना करनी पड़े और आसान जो प्रमाणीकरण का सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट किया जाए, जैसे पीजीए सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है उसको करवाया गया। तो इस तरह से ये स्कीम चलाई जा रही है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर गणेश, जैसा आपने कहा, लेकिन ये बात यहाँ पर भारत भूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किसान के लिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, बतौर किसान किस तरीके से आप अंतर करते हैं जैविक खेती की हम बात करें और प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। तो
5: देखिए, लंबे समय से किसानों की आर्थिक कमजोरी का कारण कहीं ना कहीं जो भी रहा उसकी पूरे देश में समीक्षा भी होना बहुत जरूरी है और जिस प्रकार की बातें अभी आदरणीय टी कुमार जी ने रखी हैं, टी विजय कुमार जी ने
0: जी,
5: मैं उन्हीं में कुछ बिंदुओं को जोड़ना चाहूंगा कि जब हम विजनरी होकर किसी चीज को देखते हैं तो उसमें जो सारी पद्धतियां जो विकसित होती हैं उन सभी को इंटीग्रेट करना जरूरत है ताकि किसानों तक एक ही बार में पूरी सूचना जाए
0: जी।
5: किसानों को एक बार में हम केवल एक चीज बताते हैं और दूसरी बार में फिर दूसरी चीज बताते हैं तो किसानों के लिए मुश्किल होता है। इस समय किसान केवल ये सुनना चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़ने में प्राकृतिक खेती की क्या भूमिका है
0: जी।
5: तो केवल इतना बताना है कि प्राकृतिक खेती में अब तुम्हारा रसायनों का खर्चा तो कम होगा ही होगा, साथ में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण के साथ प्रसंस्करण और प्रसंस्करण के साथ ब्रांडिंग पैकेजिंग करते हुए यदि हम बाजार व्यवस्था तक जाते हैं तो आधुनिक खेती में जो बाजारीकरण के प्रभाव से किसानों की आमदनी बहुत कमजोर हुई
0: जी,
5: उसके प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा बढ़ने के बल्कि गुणात्मक रूप से बढ़ने के संभावना उसमें से दिखती है
0: जी।
5: किसान सुनना यह चाहता है कि यदि मैं आज से ही प्राकृतिक खेती करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, तो करने वाले हिस्से में किसान की अभी तक भूमिका रही है। अब हम उसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ दें कि करके समझने से अच्छा जो अध्याय था हमारा वो समझकर करने का है
0: जी।
5: अर्थात किसान 3 वर्ष तक यदि किसी योजना में जुड़ते हैं तो उनको उस बीच में इतना अभ्यास जरूर करा दिया जाए ताकि उनको प्राकृतिक खेती का विजन भी क्लियर हो जाए और उनके मिशन में प्राकृतिक खेती एक व्यवसाय के रूप में स्वावलंबी आर्थिक विकास की प्रेरणा के साथ राष्ट्रीय धरोहर बन जाए।
0: जी,
5: भारत को आज इस चीज की जरूरत है,
0: बिल्कुल आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो हम हमेशा से हम कहते आए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां न सिर्फ मजबूती जो चाहिए बल्कि वो मजबूती हर एक किसान तक आनी चाहिए और हर एक किसान के अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ शायद वो अब मजबूती है और हमारी वजह से ही कहीं ना कहीं जो कृषि है इस देश की वो आत्मनिर्भर बनी है। इस बारे में विजय कुमार जी आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, जब हम आत्मनिर्भर कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को अगर उससे जोड़ा जाए, या अब आज के समय में हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो आने वाले समय में जैसा आपने कहा था जो भविष्य की खेती है, तो कहीं ना कहीं भविष्य की खेती जब इन सभी घटकों से मिलेगी तो और ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भारत भूषण जी की बात थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि ये सबसे प्राकृतिक खेती में खास विशेषता ये है कि ये नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर है।
5: बिल्कुल,
3: जितना ज्ञान बढ़ेगा किसान का
0: जी
3: उतना ही इसमें रिजल्ट आएगा, तो इसमें समय लगता है और किसान के पास कौन जाएगा, कौन है किसान, तो ट्रेनिंग के लिए समय बर्बाद नहीं करेगा कहीं दूर जाके। तो हम क्या करते हैं आंध्र प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी, हम जो चैंपियन फार्मर है, जो किसान इसमें एक्सपीरियंस्ड है, प्रिंसिपल समझ में आया है, उन्होंने 2-3 साल ऐसा फसल लिया है, उनको हम किसान शिक्षक मानते हैं।
0: देखिए किस तरीके से एक जो किसान है वो ना सिर्फ एक किसान शिक्षक की भूमिका में हो बल्कि जो एक कहीं ना कहीं विश्वास जो है तब और ज्यादा आता है किसान का जब दूसरा किसान जो है उनको और ढंग से सारी चीजें समझाते हैं। और डॉक्टर गंगनीश, अगर देखा जाए क्योंकि ना सिर्फ योजना अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है बल्कि इसके साथ साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब एक किसान दूसरे किसान को चीजें बताता है तो शायद और बेहतर ढंग से उसका जो परिणाम है हमारे सामने होते हैं।
4: बिल्कुल, जैसे कि हमने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं ना सहभाग प्रतिभूति प्रणाली, अगर हिंदी में कठिन उसमें कहा जाए तो पीजीए सिस्टम के नाम से इस सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण सिस्टम को जाना जाता है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक में देखा कि उसमें काफी अच्छा जो नॉलेज एक्सचेंज से और किसानों के द्वारा खुद की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को खुद ही करना, पहले तो नॉलेज को शेयर करना, पहले तो अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस मोबिलाइजेशन किसानों की हमने करवाई, उनको कलेक्टिव में जोड़ना, फिर उनको ट्रेनिंग दिलाना, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ये सारी चीजों को एडॉप्ट किया, करवाया किसानों से, किसानों को ट्रेन भी किया और किसान कुछ हद तक ट्रेन भी हुए हैं
0: जी।
4: और नॉलेज एक्सचेंज, नॉलेज शेयरिंग से एक दूसरे के खेत में क्या हो रहा है, खुद ही उन्होंने एक दूसरे का इंस्पेक्शन भी किया, पीयर अप्रेजल भी किया, जिसको हम पीयर इंस्पेक्शन कहते हैं, पीयर अप्रेजल कहते हैं, उसके आधार पर एक दूसरे की खेती को मोहर भी लगाना कि हाँ हम एक दूसरे का प्राकृतिक कर रहे हैं खेती में, कुछ भी हम सिंथेटिक केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बाहर से नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो चाहे वो जैविक खेती हो, दोनों के लिए ही प्रमाणीकरण की अगर बात करें तो प्रमाणीकरण का हमारा जो ये एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें ये कहा जा सकता है कि नॉलेज एक्सचेंज जो है किसानों को बहुत ही जरूरत है और नॉलेज एक्सचेंज से किसानों ने अपने आप को एम्पावर किया है
0: जी।
4: और अपने आप को उन्होंने प्रमाणीकरण में भी बहुत से सर्टिफिकेशन में काफी आगे आए हैं और इस वक्त हमारे आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख किसान जुड़ चुके हैं इस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन से।
0: ये भी एक अच्छा खासा आंकड़ा है किसानों का, जिसके जरिए देखिए लगातार हम बात करते हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र के जब विकास और विस्तार की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये आंकड़े बल्कि जो परिणाम हमारे सामने हैं वो अपने आप में सारी बात को बतला ही देते हैं। भारत भूषण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक किसान के लिए जाहिर तौर पर चुनौतियां जो हैं वो होती ही हैं, प्राकृतिक खेती में आपको क्या लगता है, तो जैसा आपने बताया कि जो तकनीकी ज्ञान है या सारी जानकारी किसान को होनी चाहिए, लेकिन और किस तरह की चुनौतियां आपको लगती हैं जो प्राकृतिक खेती में एक किसान के सामने आती हैं?
5: देखिए, एक तो किसानों के स्तर पर सामाजिकता टूटी है
0: जी,
5: और अकेले अकेले भागने का जो कार्यक्रम रहा पिछले आधुनिक खेती में, उससे किसानों में जो आपस में बातचीत करने के तरीके थे उनमें कमजोरी आई है
0: जी।
5: लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जहाँ किसान जब अपनी आमदनी के साथ साथ ये भी सोचता है कि यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं और हमारे सामान की जो बिक्री है वह भी स्थायी हो जाती है, मतलब उसके भी अवसर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गगनेश जी ने जो अभी बात कही थी कि जब पोर्टल पर हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के बारे में पीयर अप्रीजल की बात या उनके इंस्पेक्शन की बात, तो जो अब तक थर्ड पार्टी करती रही उसमें किसानों को जब अपनी जिम्मेदारी मिली कि हम भी एक सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम अपनी चीजों का वेरिफिकेशन खुद कर सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे खेत का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इससे ही देखने में आया कि यदि प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मानकों के सही आंकड़े के साथ चलाया जाए तो किसानों में सामाजिकता का भी विकास होगा। और जो छोटे किसान अपने को कमजोर मानते हैं कि आधा एकड़ है, एक एकड़ है, लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी ये पता लगता है कि खेत में उत्पादन करने के लिए हमको केवल बाहर से चीजें नहीं लानी थी बल्कि खेत में ही बहुत सारी चीजें हैं और उन फसलों पर जैसे सब्जियों की खेती है और फलदार पौधों की खेती है, जड़ी बूटियों की खेती है, उनको अपनाए जाने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि कई बार क्लाइमेट के परिवर्तन और जंगली जानवरों के जो प्रकोप किसानों के खेतों में हो रहे थे उनसे भी किसानों को निजात मिल रही है।
0: जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है कि कैसे आपकी लागत कम होगी और आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। जैसा कि यहाँ डॉक्टर गंगेश आपने विकास सहभागिता जो है वो काफी जरूरी हो जाती है। विजय जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से जो किसान है वो उनका रुझान नजर आता है प्राकृतिक खेती की तरफ, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक साल करीब तो हमारे जो किसान है वो करते हैं और थोड़ा सा उत्पादन उन्हें कम लगता है, वो विश्वास उनको दिलाना कि अभी आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा है, क्या कुछ चुनौती आपको नजर आती है इस तरफ?
3: मैं भरत भूषण जी का और विघ्नेश जी का थोड़ा बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने देखा है जो पहला साल है वो बहुत मुश्किल साल है
0: जी,
3: तो क्योंकि जो गांव में 10 लोग हैं तो एक ही किसान एक काम करता है शुरू में, हमारा अनुभव है 5-10% किसान ही इसको पहले साल अपनाते हैं और ये फर्स्ट ईयर में अगर सही तकनीकी जानकारी नहीं मिली तो फिर वो पूरा स्कीम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम हर गांव में जो किसान 3-4-5 साल का अनुभव है वो किसान वहां पर शिक्षक है और वही उसी गांव में रहता है
0: जी।
3: ये नहीं कि किसान कहीं ट्रेनिंग पर चले गए, नहीं, शिक्षक उनके गांव में है। और दूसरी बात यह है कि महिला संगठनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि खेती में कृषि में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, इट इज मोर देन मेंस रोल, 60-70-80% है। तो जो हमारे महिला संगठन है ये हर हफ्ता हर 15 दिन ये प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उनसे उनको स्फूर्ति मिलती है। अगर कहीं पर कोई किसी किसान ने ठीक नहीं किया उनको सलाह मिलता है ये, तो मेरे ख्याल में ये हमारे देश का एक स्ट्रेंथ है कि देश में लगभग 8 करोड़ महिलाएं ग्रामीण प्रांत में संगठन में हैं, जुड़े हुए हैं
0: जी।
3: तो पूरे देश में प्राकृतिक खेती जल्दी ले जाने का बहुत बड़ा पॉजिटिव फाउंडेशन है, क्योंकि हमारा जो आंध्र प्रदेश में जो भी हमने किया है लगभग 15 लाख महिला जो हमारे संगठन में है, क्योंकि आपको ये भी है कि हमारे कार्यक्रम में जो बिना जमीन के किसान मजदूर हैं
0: जी,
3: तो उनके परिवारों के साथ भी हम काम करते हैं, क्योंकि उनको ये किचन गार्डन्स, होमस्टेड गार्डन्स, तो 2 सेंट है, 3 सेंट है, जितना भी कम जमीन है उनको घर के लिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्राकृतिक पद्धति से जो पैदा किए हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सामूहिक काम
0: जी
3: बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नॉलेज डिसेमिनेशन है, फार्मर ही, किसान ही इसको दूसरे किसान के पास ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर हमेशा चर्चा होना चाहिए गांव में, अलग अलग इनोवेशंस की खोज होती है गांव में ही
0: जी।
3: और ये किसान ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है
0: जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है
1: जी। हाँ किसान साथियों, विचारों के आदान प्रदान के इस प्रक्रिया में हमारा जो किसान है वह अपने खुद की जो एक नई सीख है वो बाकी किसानों के साथ साझा करता है, वो बाकी किसानों को भी अपनी सीख को सिखाता है, उससे बाकी किसान भी अपने अपने खेतों में जो उन्हें सीख मिलती है यह उन्हें बाकी लोगों को तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ही फायदा मिलता है। साथ ही हम एक्सपर्ट के माध्यम से भी और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी हमारी जो सीख है उन्हें एक दूसरे किसानों के साथ साझा करने की जो ये प्रक्रिया है ये काफी फायदेमंद हो सकती है। और यहाँ पर किसान हमारे पूर्वज

0: भी यह करता आया है और हमें इसे जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें हमारे जो पड़ोसी किसान हैं उनके खेतों में हम जो विजिट करते हैं उनसे भी उनके खेतों की उनकी फसलों से हमें जो सीख मिलती है उन्हें हमें दूसरे किसानों तक पहुंचाना है और हमें हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसको भी बढ़ावा देते हुए उसे हम आगे ले जाना है। साथ ही जानेंगे कुछ और प्राकृतिक खेती से जुड़ी, जैविक खेती से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: के साथ बात करते हुए बहुत लंबे समय से और कई राज्यों में ये बात सामने आई है कि किसान को एक ही बार में बहुत संतोषजनक तरीके से यदि गांव के ही लोग या उनके बीच का ही कोई आदमी एक सही बात उनके सामने रखता है और उन सही बातों में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं कि जैसे कीड़े बीमारियों का इलाज क्या होगा, हम कब से इस कार्यक्रम को शुरुआत करें
2: जी,
1: हमारे खाद के तरीके क्या होंगे या हम जो पुराने अभ्यास करते रहे उनमें से हमको क्या बदलाव करना होगा, जैसे एक खेत में पौधे ही लगाने हैं और बीज की मात्रा है तो उसमें दूरी का नियम कैसे काम करता है
2: जी,
1: या उसमें हमको किस समय पर फसल लगानी है और हमारा मेहनत उसमें कितना लगेगा, हमें कौन से प्रकार का बीज चयन करना पड़ेगा, हमारा सामान कहाँ पर बिकेगा और उस बिकने के लिए हमको क्या परिस्थितियों से गुजरना होगा
2: जी।
1: तो इन सारी बातों के क्रम से यदि उत्तर किसानों के पास जाते हैं तो किसान में कोई संकोच नहीं है कि वो बदलना नहीं चाहता। स्थिति तब होती है कि यदि हम प्रारंभ में केवल उत्पादन भर तक बात करते हैं और फिर बाद में फिर प्रोसेसिंग की और बिक्री की बात करते हैं तो उससे उनके बीच में जो टुकड़े टुकड़े में बात जाती है। तो अभी हमारी योजनाओं में थोड़ा सा मैं डॉक्टर टीवी जयकुमार जी को ये जरूर निवेदन करूंगा, चूंकि आप राष्ट्रीय पॉलिसी पर भी आपकी आपका ध्यान रहता है और आपका सम्मान भी पूरे देश में है, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा एक मिनट में। मुद्दे ये हैं कि राष्ट्रीय कार्य नीति, जब नीति का विषय आता है तो जो विजन है वो परिभाषा के साथ भी और योजना का को कितने आयाम है, हमको पर्यावरण को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, कुपोषण को देखना है, इकोनॉमी को देखना है और मेजर तरीके से इस समय जो चुनौती है वो इकोलॉजी भी है, हेल्थ भी है और इकोनॉमी भी है। तो ये एकदम तरीके से इंटीग्रेट अप्रोच में किस तरीके से किसान तक पहुंचेगी ये हमारे राष्ट्रीय नीति का विषय है
2: जी।
1: दूसरा मैं कहूंगा कि मंडल स्तर पर कम से कम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान जो क्लस्टर में है या महिलाओं के जो समूह हैं उनके साथ बैठकर राज्य सरकारें इस पर नीतिगत चर्चा करें कि राष्ट्रीय कार्य योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए इसकी किस प्रकार की योजना इस क्षेत्र के साथ बनाई जा सकती है ताकि ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक मॉडल के रूप में किसान सहभागिता के साथ खड़े हो जाए।
2: लेकिन मुख्य अगर देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो उसकी आवश्यकता यहां पर है। विजय जी क्या कहना चाहेंगे इस पर?
3: जो किसान पहली कदम लेता है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि लगभग 50-60 साल से यही सुनता आया है कि अगर रसायन नहीं डालेंगे तो फसल नहीं उगेगा, तो बहुत डाउट्स होते हैं किसानों में। तो पहली बात जो है वो एक आधा एकड़ ही करेगा तो वो अपने घर के लिए जो खाना है उसी की तरफ एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इस खेती का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है लोकल कंजम्पशन जो है और गुड कंजम्पशन गांव स्तर पर। बाजार की बात भी है लेकिन मुझे जो लगता है गांव का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बढ़ाने में ये बहुत काम करता है, क्योंकि किसानों को अगर हमारे जो इंटीग्रेटेड प्रपोजल में हर गांव में जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ताकि रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए
2: जी,
3: और जो भी गांव का कंजम्पशन है फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ये केवल अपर मिडिल क्लास या ऊंचे दर्जों के लोग की कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, हर साधारण सिटीजन हमारे देश का वो हकदार है कि उसको न्यूट्रिटिव खाना मिलना चाहिए और सही दाम पर। तो ये दोनों बैलेंस करना है। तो उसमें अगर गांव पे ही सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए, तेल निकालने का, दाल को रोस्ट करके प्रोसेस करने का, राइस मिल, आटा चक्की, ये सब हर गांव में या क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए अगर ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है अगर एस्टेब्लिश करे, युवक हैं गांव में, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जो गांव का उत्पादन है वो कम एट ए वेरी लो कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट हर हर परिवार को मिल सकता है. तो मैं, हमारा एफर्ट है हमारे राज्य में कि ये ऐसा महंगा नहीं होना चाहिए कि इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन.
2: जी,
3: तो फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारे जो 60-70% जो गांव में रहते हैं और जो मजदूरी पर ही आधारित हैं, उनका न्यूट्रिशन शुड बी आवर फर्स्ट चार्ज.
0: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि हमें यहाँ पर कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए न्यूट्रिशन फूड ही मिलना चाहिए. हम सब एक समान है और सबके लिए न्यूट्रिशन फूड की सभी को आवश्यकता है. तो यहाँ पर हमें इसको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, इसका विभाजन करने की जरूरत नहीं है. तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम जो हम पुनः प्राकृतिक खेती के ऊपर जो आज का कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे और अपना और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे. तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्याबिल 90.8 FM के साथ. रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान. आपु रोज करहु बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा. एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM.
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
6: हर घर सूर्य घर.
7: आज के कलाकार के इस मंच पर दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आप जैसा जानते हैं ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का. और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं मालविका दास मैम तिनसुकिया आसाम से. आपका बहुत बहुत स्वागत है दास मैम. हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप?
8: जी धन्यवाद. मैं मालविका दास तिनसुकिया आसाम से आप सभी का दिल से साधुवाद. मेरा खुद संगीत महाविद्यालय है जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ और तिनसुकिया में ही रहती हूँ.
7: दोस्तों आपने सुना, मालविका मैम एक संगीत विद्यालय चलाती हैं. हम लोग तो इधर से उधर से किसी तरीके से संगीत सीखते हैं, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में एक संगीत की टीचर भी हैं जो दरअसल हमें कई बारीकियां भी बता पाएंगी संगीत के बारे में. बहुत खूब, बड़ी ही शानदार बात मैम. थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए. चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मालविका मैम के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से.

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है, जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी
0: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप गायिका बने। और
1: जी,
0: मैं आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया और बात हो भी क्या सकती है, बहुत खूब दोस्तों। तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है,
0: जी
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात,
1: जी
0: बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी
0: तो दोस्तों, आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं, ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत।
0: मेहनत
1: जी
0: भाई, वाह क्या बात है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा गीत। मैम, अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई भी खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: चलिए, जो सबसे पहले मैं बनाने की बात है तो वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी,
0: ओह,
1: टी, लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: अरे वाह, ओके ओके
1: चाय बनाई लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: जी, तो
1: जी जी
0: ये कब की बात है मैम? आप,
1: ये मैं स्कूलिंग का टाइम में, तब मम्मी बोली थी कप चाय बना के लाओ, सबको खिलाओ खिलाओ।
0: अच्छा,
1: तो मैंने बहुत उत्सुकता से बनाई थी। मैं, मेरे पापा ऑयल इंडिया में नौकरी करते थे, तो
0: जी
1: हम लोग का मतलब ऐसे गैस थे, मतलब लाइन गैस बोलता है, तो उसमें हमने चाय बनाई। फिर बहुत एक्साइटमेंट, मैंने चाय बनाऊंगी सबको पिलाऊंगी, फिर उसमें मैंने चीनी डलानी, लेकिन सबने पी लिया, बहुत टेस्टी हुआ, बोला बाद में मैं पी के देखी, तो इसमें चीनी है ही नहीं।
0: ओ माय गॉड, कितना अच्छा, अजीब सा लगा होगा, लेकिन मजा भी आया होगा। मम्मी पापा ने डांटा भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। जी जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में।

0: आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मालविका मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जहां तक मेरी हॉबीज की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि सुबह उठना
0: जी,
1: बागवानी के देख रेख करना, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा शौक है, और खाना बनाना और गाना गुनगुनाना, सारा दिन मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ।
0: बहुत खूब, वेरी नाइस
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। मैम पूरे दिन में हम लोग सारा काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, सारी दुनिया चलती रहती है, क्या कुछ किसी भी दिन में डेली रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड खराब हो जाए? कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है किसी भी दिन?
1: मूड खराब ऐसे तो कभी होता नहीं मूड खराब, मैं हमेशा कभी कभी होता है, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट स्टूडेंट को सिखाती हूँ, स्टूडेंट को लेके बैठती हूँ, तो उन लोग को मैं जब होमवर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बोल दिया आज ये लेसन करके आओ, तुम लोग गा के बताओ, तो कई कई आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं बहुत काम, तो तब मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ मैं आज नहीं सिखाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। उसी में मुझे मूड खराब हो जाता है। जी
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात। सवाल दरअसल बिल्कुल सही था कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया है वो अगर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपने अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैम आज तक की जिंदगी में, मतलब टिल टुडे, आपकी जो भी पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा मेरे को जिंदगी में मिला, मैंने पा लिया? जैसे कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सपना सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या आर्मी में जाने का, या कोई अवार्ड लेने का, या कोई शील्ड जीतने का। तो ऐसा कौन सा अकॉम्प्लिशमेंट आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा हुआ है, जहां आपको लगा हो बस मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है?
1: समझ गई मैं अभी।
0: जी
1: एक्चुअली मैं जब एक बार मैंने एक बड़ा बड़ा आर्टिस्ट के साथ मैं रिकॉर्डिंग किया था,
0: जी
1: जो हमारे आसाम की जुवेन गार्ड सर से, मैं उनके साथ मैंने एक गाना गाई थी। तब मैं बहुत नर्वस भी थी, तो मैं खुद को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं उनके साथ गाना गाने का मुझे मौका मिला है। तो उसी टाइम उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, गौरवपूर्ण उपलब्धि था मेरा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सपनों में विश्वास रखते हैं? रात को सोते हुए देखने वाले सपने और खुली आंखों से देखते हुए अपने उन सपनों को पूरा करने वाले सपने?
1: जी जरूर, लेकिन उस सपनों में नहीं जो रात को सोने में आती है वो,
0: जी
1: बल्कि उस सपने में विश्वास करती हूँ जो दिन में दिखे जाए।
0: अरे वाह जी
1: जी,
0: उन सपनों में आप विश्वास रखते हैं, क्यों?
1: जी
0: ऐसा क्यों?
1: रात का सपनों में मैं विश्वास नहीं करती, मतलब सपना में तो सपना तो आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ।
0: जी जी जी,
1: लेकिन जो दिन में जो हम लोग शुरुआत करते हैं दिन का, वो मतलब मैं उसको मैं विश्वास करती हूँ, जो आज मुझे ये करना है वो करना है, जो मैं सोचती हूँ मुझे वही करना है, कैसे काम करना है कैसे चलना है, वही मैं उसी में मैं विश्वास रखती हूँ।
0: ओके बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि मालविका मैम उन सपनों में विश्वास रखती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए मालविका मैम जी की आवाज में, सुनते हैं आइए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया। मैम मुझे बताए ना कि आपकी जिंदगी में अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: वैसे तो बहुत तोहफा मिला है,
0: जी
1: लेकिन सच्चा तोहफा तो वो है जो एक मित्र बुरे समय में खैरियत पूछे और आश्वासन देते रहे कि घबराना मत, मैं हूं ना।
0: अमेजिंग, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही कि ऐसे समय में जब इस वक्त हम बहुत कभी कभी परेशान महसूस करते हैं, शायद कमजोर भी महसूस करते हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा जानने वाला आपको, आपसे बात करता है, आपको महसूस कराता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसी से बहुत ताकत मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा संगीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं और जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहिए।
1: जी, मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ जो मेरा गाना आप लोगों ने सुना है
0: जी।
1: और आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि एक बार सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
0: बहुत बढ़िया जी। दोस्तों देखिए, बहुत ही छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प मैसेज है मालविका मैम का कि सुनने के बाद बताएं जरूर कि कैसा लगा, जिससे कि फीडबैक हो तो हम अपनी प्रतिभा को और सुधार सकें, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकें। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू सो मच मालविका मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मधुर कार्यक्रम मैं लेकर हाजिर हूँ, आपका दोस्त समीर। और आज हमारे साथ जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो गायिका मौजूद है वो है गौरी जी। बातचीत होती रही तो बस मैं गौरी जी को गौरी माँ कह बैठा, अच्छा लगा मुझे। तो बस चलिए, मेरे लिए तो मैं वो माँ ही हो गई, अब मैं उनको गौरी माँ ही बुलाऊंगा, बाकी की बातें हम गौरी माँ से करेंगे। और गौरी माँ, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा

0: बहुत सुंदर। आपने बताया गौरी माँ कि अभी 2022 में ही आपने गाना शुरू किया। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। मैंने जो एक बुक लिखी एकलव्य एक अकेला योद्धा, उसमें मैंने इस एक चैप्टर मेंशन किया है कि किस तरीके से हमारे जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्रबुद्ध लोग हैं वो किस तरीके से नए तरीके से कुछ सीख सकते हैं। आप उसका बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल हो कि आपने बस एक डेढ़ दो साल पहले ही आपने गीत गाना शुरू किया और इतने प्यारे सिंगिंग आपने कर की, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो
1: इट्स वेरी नाइस ऑफ यू।
0: मैं तो ये कहूंगा माँ कि एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक नया बचपन, क्योंकि बच्चे ही सीखते हैं ना। बच्चे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर खड़े होते हैं, और हम, मैं और आप, उसी जगह पर आ गए। अब हम फिर से सीख रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, राइट? तो चलो अपनी संगीत के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है, और किस तरीके का म्यूजिक मतलब क्लासिकल हुआ, भजन हुए, गजलें हुई, सूफी गाने हो गए, या फिर बहुत प्लेन एंड सिंपल बॉलीवुड, और आपके अच्छे फेवरेट सिंगर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: मुझे तो एकदम आई एम अ टोटल बॉलीवुड फैन।
0: ओके,
1: तो मैं नॉर्मली बॉलीवुड ही गाती हूँ, बॉलीवुड आई मीन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गाती हूँ, एंड आई लव द रेट्रो वंस, राइट, ऑलमोस्ट फ्रॉम द 50s ऑनवर्ड्स। और सिंगर्स तो दे वर ग्रेट सिंगर्स, नो, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, मुझे पसंद है वो जरा मस्ती वाले नटखट, थोड़ा सम नॉटी सॉन्ग्स, आई लव देम,
0: राइट? वो आपकी आवाज में भी सुनाई दे रहा है गौरी माँ कि आप खूब नटखट हो, दिख रहा है, सुन रहा है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बॉलीवुड सिंगिंग इसी वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि वो बड़ी आराम से, बहुत ही खूबसूरती से हमारे दिलों तक आ जाती है, सुनने में भी सुरीली लगती है, और उसको गर्म गाना चाहे तो गाने में भी अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी इन गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आए कुछ और जानने के लिए।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
1: गौरी माँ, मुझे ये बताओ, आपने बहुत ही प्यारी सी एक्सपीरियंस्ड भरी हुई जिंदगी जी और जी रहे हैं अभी।
2: हाँ जी।
1: अभी तो पूरी की पूरी वापस से शुरुआत हो गई है आपकी जिंदगी की, तो कोई ऐसा सपना बचपन से अगर आपने देखा हो जो आज तक आपने किसी को बताया ना हो, आज मौका है, उसे बताइए और उसे पूरा कर लीजिए, हम सब आपका साथ देंगे।
2: मुझे, मैं बहुत ही छोटी थी, कुछ आई थिंक 4 या 5 साल, तभी हम लोग वी वर फ्लाइंग टू कैलकटा।
1: ओके।
2: तो फ्लाइट पे मुझे कंटार, मींस आई वाज गेटिंग बोर्ड, और मैं बहुत किताबें पढ़ती थी। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे किताब चाहिए पढ़ने को, मैं बोर हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ एरोस्टिस से पूछो। तो मैं गई एरोस्टिस से, मैंने पूछा आपके पास किताब है, तो वो बैठी उधर मेरे साथ, मुझे लिया गोद में और बोली मेरे पास किताब तो नहीं है लेकिन मैं कहानी सुना सकती हूँ। That impressed me so much कि as I grew up, my aim was to become an aerostis.
1: Okie dokie.
2: Because you know, I found that very touching and very sweet. So then slowly, of course, it's just a childhood dream. So wo thoda jawani ka, you know, that dream. And then slowly I realized that I have worked in a travel agency, I worked in offices also. And mujhe ye dhyan aaya ki if you are self-employed, then you only answer to yourself.
1: Okay.
2: Which is what I wanted. So I thought of this Manjini shop, which I could manage even alone.
1: I understand. Ji.
2: Okay. That's how I went into this.
1: Okay, so beautiful. इस बात से माँ मुझे याद आ रहा है कि मैं थोड़ा सा सनकी किस्म का इंसान हूँ माँ, बुक्स से मुझे भी बहुत प्यार है और ट्रेन्स में चलता हूँ आज के डेट में या कहीं पर भी होता हूँ तो 99.99% पॉपुलेशन जो है वो फोन में घुसी हुई दिखाई देती है मुझे। तो बड़ा दुख होता है और अब आदत पड़ गई है तो क्या करूँ, मतलब ट्रेन में घुसता हूँ तो सिर्फ यही देखता हूँ जो मैं देखना नहीं चाहता कि हर आदमी फोन में है। अगर पूरी की पूरी ट्रेन में या बोगी में जिसमें मैं बैठा हूं, अगर कोई भी एक व्यक्ति मुझे किताब पढ़ता हुआ दिख जाता है तो मैं तुरंत उसके पास जाके उसको कंग्रेचुलेट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, थैंक यू कहता हूं कि आप तो कम से कम पढ़ रहे हैं। बहुत प्यारी सी बात कही आपने कि एयर होस्टेस ने आपको कहा कि किताब तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो एक कहानी सुना सकती है आपको, तो कुछ ऐसा ही हुआ था उसकी, उसी चीज से यू नो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होके मैं बच्चों की कॉमिक्स बुक्स या ऐसी कुछ कहानी की किताबें खरीद लेता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 6-7-8, इससे ज्यादा नहीं। और ट्रेन में बैठा तो कोई छोटा बच्चा दिख जाता है तो मैं उनको दे देता हूँ बुक्स की, ले बेटा ये बुक पढ़ लो। उनके माँ बाप मुझे बड़ा वो घूर के देखते हैं मेरे को कि जैसे मैंने कोई बंदूक वंदूक दे दी उनको, तो मैं कहता हूँ कि अरे बच्चे हैं इनको किताब पढ़ लेने दीजिए, डोंट वरी, मैं इनसे ना कोई, मुझे कोई पैसा नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना है, आई जस्ट विश दैट दीज किड्स शुड बी देयर इन स्टोरीज रादर देन इंस्टाग्राम, तो इनको पढ़ने दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं, मैं फौरन पलट के चल देता हूँ वहां से सो दैट दे कैन नॉट यू नो आर्ग्यू विद मी और टॉक टू मी। एनीवेज, सो I don't know. This is my way of just sharing the books to the world.
2: बहुत ही खूबसूरत विचार है आपका।
1: कितना पैसा लगता है माँ इसमें, सोचो ना आप, 20-25 रुपए की एक किताब आती है ना, 100 रुपए की मैंने 4 किताबें ली और बांट दी तो क्या हो गया, तो ठीक है।
2: और क्या जाने आगे जाके वो बच्चा फिर यू नो इंटरेस्ट डेवलप करे बुक्स में,
1: या प्रोबेबली इट कुड हैपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अभी तो गौरी माँ की गाय हुई, इन गीतों का आनंद उठाएं। And then we'll come back for more talks.

0: बहुत सुंदर गायकी।
1: गरिमा,
0: जैसे हर एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसे एक टाइम बाउंड फ्रेम में हमें बांधना भी पड़ता है। तो हम उस जगह आ गए जहाँ पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि पूरे फैमिली मेंबर्स जो भी आज के कलाकार के आज आपको सुन रहे हैं उनसे बात कीजिए, कुछ अपने दिल की बात, कुछ अपने मन की बात उनसे कहिए, वो सुनना चाहते हैं आपको।
2: जरूर। एक्चुअली ज्यादा मेरे बहुत ज्यादा फंडास नहीं है
0: जी,
2: तो जस्ट प्लेन एंड सिंपल कोई भी हुनर पकड़े और उस पर खूब मेहनत करे, दिलो जान से मेहनत करे, इट्स मोक्ष, यू नो
0: जी।
2: और दूसरी बात यह है अपनी खुशी अपने आप में ढूंढे
0: जी,
2: दूसरों पे उम्मीद नहीं रखे कि और कोई मुझे खुशी दे तो मैं खुश हूं, आपको हर दम खुश रहना है। हर दम, एंड इट शुड कम फ्रॉम विद इन, दैट्स ऑल आई मीन, दीज आर माय फंडास इन लाइफ।
0: ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सी बात है। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, वी आर अकाउंटेबल टू आवरसेल्व्स एंड आवर गॉड, खत्म होगी बात।
2: Yes.
0: तो जो कुछ भी करना है करिए ना।
2: Yes.
0: गरिमा, थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बातें, आपके गीत, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा हमेशा मिलते रहेंगे, आप तो हमारी फैमिली में हैं।
2: Yes.
0: तो आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।
2: ऑफ कोर्स, और थैंक यू सर आपको फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर दिस आज के कलाकार प्रोग्राम।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू मैम, थैंक यू। You please,
2: yes,
0: take care.
2: Thank you. Yes, I will. You too.
0: Thank you.